0: ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் டீல் கே லியே கால் கரே 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Foods Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
3: गलत वस्तुओं को रिसाइकल में डालना एक बड़ी समस्या हो सकती है और हर साल
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777 क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है स्पेशल ऑफर विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए सम कंडीशंस में अप्लाई मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200 It's 416-206-3200.
4: CUNY Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है आप घर के कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने इनकी फीस सिर्फ $299 है वो भी ग्रांट मिलने के बाद कोई कमीशन नहीं मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175 इट्स 437-264-3175 अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपोरेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।
2: अपने प्यार

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
1: जी हाँ 416-710-6777 रابطے का नंबर है जनाब शम्स रहमान साहब का इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में और कैपिटल बैंकेट हॉल मशहूर है ईद मेलों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाले हैं एवरीडे आपको मिलेगा एक गोल्ड का गिफ्ट इसके अलावा इनाम घर के बेशुमार इनाम हैं ज़बरदस्त फैशन शो लॉट ऑफ अदर थिंग्स शम्स हमारे साथ मौजूद हैं मज़ीद रेलोनी से लेंगे स्टॉल बुकिंग के लिए नंबर नोट कर लें अभी ज़बरदस्त जो है इनके पास ऑप्शंस हैं और रेडियो पाकिस्तान का हवाला देंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको स्टॉल मिल सकता है 416-710-6777 शम्स भाई अस्सलाम वालेकुम
2: जी वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब अब चंद दिन बाकी रह गए हैं और हम देख रहे हैं आपकी तैयारियां भी बड़ी हैं सोशल मीडिया पे बड़ी धूम आपने एवरीडे में देखता हूं कोई ना कोई आपकी पोस्ट लगी होती है तो बताइएगा कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ होने जा रहा है
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी पूरी है और अब बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और स्टॉल भी कम रह गए हैं
1: जी
2: तो इस वक्त भी टाइम है अगर किसी के पास किसी को ज्वेलरी का स्टॉल चाहिए किसी को कपड़ों का चाहिए कोई हेल्थ से रिलेटेड आपके पास कोई आइटम है तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आपको ट्रेड शो का इफेक्ट मिलेगा क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं कैपिटल बैंक्वेट हॉल में और चार दिन है और चारों दिन हम बड़े शोज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ पहले दिन हमारा फैशन शो है दूसरे दिन सिंगिंग का शो है तीसरे दिन हमारा सीनियर्स का शो है और चौथे दिन फैमिली शो है और एवरी डे अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से उसमें गोल्ड का एक गिफ्ट दिया जा रहा है और इनाम घर के इनामात जो हैं वो ऑल ओवर फेमस हैं सबको पता है कि हम कैसे इनामात देते हैं
1: सही नंबर नोट करें आप 416-710-6777 आप अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं स्पॉन्सर भी प्रोग्राम को कर सकते हैं और स्टॉल बुकिंग भी कर सकते हैं और शम्स भाई जाहिर है चारों दिन बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम आपने बताए हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग कैपिटल बैंक्वेट हॉल में आते हैं मशहूर है ईद मेलों के हवाले से कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे
2: जी बिल्कुल अगर रेडियो पाकिस्तान का हमें कोई हवाला देगा या उनका हेल्थ से रिलेटेड कोई काम है तो स्पेशल डिस्काउंट हमने रखा है
1: वेरी गुड
2: फौरन रब्ता कीजिए और आप अपने स्टॉल को सिक्योर करें
1: और नंबर टू कॉल इज 416-710-6777 बहुत शुक्रिया कल फिर आपसे कोशिश करते हैं बात करें थैंक यू शम्स भाई नंबर नोट कीजिए 416-710-6777 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम पाकिस्तान के साबिक कौमी बैडमिंटन चैंपियन है पलवेशा बशीर उन्होंने कनाडा में मास्टर्स टूर्नामेंट जीत लिया है 35 एज ग्रुप का वीमेन सिंगल टाइटल उन्होंने जीता है और पाकिस्तान के स्टार प्लेयर ने फाइनल में कनाडा की टॉप सीड प्लेयर एना राइस को शिकस्त दी है पलवेशा का कहना था कनेडियन मास्टर्स चैंपियनशिप में मुख्तलिफ लोगों के 300 से ज्यादा प्लेयर्स जो है वो शरीक थे मास्टर्स कैटेगरी में शिरकत का मतलब यह नहीं कि मेरा ओपन कैटेगरी कैरियर खत्म हो गया उनका यह भी कहना था कनेडियन मास्टर चैंपियनशिप का टाइटल

0: राजधानी राजधानी राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
2: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
3: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
2: दैट्स वंडरफुल।
3: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
2: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
3: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
4: सिर्फ मॉर्गेजेस। दस राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 5819-1001 License number 12374।
5: चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ, जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रिजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
6: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
7: Aap sun rahe hain Pakistan Toronto FM 101. Point 3 studios mein rabte ke number 416-593-0003। Toronto risk ke darwaah mein maghrib ki azan ka waqt ho gaya hai। Dusre ilaqon ke rehne wale apne maqami nizam ul auqat ke mutabik maghrib ki namaz ata kare। Toronto risk ke darwaah mein azan e maghrib।

0: आप वाकई कोई जज्बा, कोई एहसास ऐसा रखते हैं, तो यकीन मानिए आपको उसमें रहना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन योर ड्रीम्स।
1: जी
0: आमतौर पर लोग उन्हें वर्कोहलिक भी कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो वर्कोहलिक नहीं होते। वो अपने ख्वाबों को इतनी जारहियत से, इतने एग्रेशन से, इतना एक्टिवली और इतना एफिशिएंटली परसू कर रहे होते हैं कि उनकी सिर्फ लोग फिर धूल को ही देख सकते हैं, उनको नहीं देख पाते।
1: क्या बात है, और बहुत खूबसूरत सिखाने की तरफ इसी आमिर की बातचीत के बाद हम ले चलते हैं। आमिर कहते हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना, जो आपके बनते हैं रिश्तों का, अपनों के जिनके साथ आप हैं, उनका ज़रूर इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जब ये टूटते हैं तो आवाज़ नहीं करते, बस एक सन्नाटा छा जाता है। तो इसलिए वादों का, दोस्तों का, रिश्तों का हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी बात से ऐसा ना हो कि जाने जाने में कोई ऐसी बात हम कर जाएं जिससे दूसरों को ज़रूर इस बारे में ठेस पहुँचे और नाराज़गी हो या फिर दिल टूटे। तो बस उस पर क्या होता है कि जब ये रिश्ते टूटते हैं तो आवाज़ नहीं करते, बस हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। और आप सभी के रिश्ते हमेशा बरकरार रहें। थर्सडे की खूबसूरत सी सुबह 416-303-3639 इज द नंबर टू कॉल। 23 मई से ये कोर्स शुरू होने जा रहा है डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का, थोड़ी सी ही सीटें बची हैं। इस बारे में ड्यूरिंग द शो हम बातचीत करते रहेंगे आपसे। नंबर टू कॉल 416-303-3639। आमिर और शिवानी के साथ आप हैं लवी रवि शो पर।

0: Covey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
1: साहब, आलमी सतह पर हालात बहुत जल्द बदल रहे हैं और हम आए रोज कोई ना कोई नई खबर सुनते हैं, कोई ना कोई नई बात हमारी समातों तक पहुंचती है जो हमें चौंका देती है। हम घबरा से जाते हैं, सहम जाते हैं कि न जाने आलमी सतह पर यानी बैनुल अक्वामी यानी

0: इंटरनेशनल लेवल पर हालात कब पैंतरा बदल जाएंगे कुछ पता नहीं। सूरत हाल यानी सिचुएशन बड़ी गंभीर है और इतनी गंभीर और इतनी पेचीदा हो गई है कि ऐसे में फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, हकायक का जायजा लेना पड़ता है, हकीकत से आश्कार होना चाहते हैं हम, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि बात किससे की जाए, क्या बात की जाए, किससे पूछा जाए, किससे माहिर राय ली जाए। एक्सपर्ट ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड ऑफ द आवर। इसके लिए एक ऐसा नाम हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने जब से शुरू किया ये काम उसके बाद पलट कर किसी और काम की तरफ नहीं देखा। एक प्रोफेशनल की यही पहचान, यही शनाख्त और यही प्रोफेशनलिज्म होती है कि जिस काम को अपनाए वो उसमें बामे उरूज पर पहुंच जाए और इस तरीके से लोगों की हेल्प करे कि लोगों को ये एहसास हो कि वो तन्हा अकेले नहीं है, मशवरा लेने के लिए, सलाह करने के लिए, बात करने के लिए, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए एक लंबे अरसे के तजुर्बाकार और माहिर और एक्सपर्ट इनके साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत की साउथ एशियन कम्युनिटी में अगर मोर्टगेज के एतबार से बड़े नाम लिए जाएं, पुराने नाम लिए जाएं, तो उनका भी एक नाम शामिल है, द मोस्ट रिप्यूटेड एंड द मोस्ट रिकग्नाइज्ड मोर्टगेज ब्रोकर इन साउथ एशियन कम्युनिटी, राजीव तलवार जी। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। हाय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब?
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं राजीव भाई कि आलमी सतह पर बहुत सी जंगें चल रही हैं, मसाइल चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी सी एक तरह से हो गई है, इस सारे केओस में, इन सारे हालात में आप मोर्टगेज वर्ल्ड को या फाइनेंशियल वर्ल्ड को कैसे देखते हैं?
1: देखिए सर, वी आर लिविंग इन अ वेरी अनसर्टेन वर्ल्ड आमिर भाई। आज की डेट में जो दुनिया है बड़ी अजीब सी है, क्या कब क्या हो जाए, कौन से देश में क्या, यू डोंट नेवर नो। जो बात आप कर रहे हैं उसका इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डेफिनेटली बहुत गहरा है। देखिए, जो अगर आप प्रोजेक्शन पूछते हैं मुझसे 2026 की, जो भी रेट्स की या इकोनॉमी की प्रोजेक्शन होती है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन इंडिकेटर्स। नंबर वन इंडिकेटर इकोनॉमी का है जीडीपी।
0: सही,
1: जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका के फोरकास्ट 2026 के लिए महज 1.1 to 1.2% है। ये फ्लैट इकोनॉमी है, इसमें कुछ नहीं हो रहा। एक आम बताऊं, देखिए मुझे 23-24 इयर्स बिजनेस में हुए हैं, जनरली तौर पे अगर हम कभी भी जीडीपी की बात करते हैं तो वो 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 हुआ करती थी। आज वो महज 1.1% पे है, एब्सोल्युटली फ्लैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। अभी आप देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.9 थी 4-5 महीने पहले, और मार्च की जो फिगर्स आई हैं वो 2.4% पे आई हैं। आनी ही थी क्योंकि एनर्जी लेवल्स और गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा। आप देखेंगे गैस लगभग 1.9 या 2 डॉलर्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू बाय इट, जो कि 129 हुआ करती थी। तो ये जो 35-40% का जो इंक्रीज आया है, दैट्स अ ह्यूज इंक्रीज। गैस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, एवरीथिंग विल गो अप, ग्रोसरी प्राइस विल गो अप। अब जाके देखिए, आप पहले ग्रोसरी खरीदते थे कितने पैसे लगते थे, आज कितने डॉलर्स लग रहे हैं
0: जी।
1: द थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को लकीली फेड्स ने पिछले अप्रैल में, जो लास्ट मंथ में जो डिसीजन हुआ है, उसको उन्होंने बढ़ाया नहीं है, कम नहीं किया है। द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इज 2.25, और जो प्राइम लेंडिंग रेट कनाडा में आज की डेट में है वो 4.45 है। बट बट देयर इज अ बट हियर, आगे जाके क्या होगा मैं अभी डिस्कस करता हूँ
0: जी।
1: उसके बाद एक और इंडिकेटर बताना चाहता हूँ मैं इकोनॉमी का है सर, द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज की डेट में कनाडा में 6.5-7% पे बैठा हुआ है
0: जी।
1: तो आप देखिए सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव है, गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि आज से 6 महीने पहले हम कहते थे कि मार्च अप्रैल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25-0.5% गिरेगा, नहीं गिरा है। अब की प्रोजेक्शन आगे की क्या लग रही है, सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स दिस कैन गो अप बाय 0.25-0.5% एट लीस्ट। अब देखिए इकोनॉमी में जो हम अगर मॉर्गेज की बात करते हैं, हाउ डज रियल इफेक्ट रियल एस्टेट जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कैसे इफेक्ट करता है रियल एस्टेट को? देखिए आपके घर की वैल्यू आज अगर $1 million है
0: जी,
1: मेरे पास बहुत केस आ रहे हैं घर की वैल्यू 1 million, मॉर्गेज 1.2, घर की वैल्यू 750, मॉर्गेज 950, घर की वैल्यू 800, मॉर्गेज 1 million। तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना,
0: कर ही नहीं सकते सही।
1: आपको लेंडर आपको बोलेगा कि मैं अगले साल रिन्यूअल पे 7% रेट दूंगा, यू कैन नॉट से नो,
0: बिल्कुल सही,
1: यू हैव टू टेक इट और यू विल फाइंड अनदर मॉर्गेज व्हिच यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट अगेन। तो इसलिए ये जो रेट बढ़ने वाला है बढ़ेगा, इससे जो एक्विटी है आपके घर में और कम होने वाली है
0: जी।
1: अगर आज डिफरेंस 2 लाख का है तो हो सकता है 3.5 लाख का हो जाए या 3 लाख का हो जाए, विच मीन्स अगर मॉर्गेज 7 लाख की है, मॉर्गेज 1 million की है, तो घर की वैल्यू हो सकता है 7 लाख रह जाए,
0: 7 लाख रह जाए
1: उसमें या थिंग्स द अपॉर्चुनिटी विंडो इज गोइंग डाउन डाउन एंड डाउन
0: डाउन, बिल्कुल सही।
1: मैं पिछले आपको याद होगा आमिर भाई करीबन 4-5-6 महीने से हम सारे चैनल्स पे, सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे मेरे कम से कम 10 आर्टिकल्स इसी टॉपिक के ऊपर आए कि जिन लोगों की मॉर्गेज की रिन्यूअल आ रही है 2026 और 2027 में, फिक्स इट नाउ, इट इज गोइंग टू लैंड इन टू बिग ट्रबल्स। देखिए अगर आप आज फिक्स पे बैठे हैं तो भी फिक्स करा के शायद आपको कुछ उसमें से पैसे निकल आए, आपका क्रेडिट पे हो जाए, और अगर आप वेरिएबल्स पे बैठे हैं तो उसको भी चेंज करके आप अभी कम पे जा सकते हैं, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज सर। टेक केयर ऑफ योर मॉर्गेज, इट्स योर फाइनेंशियल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन डेफर योर अदर हेल्थ एज वेल। सो जो मॉर्गेज का रिन्यूअल आने वाला है और आपके पास विंडो खत्म हो रही है, उसको अगर आप जितनी पास ले जाएंगे अपनी मॉर्गेज के रिन्यूअल के, आपके हाथ से उतना ही कम कुछ रह जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ईदर लूज द होम और टेक वॉट एवर द बैंक इज ऑफरिंग यू। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि बैंक ने बोला है कि आपकी रिन्यूअल अक्टूबर में है, वी आर नॉट रिन्यूइंग, टेक योर मॉर्गेज सब दैट।
0: बिल्कुल ठीक।
1: मॉर्गेज बहुत तरह से होती है, अगर आपने कुछ गॉड नोज हाउ द प्रीवियस ब्रोकर डिड योर मॉर्गेज, तो आप अगर उसको अभी चेक कराएं, ये सिचुएशन आपके ऊपर आ जाए अकस्मात एकदम से, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल इट। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वुड हैव बीन ईदर लीव द होम और एक्सेप्ट व्हाट एवर इट इज,
0: राइट।
1: और चेंज करने का तो मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं ना, प्राइवेट में जा पाएंगे क्योंकि देयर इज नो एक्विटी। इफ यू कैन पुट $300,000, यस वी कैन डू इट, बट अगर 300,000 ही होते सबके पास तो ये नौबत ही नहीं आती। सो डू इट नाउ ब्रदर्स, टेक केयर ऑफ योर, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर कॉलिंग मी बट एवरीबॉडी इज नॉट गेटिंग एनीथिंग। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो पीपल मेरे पास आ रहे हैं, कम से कम 10-15-20 लोगों को मैं एवरी वीक टेलिंग देम कि आपके घर में एक्विटी नहीं है साहब, कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपके में है तो अभी फिक्स कर लें, क्योंकि 6 महीने बाद ये जवाब दोबारा आपको सुनने को मिल सकता है। डू इट नाउ, फिक्स योर मॉर्गेज, इट्स योर मोस्ट इंपॉर्टेंट परचेज, इफ यू डोंट टेक केयर फॉर इट नाउ, बाद में इट विल कम बैक बिग टाइम टू बाइट यू। कॉल मी बैक, मेरे पास 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स, आई कैन टेल यू इन 5 मिनट्स आप कहां खड़े हैं, क्या आपके साथ हो सकता है आने वाले 2-4-6 महीनों में या साल भर में, आई विल टेल यू, एंड इफ देयर इज अ रेमेडी वी विल फिक्स इट नाउ। थैंक यू,
0: बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन। और एक बार आपने बात करके मशवरा जरूर लेना है, हो सकता है घर में इक्विटी मौजूद हो, कर्जों में घिरे हुए हैं, कैश पुअर हो गए हैं, पैसे का फुकदान चल रहा है, यू नेवर नो। कभी कभी ऐसा होता है कि बात ना करने की वजह से हम कोई बहुत बड़ा मौका गंवा देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, राजीव तलवार जी से बात कीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा इंतजाम करवा के दें कि आपके मुश्किल हालात आसानी में बदल जाएं। ये नंबर मिला है, आप ध्यान से नंबर सुनिए, सेव कीजिए, बात कीजिए और इंतजाम कीजिए। आप कैश पुअर मत रहिए, हो सकता है घर में कुछ ऐसा सिलसिला हो जाए, इक्विटी बन जाए, रीफाइनेंस हो जाए, कोई ऑप्शन, कोई तरीका निकले कि आपको कुछ पैसा मिले। यहां है नंबर 905-819-1001। नंबर दोबारा बता रहे हैं, सेव द नंबर, डायल द नंबर एंड गेट योर मोर्टगेज फिक्स्ड। 905-819-1001। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लिसनर्स, टॉक टू यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू।

0: कभी यूं भी तो हो, दरिया का साहिल हो, पूरे चांद की रात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, परियों की महफिल हो, कोई तुम्हारी बात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, ये नर्म मुलायम ठंडी हवाएं जब घर से तुम्हारे गुजरें, तुम्हारी खुशबू चुराएं, मेरे घर ले आएं। कभी यूं भी तो हो, सूनी हर मंजिल हो, कोई ना मेरे साथ हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो, ये बादल ऐसा टूट के बरसे, मेरे दिल की तरह मिलने को तुम्हारा दिल भी तरसे, तुम निकलो घर से। कभी यूं भी तो हो, तन्हाई हो, दिल हो, बूंदे हो, बरसात हो और तुम आओ। कभी यूं भी तो हो।
1: शामे गम तुझसे जो डर जाते हैं, शामे गम तुझसे जो डर जाते हैं, रात ढल जाए तो घर जाते हैं। और यूं नुमाया है तेरे कूचे में, यूं नुमाया है तेरे कूचे में, हम सर झुकाए हुए गुजर जाते हैं। और कहते हैं कि जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। शाम गम तुझसे जो डर जाते हैं, शाम ढल जाए तो घर जाते हैं, यूं नुमाया है तेरे कूचे में, हम झुकाए हुए सर जाते हैं।
0: क्या बात है।

0: सह बात चूंकि आपकी सेहत और सलामती तंदुरुस्ती की हो रही है तो ज़रा इसकी प्रोटेक्शन और हिफाजत का जिक्र भी कर लिया जाए। सेहत का मामला नाजुक इसलिए होता है कि इसके साथ और भी बहुत सी शख्सियात जुड़ी हुई होती हैं। बहन भाई माँ बाप घर में बीवी बच्चे सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर आप अकेले ब्रेड विनर हैं, आप अकेले ही काम कर रहे हैं और आप ही की इनकम से बैक होम का निज़ाम भी चल रहा है और यहाँ भी सिलसिले रवां दवां हैं तो सेहत की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ज़रूरी है कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा इकदाम, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी पॉलिसी और एक ऐसा अंदाज अपना लीजिए जो ज़्यादा पैसे ना खर्च करवाए बल्कि आपकी सेहत फोकस हो। पैसा खर्च करना तरजीह नहीं हो बल्कि सेहत की प्रोटेक्शन तरजीह हो। इसी के लिए आज हमने एक इंतहाई सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को अपने प्रोग्राम में दावत दी है ताकि आपकी सेहत के बारे में कुछ बात हो सके। खुदा ना खास्ता अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आप अस्पताल जाते हैं, वहाँ आपको जाके पता चलता है कि फलां टेस्ट या फलां दवाई कवर ही नहीं है जिस पर काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। आपकी हेल्थ केयर के हवाले से पॉलिसी अगर डिक्लाइन हो गई है, कैंसिल हो गई है या मिल ही नहीं पा रही है तो आज हम इस मुद्दे पर इस हवाले से बात करेंगे हरप्रीत कौर जी से। वेलकम करते हैं मैडम आपको।
1: जी थैंक यू आमिर जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल माय लिसनर्स।
0: शुक्रिया बहुत बहुत। आज हम बहुत एक सुलगते हुए इशू पर बात करना चाहते हैं, वो ये है कि सेहत खराब हो जाए तब तो पॉलिसी मिलती ही नहीं है बल्कि बहुत दफा ऐसा भी होता है कि पॉलिसी करवाई हुई कैंसिल हो जाती है। तो पॉलिसी ना मिलने या कैंसिल होने की क्या वजूहात यानी रीजंस क्या होती हैं और उसका हल क्या बताती हैं आप?
1: जी बिल्कुल आमिर जी, बहुत अच्छा सवाल किया और इसके बारे में आज मैं अपने लिसनर्स को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी कि अगर जो भी कोई पॉलिसी हम लेते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो क्रिटिकल इलनेस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डेंटल प्लान है, डिसेबिलिटी है, किसी भी तरह के जब इंश्योरेंस हम लेते हैं, जब तक हम भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं, तब हमें पॉलिसी आराम से मिल जाती है। बट अगर आपकी पॉलिसी में लेने से पहले कोई इशू आ जाता है, हेल्थ इशू आ जाता है, मेजर प्रॉब्लम हेल्थ में आ जाती है, क्रिटिकल इलनेस में, जैसे मैं बताती हूँ कि 25 एक्स्ट्रा इलनेस है जो हेल्थ कार्ड कवर नहीं करता है, उसमें से अगर कोई एक भी बीमारी सामने आ जाती है, राइट, जैसे कोई भी हम कह सकते हैं कि मेजर हार्ट इश्यूज आ जाते हैं आपकी इसमें और कैंसर डायग्नोज हो जाता है किसी भी टाइप का, किसी भी स्टेज का, राइट, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, एनी टाइप ऑफ मेजर थिंग्स अगर आपके हेल्थ इश्यू में आ जाती है तो आपकी पॉलिसी जो मिलना है वो नामुमकिन हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पॉलिसी मिल ही नहीं पाती। और ये देखिए कि बीमारी की तो कोई एज ही नहीं रही आजकल।
0: जी हाँ सही कह रहे हैं।
1: ये तो मतलब हम कह ही नहीं सकते बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक कि किसको क्या हो सकता है। तो अगर आपके पास कई बार क्या होता है कि आमिर जी पॉलिसी आपने ऑलरेडी ली हुई है, पिछले कई सालों से चल भी रही है, बट इफ समथिंग हैपेंड लाइक दिस तो कई बार कंपनी पॉलिसी कैंसिल भी कर देते हैं, राइट। तो इन चीजों को लेके जो मैं लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, राइट, डिसेबिलिटी है या क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो चुकी है, अगर आपकी पॉलिसी कैंसिल हो गई है या कहीं से नहीं मिल रही, तो हमारे पास एक स्पेशल कंपनी है जो सिर्फ इन चीजों से डील करती है, वो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्लान बना के देती है। आपको कोई भी मेजर हेल्थ इशू है तो आप उसके लिए मुझे जो है कॉल करें, उसमें हम आपको प्रॉपर जो है आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग कि क्या हेल्थ इशू है उसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट आप कवर कर सकते हैं उसका जो है प्रॉपर पॉलिसी डिजाइन करके आपको देते हैं। तो मैं अपना नंबर बताना चाहूंगी, 647-334-6611।
0: बिल्कुल सही, यहाँ नंबर है, हरप्रीत कौर जी का नंबर मिला। ये सेहत के हवाले से अगर आपकी पॉलिसी हो नहीं रही है या हुई पॉलिसी कैंसिल कर दी गई है किसी भी वजह से तो ये नंबर मिलाइए, गेट इट रीइंस्टेटेड एंड पे सीरियस अटेंशन टू योर हेल्थ मैटर्स। 647-334-6611। 1-1। आजकल तो नौजवान लोग बिल्कुल यंग होते हैं और दिल का मसला हो जाता है, जिगर का मसला हो जाता है, देर आर मैनी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। यहाँ सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल जाते ही पता चलता है कि ये हेल्थ के जो मामलात हैं ये पूरी तरह से मुफ्त या फ्री नहीं है, कुछ एक्सपेंसेस आपको भी करने होते हैं, तो क्या ये एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कवर करती है?
1: जी आमिर जी, अगर आपको कोई मेजर हेल्थ इशू ऑलरेडी आ जाता है, राइट, आपके पास क्रिटिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो उसमें भी हम जो है क्लाइंट की हेल्प करते हैं कि उनको जो है क्रिटिकल इलनेस का जो अमाउंट है वो मिल सके। उसमें अगर उनके पास ऑलरेडी कोई सी कंपनी की इंश्योरेंस है ऑलरेडी और वो ऑलरेडी क्लेम ले चुके हैं उस पर, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास एक कंपनी की पॉलिसी होती है क्रिटिकल इलनेस, जो हमारी 25 इलनेस कवर करता है, मेजर इलनेस जो हमारे हेल्थ कार्ड कवर नहीं करता। तो उसमें आप 25,000 से एक अमाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और 80 इयर्स की एज तक की कवरेज होती है उसमें। 80 साल के जब आप हो जाते हैं तो अगर कोई क्लेम नहीं आता तो आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाता है, दैट इज द मोस्ट प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। दूसरी चीज है कि एक बार आप क्लेम ले चुके हो और दूसरी बार फिर से वही प्रॉब्लम अगर हमें आ जाती है किसी को भी, तो आमिर जी इसमें प्रोबेबिलिटी, प्योर प्रोबेबिलिटी नहीं, मैं कह सकती हूँ कि यू कैन, राइट, आप 2 इयर्स के वेटिंग पीरियड पे उसी क्लेम को दोबारा भी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: दैट इज द मेन थिंग, राइट। तो 2 साल के वेटिंग पीरियड के साथ आपने एक बार क्लेम लिया, 2 इयर्स के बाद उसको आप दोबारा भी ले सकते हैं। ये भी हमारे पास जो है कंपनी है वो प्रोवाइड कराती है। उसके साथ साथ आमिर जी, आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस है नहीं हो रही, आप ये नहीं कि हेल्थ इश्यूज की वजह से, अगर आप अपने किसी प्रोफेशन की वजह से, लाइक पायलट्स हैं, राइट, आर्मी में हैं, राइट, उनको भी लाइफ इंश्योरेंस मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए भी हमारे पास एक कैटेगरी है। आप किसी डेंजरस एक्टिविटी लाइक स्कूबा डाइविंग, हाई जंपिंग, लॉन्ग जंपिंग, राइट, इस तरह की किसी एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास कैटेगरीज हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस जो वो है मिल सकती है। लाइफ इंश्योरेंस आप टर्म इंश्योरेंस या परमानेंट लेना चाहते हैं, स्मॉल अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस 20 इयर्स 30 इयर्स की लेना चाहते हैं, तो आप जो है अपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन या हेल्थ इशू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको एक अच्छा प्लान बना के दे सकते हैं। और दूसरी मामले जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, लाइफ इंश्योरेंस जो टर्म, चाहे यंग एज है चाहे आप ओल्ड एज में हैं, तो वो आप किसी भी एज में ले सकते हैं अप टू द एज ऑफ 70, राइट। उसके अलावा अगर यंग एज में आप अपनी टर्म इंश्योरेंस स्टार्ट करना चाहते हैं 1 लाख की, 2 लाख की, 5, तो आप $10-12 से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि $1 भी एक दिन का नहीं होगा, वो तो सेंट्स में ही आ जाएगा, 5 सेंट 10 सेंट्स पर डे के हिसाब से। तो आप कवरेज लेके अपने आप को कवर करके रखिए, चाहे आप छोटा अमाउंट लेके रखें, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप बड़ा प्लान भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। हमारे पास जब आते हैं हम आपकी नीड एनालिसिस के अकॉर्डिंग की आपके साथ बात करके प्रॉपर पहले आपको जानकारी देते हैं कि दीज आर द थिंग्स, ये आपकी रिक्वायरमेंट है और इसके अकॉर्डिंग आप जो है बजट बना सकते हैं, और आपके बजट के अकॉर्डिंग हम एक पॉलिसी डिजाइन करके दे सकते हैं। स्पेशली जिनको हेल्थ इश्यूज हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं और हम उनको अपनी लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस या डिसेबिलिटी जो है वो आपकी अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो प्लान करके दे सकते हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग।
0: बिल्कुल ठीक। यहाँ हरप्रीत कौर का नंबर है, ये नंबर मिलाइए, बात जरूर कीजिए। हम बहुत से मुद्दे, बहुत से मसाइल, बहुत से मामलात नज़रअंदाज कर देते हैं और उस हवाले से बात भी नहीं करते हैं। बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बात करेंगे कोई हल निकलेगा, कोई बात निकलेगी, चंद सेंट एक दिन के खर्च करेंगे, जिंदगी भर का सुख और राहत आ जाएगी। इलाज मुआवजे की बात हो या आपके अपने प्यारों की बात हो, बैक होम आपके पेरेंट्स की या बहन भाइयों की बात हो या यहाँ बच्चों और बीवी की बात हो, सबको कवर किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है और चंद सेंट, अ फ्यू सेंट अ डे से ये मामला शुरू कर सकते हैं आप। ये नंबर है, ये मिलाइए, हरप्रीत कौर जी से बात कीजिए, 6473466611 नंबर आपको दोबारा बता रहे हैं, 334, 6611. Harpreet ji, bahut shukriya aapke time ke liye. Thank you very
1: much. Thank you so much, Amir ji. Thank you.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। It's 416-303-3639।
4: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
5: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
4: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
6: डिजिटल मीडिया प्रमोशन का जो कोर्स है उसके हवाले से थोड़ी सी सीट्स बची हैं, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं, जिस बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे आमिर के साथ। 416-303-3639। तो आमिर, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस कोर्स के बारे में। 23 मई से शुरू हो रहा है, स्मॉल साइज क्लासेस होती हैं, बड़ी जल्दी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दो सवाल हैं जो शॉर्ट में जानना चाहूंगी कि डिजिटल मीडिया किसको कहते हैं और डिजिटल मीडिया प्रमोशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपके कोर्स में।
1: मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। डिजिटल मीडिया पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं आप, कीजिए। किसी की मोहताजी नहीं रहेगी, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिजिटल मीडिया पे खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे, खुद आप उसको वायरल कर सकेंगे, खुद फॉलोइंग बढ़ा सकेंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ा सकेंगे। हम आपको मेथडोलॉजी सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे कि आपने डिजिटल मीडिया का पूरा काम कैसे सीखना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको काम सिखाते हैं। आपकी उम्र 60 साल है, आप 55 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आपकी उम्र 45 साल है, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो ये कोर्स आपके लिए है। कर लीजिए, ये उम्र भर का स्किल है। ये 23 तारीख को ही क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14-15 दिन ही बाकी बचे हैं, 2 हफ्ते बाकी बचे हैं। इनरोल कराइए डिजिटल मीडिया क्लास में। ये रहा नंबर 416-303-3639। नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स है। कोई भी उम्र है आपकी, कोई भी एजुकेशन का बैकग्राउंड है आपका, अगर आप डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी धाक बिठाना चाहते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वीलॉगर बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को खुद प्रमोट करना चाहते हैं या मार्केट में कोई बेहतरीन जॉब करना चाहते हैं डिजिटल मीडिया की, तो ये रहेगा नंबर। कोर्स कीजिए 416-303-3639।
6: जी, और चलते चलते एक और सवाल कि ये जो कोर्स है इसमें जो कंटेंट्स आप पढ़ाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तो क्या उस कोर्स को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, जिसके लिए उन्हें हायर करना पड़ेगा किसी को, या पूरी तरीके से वो अपने आप में अकम्प्लिश्ड होंगे इस प्रोफेशन को टेक ओवर करने के?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये कोर्स बनाया ही इसलिए गया है कि आप किसी पर डिपेंड ना करें, किसी के मोहताज ना हो जाए। कोर्स करने के बाद भी आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत ना रहे, किसी की हेल्प की जरूरत ना रहे। इनडिपेंडेंटली अगर आपने पोस्टर डिजाइन करना है, उसका आर्ट वर्क बनाना है, उसको वायरल करना है, रील बनानी है उसको वायरल करना है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनानी है, घर का कोई भी वर्चुअल टूर बनाना है आपको, या मोर्टगेज में है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, या वीलॉगर बनना चाहते हैं शौक के एतबार से, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। राइट फ्रॉम स्क्रैच टू एन एंड, शुरू से लेके एंड तक पूरी ट्रेनिंग है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। ये रहा नंबर मिलाने के लिए, नंबर मिलाइए। 23 तारीख को क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास इसके लिए। 416-303-3639।
6: जी, 416-303-3639।
7: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
6: It's 10:19. This is Lovey Dovey Show with Amir and Shivani. 416-303-3639. और चाय के शौकीन लोग होते हैं, कॉफ़ी के शौकीन लोग होते हैं. ये स्टडी आमिर जो मैं शेयर कर रही हूँ ये कॉफ़ी के बारे में है. और ये सिर्फ गेस वर्क नहीं है, ये जनरल्स में पब्लिश हुई ये फैक्ट्स हैं कॉफ़ी के बारे में. तो जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो खुश हो जाइए, क्योंकि ये स्टडी कहती है कॉफ़ी इज़ अमेजिंग. सबसे पहली चीज़ तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैव अ 60% लोअर रिस्क ऑफ लीथर प्रोस्टेट कैंसर देन दोज हु डोंट ड्रिंक कॉफ़ी एट ऑल. सो इसका जो सोर्स है वो है जनरल ऑफ द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उसमें ये पब्लिश हुई है. डायबिटीज में भी कॉफ़ी बहुत फ़ायदा करती है. ईच एडिशनल कप ऑफ कॉफ़ी कंज्यूम्ड इन अ डे मे कॉन्फर अ 7% रिडक्शन इन डायबिटीज रिस्क. और ये आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में पब्लिश हुई है. अल्जाइमर्स में भी कॉफ़ी मदद करती है. दोज हु कंज्यूम 3 cups ऑफ कॉफ़ी अ डे मे डिले डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज बाय 2 to 4 years. और ये अल्जाइमर्स डिजीज का जो जनरल है उसमें पब्लिश हुई है. इसके अलावा डिप्रेशन में भी कॉफ़ी मदद करती है. कॉफ़ी ड्रिंकर्स हैव अ 20% लोअर रिस्क ऑफ डिप्रेशन. और लेकिन टिप्स ये दिए गए हैं कि ब्लैक कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आपको. जो स्वीटनर्स हैं, आर्टिफिशियल क्रीमर्स हैं, दे आर द मेन कल्प्रिट्स दैट गिव कॉफ़ी अ बैड रेपुटेशन. कंजम्पशन मॉडरेशन में होना चाहिए बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट गुड. 3 8-ounce cups a डे इज रिकमेंडेड. 8 ounce के कप में 3 cup ऑफ कॉफ़ी पीते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है. और अगर आप इसमें थोड़ा सा सिनेमन ऐड करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट करने का ये काम करती है.
1: तो ये कौन सी कॉफ़ी की आप बात कर रही हैं, ये जो पैसे खर्च करके पी जाती है या मुफ्त वाली?
6: जो भी कहेंगे इसका रिस्क फैक्टर्स अपनी जगह हैं. आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं. ये स्टडी कवर नहीं करती है. स्टडी कहती है कि कॉफ़ी आपके अंदर जाती है तो आपको कितना फ़ायदा मिलता है.
1: यहाँ मूड बूस्ट अप करने की बात हो रही है. जब हम मिजाज की या मूड की बात करते हैं वो खाने पीने से जुड़ा हुआ है और मौसम से मुझे लगता है सबसे गहरा ताल्लुक होता है मिजाज का. यहाँ कनाडा का मौसम ऐसा है, इसकी कोई ज़मानत नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि किस वक्त ये पैंतरा बदल जाए. तो इसलिए अपने मिजाज या मूड को बूस्टअप रखना या सेल्फ मोटिवेटेड होना इस मुल्क में ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी है. यू गॉट टू मोटिवेट योर सेल्फ टू प्रोसीड एंड टू ग्रो. आपका हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा आज 11 बजे तक. उम्मीद है आप भरपूर साथ निभाएंगे ऐसे ही. स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो.
6: और अगला गाना आपके लिए कुछ लाइनों से जुड़ा हुआ. कहते हैं आमिर, ये चंद लाइनें जिसने भी लिखी हैं क्या खूब लिखी हैं. गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं. तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते रहते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं. गलत फहमियों ने कर दी दोनों में दूरियां पैदा वरना बुरा तू भी नहीं बुरा मैं भी नहीं. 416-303-3639. दिस इज लवी डवी शो.
0: ये

0: इसलिए ये जड़ी बूटी अच्छे से काम करता है। और ये काम किसके लिए हम देता है लोगों को, जॉइंट पेन के लिए और लोअर बैक पेन के लिए, सायटिका के लिए, और टांगों में दर्द आता है, शोल्डर और वो सर्विकल पेन होता है जी, सर्विकल पेन के लिए एंड फ्रोजन शोल्डर के लिए, नेक पेन के लिए, सिर पेन के लिए, माइग्रेन के लिए, सर्दी के लिए, कोल्ड एलर्जी, एस्मा वैसा होता है। और यूरिन में बहुत लोगों आता है जी, अभी आजकल यूरिन में रुक रुक आता है, यूरिन पेशाब अच्छा से नहीं जाता है। शुगर पेशेंट को प्रोस्टेट ज्यादा आ जाता है, 65 एज ऊपर को लोग प्रोस्टेट ज्यादा आता है। और सम पीपल्स को वो जाने तक को नहीं रुकता है, ड्रॉपिंग जाता है, ड्रॉपिंग जाता है यूरिन, वैसा लोगों को, बहुत लोगों को क्लीन किया था, बहुत लोग थैंक यू बोलता है, वैसा बीमार आ जाता है इधर। इसका कारण क्या है बहन जी, आप पहले पहले बताया था, हमारा एक्टिविटी बहुत कम होता है लोगों
1: का, होता है जी बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी
0: में खाना पीना में जंक फूड ज्यादा खाता है। और जंक फूड नहीं खाता है, घर में भी खाना खाता है, वो लोग कैसा होता है, टाइम टू टाइम नहीं खाना खाता है, पीछे पीछे खाता है, पेट को एम्प्टी करता है, ब्रेकफास्ट स्किप करता है, सम टाइम लंच में 4 बजे के खाता है, 5 वैसा, और एक दिन में 2 दिन में हमको बीमार नहीं आता है जी, बीमार आता है धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, हमारा एक्टिविटी कम होते है इसलिए बीमार हो जाता है। वैसा गैस्ट्रिक वाला, वो हेमराइड्स वाला, और शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और बहुत बहुत बड़ा बड़ा वो गुप्त रोगों के लिए भी, और लेडीज के, हमारा भाई बहन को अभी इधर पीसीओडी ज्यादा हो जाता है, ये पीसीओडी कारण से इरेगुलर पीरियड हो जाता है, और फाइब्रॉइडिस होता है, सिस्ट हो जाता है, उसको लिए भी बहुत दे दिया था। और आप एक बार मेरे पास आ गया था, उस टाइम एक पेशेंट भी आया था, उसको भी वो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम के लिए दवा दे दिया, उसको बच्चा हो गया था।
1: वाह, अमेजिंग, क्या बात है।
0: वैसा बहुत लोगों को हराम मिलता है, बहुत लोग ठीक हो रहा है उसमें, ये हमारा वो मुस्लिम भाई बहन बहुत लोग आता है, हमारा सिख लोग भी ज्यादा आता है, हमारे हिंदू लोग भी, उसको रिलीजन में नहीं है, हम देता है सेवा है, हम देता है रोगों को लिए इलाज।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जो बीमारियां हैं, जो इंसानियत है, उन सबसे बढ़ के होती है जो ह्यूमैनिटी होती है, और आप हमेशा इस बात को लगते हैं कि एक सेवा भाव से एक जो लोगों की सर्विस है, लोगों की सेवा है, वो आप करते हैं, आप और आपकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। और तो गुरुजी, इसीलिए बड़े बड़े दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं, डॉक्टर्स भी आपके पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने। तो 4374383399 नंबर है, 4374383399, और गुरुजी का कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है।
0: थैंक यू जी, थैंक यू,
1: थैंक यू गुरुजी।

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एमरजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे। उन्होंने एक क्लाइंट को $2 million की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
5: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट। डायरेक्टली कॉल सैयद एमरजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एमरजा,
4: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
5: कॉल सैयद एमरजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
6: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
7: Lovey Dovey Song of the Day is brought to you by Ruhani College. आँखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना, या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
0: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवर्टाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
0: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
2: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
3: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
4: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
3: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
5: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह 500 से $1,500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रीफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
1: आप रिश्ते को चलाना चाहते हैं या फिर घर बसाना चाहते हैं? लेना है कोई बहुत बड़ा फैसला या करना है कारोबार? स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं। बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023। इट्स 437-829-6023। मास्टर धनिक महाराज।
6: लवी रवि शो, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ, और जावेद अख्तर साहब के कुछ बोल हैं जो लिखते हैं, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से मिलो तुम खोले अपनी बाहें, हर एक पल हर एक नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। और अगर बेताबी है दिल में, बेचैनी है दिल में कि अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे डिजिटल मीडिया के हवाले से इसको प्रमोट हम कर सकते हैं, तो आपके लिए ये कोर्स जो है वो आप ही के लिए है। 23 मई से शुरू होने जा रहा है, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स है ये, जिसपे आप अपने बिजनेस को खुद प्रमोट कर सकेंगे, अपने तरीके से प्रमोट कर सकेंगे। आपका बिजनेस आपका बेबी होता है, आपका बच्चा होता है, वो क्या चाहता है, आपको क्या चाहिए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो अपने मास्टर, अपने बॉस खुद बनिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से लोकल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हैं। बेसिक से ये कोर्स शुरू होता है, यानी कि कंप्यूटर्स खोलने बस आपको आना चाहिए और दिल में एक विल पावर होनी चाहिए आपकी, बस यही दो चीज़ें क्वालिफिकेशन में हैं। एक महीने का कोर्स है और उसमें भी सिर्फ 8 दिन की क्लासेस हैं, सैटरडे और संडे 1 बजे से 6 बजे तक, जिसमें आपको पोस्टर क्रिएशन, आर्टवर्क, प्रेजेंटेशन, वीडियो मेकिंग, यूट्यूब चैनल एडिटिंग, आपकी पंच लाइन और टैग लाइन्स बनाना, कंटेंट क्रिएशन, फंडिंग, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। स्पॉन्सर्ड ऐड क्या होते हैं, पेड एड्स क्या होते हैं, उनके हवाले से भी आपको सारी नॉलेज दी जाती है। यानी आप पूरे प्रोफेशनल बन के 1 महीने में तैयार होते हैं, जिंदगी भर का हुनर आपके साथ होता है। जल्द से जल्द कॉल कीजिए, कुछ सीटें ही बची हैं। 416-303-3639। 3639, it's 416-303-3639 और सेनोरिटा आपके लिए लवी रवि शो पे।

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह जीटीए में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट्स से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
5: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर।
6: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
5: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
7: पंजवां महान तीन दिनों दा कीर्तन दरबार 16-17 दिन शनिवार अते एतवार दोपहरे 3 बजे तो लेके रात 10 बजे तक। 18 दिन सोमवार 12 बजे तो लेके शाम 7 बजे तक।
8: ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड 12942 हार्डलेक रोड कैल्टन विखे करवाया जा रहा है। पंथ दे सरमौर रागी जथे पदम श्री भाई साहब हरजिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले, संत अनूप सिंह जी ऊना साहेब वाले, भाई अनंत वीर सिंह जी एल ए वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी बबीहा दिल्ली वाले, प्रोफेसर परमजीत सिंह जी पटियाले वाले, भाई मनिंदर सिंह जी श्रीनगर वाले। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल पंजाबी विरसा रेडियो दे सिंह हरजीत नूं कीती जा सकती है 647-448-1000। 647-448-1000। सेवा भेजन वास्ते seva2022@yahoo.com ते अपनी सेवा भेज सकते हो।
9: क्या आप अपनी बढ़ती मॉर्गेज पेमेंट से परेशान हैं और आपको मॉर्गेज पेमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प चाहिए? तो गौर से सुनिए, मॉर्गेज रिलीफ प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आप हर माह $500 से $1500 तक की फाइनेंशियल एड हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 साल से 65 साल है, अच्छा क्रेडिट स्कोर है और पिछले 5 सालों में आपने अपना घर रिफाइनेंस नहीं कराया है और आपको मॉर्गेज पेमेंट में वाकई मुश्किल हो रही है, तो ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। आज ही हमारे लोकल प्रोग्राम काउंसलर राज से बात कीजिए। राज 416-605-2584, 416-605-2584।
10: इस 10:53 वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मैं शिवानी और आमिर आपसे लेते हैं इजाजत। कल फ्राइडे को होती है आपसे मुलाकात। किसी भी जानकारी के लिए 416-303-3639 पे आप कॉल कर सकते हैं। 416-303-3639 हमें ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।
1: यहाँ हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है इस पैगाम के साथ कि ये एक मजमुआ है और मजमुआ में सभी होता है, एहसासात का मजमुआ है, मुख्तलिफ सफ़र हैं इसमें, मुख्तलिफ रास्ते हैं इसमें, मुख्तलिफ मोड़ भी हैं इसमें, खार भी हैं इसमें, फूल भी हैं इसमें, इसमें बहुत कुछ है, तकरीबन सभी कुछ है। इसलिए किसी एक ही एहसास या किसी एक ही इमोशन या किसी एक ही रास्ते, किसी एक ही मोड़, किसी एक ही शाहराह की उम्मीद मत रखिए। यह ज़िंदगी है, इसमें सभी कुछ होगा, कहीं मोड़ आएगा, कहीं चढ़ाई होगी, कहीं उतरना होगा, कहीं बगैर किसी तवक्को के, बगैर किसी ख्वाहिश के, बगैर किसी आरजू के, बगैर मन चाहे, बगैर किसी इरादे के अचानक कोई मोड़ मुड़ना पड़ेगा। ये जिंदगी है साहब, टेक थिंग्स एज दे कम इन योर लाइफ। अपना ध्यान रखिए। रेडियो टोरंटो कनाडा के स्टूडियो 2 से अगले प्रोग्राम तक के लिए शिवानी और आमिर तोफैल को इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हे यू।

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर. ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर. वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
0: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send aur receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
3: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 46 1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Listen to us around the universe. www.cmr.fm. इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
1: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
0: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: listen to us around the universe. www.cmr.fm.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sewells and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
0: कैश पॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: You're listening to CMR. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड. एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड. न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे लेकिन यहां पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड.
3: यहां भी होगा वहां भी होगा अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा.
2: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक. पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
4: है आदत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत.
2: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम.
5: और म्यूजिक स्टार्ट करो भाई.
2: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम. स्टे ट्यून्ड.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। बाहर का तापमान अनबिलीवेबल, इट्स मे 14th, इट्स 8 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 5, एंड टेम्परेचर्स आर लिटिल लोअर देन यस्टरडे ऑफ कोर्स। एंड सनसेट होगा 8:35 पर, 8:35 PM, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स टुडे आर गोना हिट 12, टुमारो 19 and 10, सैटरडे 22 and 13, एंड गेस व्हाट, अगले हफ्ते हमें तकरीबन 29 डिग्री 29 डिग्री टेम्परेचर भी देखने को मिल सकते हैं ऑन ट्यूजडे। So, and a lot of rain, of course, but today it's cloudy and this is what the temperatures are. 12:15 ki headlines hamari bilkul tayyar hai, sponsors ke messages, aapki song request, pehla geet aapne Udit Narayan ki awaaz mein suna, phir bhi dil hai Hindustani ka title track, what a beautiful song, aur kai baar geeton ke zariye kitna kuch keh jaate hain, khas kar lyricist jo lyrics likhne wale hain, jis tarah se wo cheezon ko likhte hain, and so much is said through a song. And I think the song is actually not only Hindustani ya Hindustan ke liye, but South Asian overall, jo South Asians hain, kahin na kahin, you know, we all relate to what's said in the song. And isi tarah se jo aapki request hai, we will keep playing them all the way till 2 p.m. The segment is brought to you by Brampton TV and Appliances. It's a long weekend, Victoria Day wale weekend ke liye jo amazing deals hain, usko lekar आगे चलकर हमारे साथ सुल्तान जी होंगे। विल गेट यू सम अमेजिंग डील्स। एंड डॉन वैली नॉर्थ हांडे, बता दें, आपको दे रहे हैं फीफा की टिकट्स। ये एक बैलेट है जो कि ड्रॉ किया जाएगा जून में, ऑफर एंड होती है इस महीने के अंत में, 31 मई। इफ़ यू बाय एनी हांडे फ्रॉम डॉन वैली नॉर्थ हांडे, आपको आपके दो नेम, दो टिकट्स के लिए विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। अगर आप विंटर टायर्स बाय करते हैं विद स्टोरेज, वन नेम फॉर वन टिकट, एंड सिमिलरली एनी एक्सटेंडेड वारंटी परचेज, अगेन वन नेम फॉर वन टिकट विल बी पुट इन फॉर अ लकी ड्रॉ। 75-37 Woodbine Avenue, Markham, Steels Woodbine Wala, Major Intersection, Don Valley, North Hande, आपने रखना है याद। And Pickering में पुलिस are looking for two suspects in arson at a convenience store near Rouge Mound Drive and Kingston Road, और ये Pickering से खबर सामने आई है। Queen's Park का कहना है कि government releases documents related to the purchase and subsequent sale of 28.9 million, क्योंकि कहा जा रहा था, Barrett Styles ने इल्जाम लगाया था कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। Documents show the province incurred nearly $200,000 in aviation related costs with that private jet that was purchased. And इसलिए अब जो है Barrett Styles ने जो इल्जाम लगाया था Doug Ford और उनकी सरकार पर, कहीं ना कहीं वो अब चीज़ सामने आ गई है कि उसका सारा पेपर वर्क जो है, जो अकॉर्डिंग टू Barrett Styles छुपाया जा रहा था, इज नाउ आउट इन द ओपन। लेट्स सी व्हाट शी हैज़ टू से नाउ। एंड दूसरी ओर जो है, आईपीएल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है कि आईपीएल की व्यूअरशिप ओवर द ईयर्स कम हुई है। डेफिनेटली, यू नो, व्हेन यू हैव सो मच ऑफ क्रिकेट हैपनिंग, कहीं ना कहीं लोग भी जो है थक जाते हैं क्रिकेट को देख देख कर। इवन क्रिकेट लवर्स लाइक मी, मुझे लगता है कि मैं उस आईपीएल को इस तरह से शायद नहीं फॉलो करना चाहता, लॉट ऑफ टाइम्स द वे आई फॉलो बायलैटरल सीरीज और वर्ल्ड कप एंड अदर काइंड ऑफ जो टूर्नामेंट्स आम चलते हैं। एंड आईपीएल कई बार ये इल्ज़ाम भी लगता है आईपीएल के ऊपर अबाउट, यू नो, अ लॉट ऑफ द स्टफ कुड बी, you know, something to do with just entertainment, not the game of cricket, jo ki nazar aata hai. And Honda ka kehna hai ki EV pause jo Alliston mein hua hai won't affect the current production of staffing levels or staffing levels at existing facility in Alliston. Honda ne ye bhi spokesperson ne kaha hai ki instead of the EV, what they might look for is the hybrid, because right now that EV sales ya jis tarah se reports EV ko lekar hai wo bahut zyada positive nahi hai ya itni abhi behtar nahi hai comparatively. So maybe when things get better, they'll go for the EV, but right now what's in the works is the hybrid mode. And World Vaccine Day poll finds nearly 25% of Canadians have declined a vaccine recommended by their doctor. And approved strategies, a survey finds Albertans were most likely to refuse a vaccine. Aur unka number hai 35% per Alberta walo ka, 35%. And Scarborough mein, a woman is accused of killing her toddler Tuesday morning and appearing in court today. चलिए ऐसे करते हैं, बहुत ही छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: काव्य होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जोशी।
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care. Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
3: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Clear Optical by Varun Kanda, Kavya Home Care, McVean Dental Care, Rajdhani Sweets and Restaurant, South Asian Clothing and Textile Asians, Don Valley, North Hande, Brampton TV and Appliances, Win Lifetime Training. Shuru karte hain taza tareen headlines. Report ke anusar, Hamas ne Israel se captives ko force kiya tha to have sex with family members. 300-page report alleges sexual torture and rape. Iran ke minister ka kehna hai ki hum US ke saath sare aspects par baat karna चाहते थे, मगर यूएस डिमांडेड इट्स ओन टर्म्स। ईरान ने यह भी कहा कि हॉर्मोन्स पर कंट्रोल से हमें इकोनॉमिक रेवेन्यूज का फायदा होगा, इट विल स्ट्रेंथन ईरान्स इंटरनेशनल पोजीशन। मिशिगन के एक शख्स को 30 साल की जेल हुई फॉर किलिंग बेस्ट फ्रेंड ऑन वेडिंग डे। साउथ अफ्रीका के मिनिस्टर ने कहा ग्लोबल साउथ राइजिंग, ब्रिक्स नॉट मेयरली अ सिंबल, दुनिया को एक शार्प और कॉन्फिडेंट मैसेज दिया। ईरान की मिसाइल्स फिलहाल बरकरार है, सो इज द हॉर्मूज थ्रेट, यूएस का दावा शायद गलत है इन रिगार्ड्स टू ईरान। ट्रंप की हाई स्टेक्स टॉक्स विद शी जिनपिंग शुरू हुई, ट्रेड, ईरान, ताइवान ऑन द एजेंडा। बीबीसी इन्वेस्टिगेशन के बाद डजन्स ऑफ डॉग्स रेस्क्यूड एंड सस्पेक्ट अरेस्टेड इन युगांडा। ईरान अलाउज चाइनीज वेसल्स टू पास थ्रू हॉर्मूज स्ट्रेट। सर्वाइवर ने यूएस लॉ मेकर से कहा एपस्टीन ने मुझे अब्यूज किया था वाइल अंडर हाउस अरेस्ट। चाइना का स्टेट बैंक्वेट फॉर ट्रंप, बेजिंग रोस्ट डक से लेकर टिरामिसू सर्व फॉर ट्रंप। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ट्रंप से कहा मेक इट वर्क एंड नेवर मेस इट अप। और ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स के मीट में इंडिया कॉल्स फॉर यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स एंड गाजा सीज फायर। लोकल समाचारों में स्कारब्रो में हुई टॉडलर की मौत को लेकर मदर चार्ज विद फर्स्ट डिग्री मर्डर। टोरंटो के डाउनटाउन कोर में रॉबरी के दौरान $500,000 वर्थ ऑफ ज्वेलरी स्टोलन। एनालिस्ट के अनुसार जीटीए में गैस प्राइसेस आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ेंगे। टोरंटो स्टैबिंग मामले में 6 टीनेजर्स अरेस्टेड, ऑल्सो 20-year-old मैन। काउंटरफिट लाइसेंस प्लेट्स को बेचने वाले दो हैमिल्टन मैन लिंक्ड टू एटलीस्ट 30 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। टोरंटो मेपल लीव्स के ने हेड कोच को फायर करने पर कहा अ फ्रेश स्टार्ट। एंड ओंटारियो एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि कैन नॉट इंटरफेयर इन कैथलिक बोर्ड्स प्राइड फ्लैग बैन। डोर टू डोर लैंडस्केपिंग स्कैम में ओंटारियो महिला ने $3,000 गवाए। टू पीपल शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस इन वॉन। भारतीय समाचारों में अडानी एयरपोर्ट्स ने IHG के साथ डील साइन की टू डेवलप 5 होटल्स इन की इंडियन सिटीज। इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट किया गया फॉर सोशल मीडिया पोस्ट अगेंस्ट संजय कपूर्स फैमिली। सूत्रों के अनुसार नो वर्क फ्रॉम होम मैंडेट येट, पीएम मोदी की अपील नॉट ऑस्टेरिटी। हरियाणा में बीजेपी ने लोकल बॉडी के इलेक्शंस को डोमिनेट किया। जैश टेररिस्ट को सपोर्ट करने के मामले में जम्मू कश्मीर टीचर हैज बीन अरेस्टेड। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने पीएम मोदी की फोरेक्स अपील पर कहा टाइमली प्रिकॉशनरी मेजर है। और पुणे के अस्पताल के पास बॉम्ब विद 7-hour टाइमर बरामद हुआ, रिमूव्ड बाय डिस्पोजल स्क्वाड। अमूल और मदर डेयरी मिल्क ने अपने प्राइसेस को ₹2 पर लीटर से बढ़ा दिया है। एंड अतिशी ने अरविंद केजरीवाल के जेंजी बयान को क्लैरिफाई किया और कहा नॉट सजेस्टिंग एनी वायलेंस। सोर्सेज ऑन कैंसलिंग नीट एग्जाम पर बोले कॉस्टली फॉर गवर्नमेंट, राइट फॉर द स्टूडेंट्स। उबर सीईओ ने दिल्ली सेक्रेटरिएट टू जोरबाग ली मेट्रो कॉल्स इट एब्सोल्युटली ऑसम। और असम के एक टीचर को अरेस्ट किया गया फॉर बीटिंग students tries to throw one out of the window. PM Modi ki appeal ke baad Delhi announces 2-day work from home a week. Aur CBI ne Anil Ambani led Reliance Group ke 7 thekano par raids kiye in regards to fraud cases. SIR ka elan hua for all remaining states except Jammu Kashmir, Ladakh and Himachal. Kashmiri leaders ne RSS leaders ki call ka swagat kiya for India-Pakistan dialogue. पाकिस्तान की खबरों से, पाकिस्तान के इंडिजिनियसली डेवलप्ड फतेह 4 क्रूज मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया. बलोचिस्तान ऑपरेशन में 5 सैनिक हुए शहीद, इंक्लूडिंग एन आर्मी ऑफिसर. 7 आतंकी भी मारे गए. प्रेसिडेंट जरदारी ने वेरियस फील्ड से रिसिपियंट्स को सिविल अवार्ड्स दिए. फर्स्ट लेडी असीफा, सीनियर ऑफिशियल्स अटेंड द सेरेमनी. हज के लिए सऊदी मिनिस्ट्री ने पाकिस्तानी पिलग्रिम्स को फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल रेवोल्यूशन अनवील की. और पीएम शरीफ टू विजिट चाइना फ्रॉम 26 मई टू 29 मई. दूसरी ओर देखा जाए तो लेटेस्ट पेपर लीक के बाद कैम्ब्रिज ने ए लेवल मैथ एग्जाम्स को पोस्टपोन किया. फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने आईएमएफ को ब्रीफ किया ऑन द बजट प्रेपरेशंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक. गवर्नमेंट ने कैम्ब्रिज एग्जाम पेपर लीक्स में एनसीसीआईए प्रोब के ऑर्डर दे दिए हैं. दूसरी ओर स्पोर्ट्स जगत से बात करें तो आरसीबी पुट 1 फुट इन प्लेऑफ्स, बिग ब्लो फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स. विराट ने रिकॉर्ड सेट किया फॉर द मोस्ट आईपीएल हंड्रेड्स, ही नाउ हैज 9 आईपीएल हंड्रेड्स. विराट ने महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा को भी पछाड़ा. लेजेंडरी सैरा टेलर पहली महिला कोच बनी अपॉइंटेड इन मेन्स टेस्ट टीम फॉर अपकमिंग सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड. और बांग्लादेश से मिली फर्स्ट टेस्ट की हार के बाद मैसिव सैकिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट. स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ग्रेस हेडन, डॉटर ऑफ मैथ्यू हेडन, ने ग्लैमरस अपीयरेंस पर मिली हेट को लेकर किया खुलासा. शी इज ऑफ्टन स्क्रूटनाइज्ड फॉर हर ग्लैमरस प्रेजेंस इन द मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री. और दूसरी ओर बॉलीवुड की खबरों से, रणबीर कपूर ने अयोध्या में 3.31 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी. एंड आयुष्मान खुराना ने पति पत्नी और वो दो को कॉमेडी ऑफ एरर्स बताया. अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल 2 ओल्ड सॉन्ग्स को रिक्रिएट करेगी. राहुल देव ने इनसेंसिटिव पापराजी को कॉल आउट किया ओवर कवरेज ऑफ मुकुल देव्स डेथ. राहुल देव का कहना है कि इंडस्ट्री मुझे भूल गई एज ही रिटर्न्ड 4 ईयर्स आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ. तबू कहती है कि वुमेन आर जज्ड मोर हार्शली फॉर एजिंग इन फिल्म्स. इन्फ्लुएंसर ने कहा शाहरुख खान का के नेकलेस एट द मेट गैला लुक्ड सो टैकी, इट कुड बी फाउंड एट द बांद्रा हिल रोड मार्केट. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 जिस पर आप कर सकते हैं कॉल और आपकी रिक्वेस्ट एक एक करके हम प्ले करते रहेंगे ऑल द वे टिल 2 PM. एंड बाहर का तापमान राइट नाउ 8 डिग्री सेल्सियस. चलिए ऐसे करते हैं. अरिजीत सिंह हर्षदीप कौर की आवाज में, शाहरुख खान ने मेट गाला में एक नेकलेस पहना था जो कि बहुत बड़ा सा, उस पे के था. आई डोंट नो वेदर ही वाज ट्राइंग टू सजेस्ट किंग, जो उसकी फिल्म उनकी रिलीज होने वाली है. और एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर्स को कई बार कोई काम नहीं होता. उन्होंने उस लुक के बारे में बयान देते हुए कहा है कि भाई शाहरुख खान तो इतने टैकी लग रहे थे वो के नाम का नेकलेस पहनते हुए, ये तो बांद्रा हिल रोड पर मिलता है. कम ऑन, बांद्रा हिल रोड पर वो नेकलेस थोड़ी ना मिलेगा जो शाहरुख खान ने पहना है. यू नो आई मीन, फेक वाला जरूर मिल सकता है. चलिए एनीवेज, शाहरुख खान की बात हो रही है. रईस फिल्म का गीत जालिमा, हर्षदीप कौर एंड अरिजीत सिंह की आवाज में लाइनअप कर दिया. उससे पहले क्विकली एक कॉलर को ले लेते हैं, फिर गीत की तरफ. आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
0: हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है.
3: हेलो
0: हेलो, आवाज आ रही
3: है? अब आ रही है, प्लीज गो अहेड. जी आप ऑन एयर हैं, प्लीज गो अहेड.
0: आवाज आ रही है?
3: हाँ जी अब आ रही है, प्लीज गो अहेड.
0: बात यह है, अब आप देखने ट्रम्प्स ऑफ चाइना गए हैं, तो चाइनीज के साथ जो बात कर रहे हैं अभी, ये इनकी बातचीत से यही लग रहा है कि चाइनीज के साथ ये कोई ऐसा बिजनेस डील कर लेंगे, क्योंकि काफी लोगों को ले गए हैं साथ ना. ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? कुछ क्या कहते हैं आपके लोग इस पे? इंडिया में क्या लोगों की कहना है कि
3: इंडिया में तो अभी कुछ कहना नहीं है, बट यस, इंडिया इज वेरी क्लोजली वॉचिंग. पूरी दुनिया बहुत क्लोजली वॉच कर रही है. एक चीज का एहसास जरूर हुआ है कि जिस तरह से शी जिनपिंग ने स्वागत किया ट्रंप का और जिस तरीके से ट्रंप ऑल द वे गए हैं, उसमें चाइना की पावर जो है दिखती है एज अ सुपर पावर. एंड अमेरिका को कितनी जरूरत है चाइना की वो भी दिखती है, क्योंकि चाइना डज नीड अ बिग मार्केट लाइक अमेरिका, अ रिच मार्केट लाइक द यूएस. लेकिन एट द सेम टाइम चाइना के पास पूरी दुनिया भी है जिनको वो अपनी चीजें सेल कर सकता है. बट हाँ, उनका दमखम जो है वो दिख रहा है. एंड आई थिंक
0: ये नजर आया है सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं ना, जो अपने आप को लीडर शीडर कहते फिरते हैं
3: जी,
0: उनको ये सबक है कि देखें, अगर आपकी इकोनॉमी सही है आपकी ग्रिप सही अपने कंट्री पे, आप मसले हल कर रहे हैं लोगों के, सोच।
3: आपकी आवाज कट गई है यहाँ पे, बट आई डिड गेट योर मैसेज, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई भी लीडर, चाहे कोई भी लीडर ऐसा दुनिया में नहीं है जिसको 100% उसकी जनता जो है सपोर्ट करती है, कभी ऐसा होगा ही नहीं। बट द पॉइंट इज, इफ अच्छी खासी मेजॉरिटी सपोर्ट मिली हुई है, चाहे वो शी जिनपिंग की बात कर लें या इन अ वे पीएम मोदी की भी बात कर लें, या कुछ ऐसे लीडर्स होंगे शायद वर्ल्ड में, जो कि बहुत ज़्यादा तो है नहीं, अगर आपको सपोर्ट मिली हुई है, यू कैन मेक एवरीवन हैप्पी, बट एट द एंड ऑफ द डे इकॉनमी अगर थोड़ी सी बेहतर भी कर रही है, विच इंडियाज इकॉनमी इज डूइंग वेल, बट देन चाइनाज इकॉनमी इज एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, तो उस पर यू नो चाइना राइट नाउ इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग सुपर पावर जो अमेरिका के सामने है। आई थिंक लॉट ऑफ आउटकम देखने को मिलेगा फ्रॉम दिस इंटायर ट्रिप। चलिए गीत इंजॉय करें, आते हैं वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16th तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles for savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंग शुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलिनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट
2: pujahut.com। इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: 10 मीटर, बस इतना को याद रखो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ। esasafe.com/stoplooklive ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
4: बिना सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। बिन सफर बिन मंजिलों का एक रास्ता होना चाहता हूँ। कहीं दूर किसी जंगल में ठहरा दरिया होना चाहता हूँ। एक जिंदगी होना चाहता हूँ बिना रिश्तों के और रिवाजों के। दूर आसमान से गिरते झरने में कहीं खोना चाहता हूँ। मैं आज मैं होना चाहता हूँ। मैं आज मैं होना चाहता हूं।
5: He's breaking through the midfield.
6: Don Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का। कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाएं डबल एंट्रीज। विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी लें और हर एक के साथ पाएं एक एक्स्ट्रा एंट्री। आज ड्राइव करें, कल जीते। Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. एंड विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग से मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं. एंड याद रखें, फ्री सेमिनार सैटरडे को होता है 12:30 to 3:30. दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू गो. फ्री सेमिनार है, कोई चार्ज नहीं है. आप अपनी सीट रिजर्व करवाएं, चाहे आप अकेले जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं. एंड गो एंड चेक इट आउट. 905-206-1008. मिसागा में इनका ऑफिस लोकेटेड है. विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग. मोहम्मद साहब, आपका स्वागत है.
2: थैंक यू सो मच सनी जी. हमारे सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से और विन लाइफ टाइम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड गुड आफ्टरनून.
1: जी आपको भी. एंड मोहम्मद साहब, आज क्या दिमाग में आपके आ रहा है? क्या इतने सालों से विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग के जरिए You've helped people earn $2,000 to $6,000 महीने का, वो भी US. आपके दिमाग में आज क्या आ रहा है? What is it that you want people, खासकर the times that we are going through right now?
2: बिल्कुल सनी जी, देखें अभी जैसे हालात आगे आ रहे हैं तो I'm seeing like a chaos. देखें अभी लोगों की मॉर्गेजेस भी नहीं पे हो रही और हालात आगे से और वर्स आ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा स्किल ले लें जो पिछले 18 साल से हम एक सेम लोकेशन से अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं. और वो ये है कि एक ऐसा स्किल के जो भले मार्केट नीचे जाए भले मार्केट ऊपर जाए, 100% रिसेशन प्रूफ जो बिजनेस है वो है ऑनलाइन ट्रेडिंग का. और मोस्टली लोग इसमें पैसा लूज करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, प्रॉपर एक नॉलेज नहीं है. और दूसरा यह है कि वो डरे होते हैं कि हम इसमें पैसा ना लूज कर दें. देखें ये जो डर होता है ना, ये इसका रीजन सिर्फ एक चीज है और वो क्या है कि नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू यू. अगर आपके पास ये नॉलेज हो, आपके पास ये पूरे का पूरा सेटअप हो, एक एनवायरमेंट में आप बैठे हो कि देखें आज सुबह हमारी 8:30 पे लोग डन हो गए थे. और हर रोज ऐसा ही होता है. अच्छा, काफी लोग मुझे कॉल करके कहते हैं कि जी ये जो 100 to $300 US, अच्छा ये मिनिमम है. ये बाय द वे मैं बता दूं, लोग 15,000-20,000 US महीने का बनाते हैं. ये एक नॉर्मल सी बात है. अभी लोग ये सुनते हैं जब, तो कहते हैं हाउ इट पॉसिबल कि मैं 14 घंटे या 10 घंटे या 8 घंटे काम करने के बाद भी मेरे पास महीने में 5,000-7,000 नहीं आता, तो ये कैसे बनाते हैं? बिलीव मी, ये मेरा चैलेंज है कि लर्न द पावर ऑफ 90 मिनट. मैंने इसका मतलब है कि सिर्फ हमने 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. आके देखें कैसे हाउसवाइफ्स घर से बैठ के जो बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि वो कैसे विद इन 10-20 मिनट. ये 90 मिनट की जो हमारी ये विंडो होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरा 90 मिनट कंप्यूटर के सामने बैठना है. देखें अगर मैं सबसे कहता हूं कि अगर आपने कमाई चेंज करनी है ना, तो उसमें दो चीजें आप चेंज करें. एक उसका तरीका चेंज करें और दूसरा द वे यू थिंक उसको चेंज करना है. देखिए जिंदगी में हमारे पास हर वो चीज जो आती है ना, वो आती है हमारी पावर ऑफ हमारी थॉट से. अगर आप चीजों को डिफरेंट वे से सोचना चाहते हैं तो अपनी थॉट्स को आपने चेंज करना है. अगर आप अपनी रिजल्ट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी सोच को बदलें. और डोंट वरी अबाउट फ्यूचर. यार मैं ये समझा के थक गया हूं कि हम लोग ना बैठ के फ्यूचर की वरी वो कर रहे होते हैं. वरी नहीं करना, फ्यूचर की प्रिपरेशन करनी, उसके लिए तैयारी करें. आए आके देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है. यू हैव नथिंग टू लूज, अ लॉट टू गेन. आके सेमिनार अटेंड करें. आई बेट यू आप कहोगे कि यार ये हमने इतने साल क्यों वेस्ट किए हैं. आए आके देखें कि कैसे आप भी उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं. देखिए दुनिया में कहीं पे बैठे हुए हैं, आपको फोन पे सिग्नल्स आ रहे हैं, आपको लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है कि आपने क्या करना है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉल करके अपनी सीट बुक करें और आके एक दफा देखें तो सही कि ये क्या चीज है और कैसे आप हमारा पार्ट बन सकते हैं. तो कॉल करके अपनी सीट बुक करें एट 905-206-1008 और यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड.
1: बिल्कुल जी, 905-206-1008. मोहम्मद साहब ने जो कहना था कह दिया. अब बारी हमारी है. जिनके पास आप अगर अवेलेबल नहीं होते, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट सैटरडे को आप इतना सा टाइम निकाल सकते हैं 12:30 to 3:30 के बीच में. आप अपनी सीट जो है रिजर्व करवाएं कॉल करके. कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन माइंड इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, विन लाइफटाइम ट्रेडिंग में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप भी एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल रखते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम 2000 से 6000 डॉलर मंथली कमा सकते हैं, वो भी यूएस. चलिए 905-206-1008 905-206-1008 नंबर है जिस पर आपने करना है कॉल. मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो दो, एंड सपोज टू बी अ रियली फनी फिल्म। गुरु रंधावा हीर की आवाज में ये गीत एंजॉय करें, ब्रॉट टू यू बाय एशियंस। एशियंस एक पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर है, मार्कम रोड और लॉरेंस एवेन्यू के पास स्कारब्रो में, 3601 लॉरेंस एवेन्यू इन स्कारब्रो। और खासकर ये स्टोर जो है जाना जाता है फॉर साड़ीज, लहंगाज, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेंस ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स। और खासकर जब ये वो सीज़न होते हैं शादी ब्याह वाले सीज़न, जहां पर आपको एक से बढ़कर एक फैशन चाहिए होता है, जो लेटेस्ट जो भी मार्केट में है, लेटेस्ट जो बैक होम आपको नज़र आता है चीज़ें इंडिया में, वो चीज़ें आपको एशियन पर मिलती हैं। बहुत ही अमेजिंग इनके प्राइसेस हैं, लॉट ऑफ स्टाइल्स एंड फैशंस दैट यू आर गोना लव। सो साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन के ट्रेडिशनल क्लोथिंग के लिए, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स के लिए, 416-438-6568। एशियंस याद रखें, एशियंस इज द नेम। चलिए गीत एंजॉय करें, आते हैं बहुत ही जल्द वापस।

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: गोंडो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर 5 साल किसको रुकना है. बन जाइए डेवलपर एंड बिल्डर और बनाइए पैसे डे वन से. कॉन्टेक्ट कीजिए अतीक खान एंड बिकम अ ब्रांड टू ग्रो योर ओन वेल्थ. 416-666-2745.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. अतीक खान साहब हमारे साथ हैं जो कि एक लोकल डेवलपर और बिल्डर हैं एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इंगेज रहे हैं. अभी भी एट द प्रेजेंट मोमेंट एज वी स्पीक ही इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. और वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं कि वो बेसिकली एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है. एक ज़मीन को अक्वायर किया जाता है, लैंड, पीस ऑफ लैंड को अक्वायर किया जाता है, उसकी जोनिंग बदली जाती है एंड देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आते हैं एंड with Atik bhai and they are part owners of that land. Now if you are also one of those jo sochte hain ki bhai ha, you do have the capital, you do have money, but you know, you're probably tired of just investing into stocks and stuff like that, ya phir aap chahte hain ki bhai kisi aur tarike se, because at the end of the day we do know what the cost of land is and how amazing returns can be. मार्केट अप डाउन चलती रहती है, बट देन सम थिंग्स यू नो हमें पता ही होता है कि किस तरह से थिंग्स वर्क. अतीक भाई इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आज. अनसर्टन मार्केट को लेकर हम अतीक भाई से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. 416-666-2745. अतीक भाई आपका स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच सनी साहब, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू एंड योर लिसनर्स. थैंक यू टू एवरीवन.
2: थैंक यू, गुड आफ्टरनून, सेम टू यू. अतीक भाई आज मैं चाहूंगा कि एक तो आप अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, दूसरा मैं चाहूंगा कि आज हमें बताएं कि ये अनसर्टन मार्केट में वी आर ओवर कॉशियस, विच इज एब्सोल्यूटली फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट. इफ वी आर ओवर कॉशियस विद आर मनी, एवरी वन शुड बी ऑल्सो. इवन मतलब एक तो होता है थोड़ा सर्टन मार्केट में बंदा होता है, एक अनसर्टन में तो वैसे ही डबल अप हो जाता है. लेकिन आप बताइए कि इस पूरे बिजनेस कॉन्सेप्ट में अनसर्टनिटी को आप किस तरीके से देख रहे हैं एज अतीक खान एंड एज द पर्सन दैट हैज नेवर डन दिस बिफोर, हैज नेवर अंडरस्टूड द बिजनेस कॉन्सेप्ट जो आप पेश कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप किस तरह से इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे.
3: ठीक है सर, तो मैं पहले अपनी बात कर लेता हूँ. बाई नेचर हद से ज्यादा कंजर्वेटिव हूं मैं. जो चीज आप 10 दफा देखते होंगे मैं शायद उसी चीज को 20 दफा एनालाइज करूंगा. ये एक मेरी नेचर है और अब जिस एज के मैं लाइफ के हिस्से में हूं, अब ये नेचर नहीं चेंज हो सकती. मैं कंजर्वेटिव ही रहूंगा, 50 दफा उसको एनालाइज करूंगा बिफोर आई से यस और नो टू समथिंग. तो ये तो हो गया मेरी बात. अब आ जाते हैं उनकी बात जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, और वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, रिस्क टेकर भी हो सकते हैं, लेकिन जो अब मैं बता रहा हूँ वो जरा काम की बात है, समझे. होता क्या है, आप पिछले कनाडा की 20-25 साल की एक हिस्ट्री देख लें, और ये मैं 20-25 साल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जितना रिवोल्यूशन इन 20-25 सालों में हुआ है उतना लाइफ में कभी नहीं हुआ. ठीक है ना, इंटरनेट आ गया, सेलफोन आ गए, आपके पास चीजें एक्सेसिबल हो गई, ये गूगल, याहू, ये सब चीजें आ गई, तो रिसर्च मटेरियल अब आपके पास बहुत है. तो होता क्या था, आप हमेशा सोचते थे कि आपका $1 आपको क्या कमा के दे रहा है, जिसको आप ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यील्ड कहते हैं, 50 नाम आप उसके दे दो. आइडिया यही रहेगा कि मेरा $1 मुझे क्या कमा के दे रहा है. एक टाइम था जब आप $1 के ऊपर 2 सेंट पे भी खुश थे, 3 सेंट पे भी खुश थे, $5 पे भी खुश थे, तो वो कहलाती है आपकी रिटर्न या यील्ड. फिर क्या हुआ, पिछले 10-20 सालों में प्राइस ऊपर नीचे होने लगी. वही $1 $2 $3 $4 प्राइस ऊपर चढ़ के चली गई और आपका रिटर्न वही रहा, वही 2 सेंट 4 सेंट 5 सेंट, या परसेंटेज में बात कर लें 2% 5% 10%. तो जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते वो दोनों आइडिया हैं, प्राइस भी आपके हाथ में नहीं है और यील्ड भी आपके हाथ में नहीं है. तो अब ऐसे में एक वो बंदा जो हैंड टू माउथ चल रहा हो या 9 to 5 की जॉब कर रहा हो, एक घर खरीद चुका हो, कुछ डेट्स हो, उन डेट्स को पे करना चाहता हो और नहीं चाहता कि अपने घर की इक्विटी को यूज कर ले, या रीफाइनेंस कर ले तो वो क्या करेगा? सर वो जो छोटा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है उसको वो लैंड में लगाएगा। लैंड वो वाहिद एसेट है जो डिप्रिशिएट नहीं होता। आपकी हर चीज अपनी वैल्यू खो देगी, घड़ी अपनी वैल्यू खो देगी, आपके ग्लासेस अपनी वैल्यू खो देंगे, घर वैल्यू खो देगा, गाड़ी वैल्यू खो देगी, बट लैंड अपनी वैल्यू नहीं खोता। ये आगे ही बढ़ती रहती है और मेरी हेल्प से जिस प्रोसेस से मैं उस लैंड को गुजारता हूँ, जिसको कि आप अप्रूवल प्रोसेस कहते हैं, वही चीज जो आप 50,000, 1,00,000 और 2,00,000 में पर एकड़ खरीदोगे उसको सेल के टाइम पे आप 200% तक ऊपर बेचोगे। बट इन सब के लिए आपको मेरे साथ एक मीटिंग करनी होगी, 416-666-2745 नंबर मिलाइए, मैसेज छोड़ें, एक मीटिंग करें। लॉन्ग वीकेंड आ गया है, देखिए कि आपके लिए लैंड किस तरह की अपॉर्चुनिटी ला सकती है, कैसे मिरेकल्स वो आपके लिए खोल देती है। मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, 25 एकड़ की लैंड आपको 1,000,000 के अंदर मिल जाए और उसके ऊपर आप सिटी से अप्रूवल कराइए और उसको आप फिर बेचेंगे 4,000,000 में। इसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं आती। ये वो लैंड होती है जो मार्केट में नहीं होती है सनी साहब, ये आप लेते हो कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, रिसीवरशिप के थ्रू, सिटी ऑक्शन के थ्रू। तो कॉल करिए फर्दर डिटेल्स के लिए, 416-666-2745।
2: जी दोस्तों, जो जिस तरह के आपके क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मैं वही क्वेश्चंस को किसी ना किसी तरीके से ऑन एयर जो है अतीक भाई तक पुट फॉरवर्ड करता हूं और उनसे जवाब जो है हम लेते हैं। बाकी ये है कि जैसे अतीक भाई ने कहा कि लॉन्ग वीकेंड इज कमिंग, लॉन्ग वीकेंड में जहां पर हम फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, वहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने फैमिली के लिए करना भी चाहते हैं, वो ये है कि भाई मैं फ्यूचर अपने फैमिली का कैसे बेहतर करूं, सिक्योर करूं, सेफ करूं। तो उसके लिए अतीक खान साहब से एक मुलाकात करना आई थिंक कुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू, द बेस्ट स्टेप दैट यू टुक दिस वीकेंड। दिस इज May 14th, May 18th को विक्टोरिया डे है, इस दौरान इस बीच आप एक बार मुलाकात करें, कहीं ऐसा ना हो ये करते करते समर गुजर जाए फिर आपको यार चलो लेट मी टेक द डिसीजन देन, लेट मी डू इट देन, और फिर यू नो करते करते ये वक्त वीकेंड किस तरह से भागते हैं, दौड़ दौड़ के यू नो हाथ से निकल जाते, वी डोंट रियलाइज। सो मैं कहूंगा
3: ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़े टाइम के लिए है, जैसे ही मार्केट चेंज होगी, जो मैं बता रहा हूँ आपको कि $1,00,000 पर एकड़ में और $2,00,000 पर एकड़ में आपको लैंड मिल रही है, यही चीज 4,000 और 5,00,000 पे चली गई तो आपके हाथ से निकल जाएगी। इस मौके को अवेल कर लें, भले आपके पास छोटी अमाउंट हो, इट डजंट मैटर। तो कॉल कीजिएगा, बहुत टाइम दिया आपका, थैंक यू सो मच। 416-666-2745
2: एक्सलेंट, 416-666-2745, 416-666-2745 अतीक खान साहब का नंबर है। अतीक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
3: आपका शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू ब्रदर। 416-666-2745 CHOLEBHATURE.CA, चार लोकेशन से दिल्ली वाले छोले भटूरे सर्व करते हैं। तो आपने पहुंचना है 2 इन ब्रैम्पटन, 111 इन मिसागा, टेक आउट डाइन इन ऑप्शन दोनों आपके लिए जो है अवेलेबल है, एंड हैव द बेस्ट छोले भटूरे दैट यू कैन थिंक ऑफ। चलिए ऐसे करते हैं, क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा की तरफ से एक प्यारा सा गीत आपको सुनाते हैं, कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाज में, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, खामोशी वॉज द फिल्म, फिल्म आया ऑन सलमान खान एंड मनीषा कोयराला, एंड नीलम सदोव मॉर्गेज क्वीन अक्सर जो है फ्राइडेज को आती है, बट आज हमने रिक्वेस्ट करके उन्हें आज 1:15 बजे कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, फिर आगे चलकर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस की अमेजिंग डील्स भी आपको दिलवाते हैं। सीपी चटवाल, सरबजीत गिल एज ऑलवेज 1:45 बजे हमारे साथ होंगे। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक।

0: से चलो। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086, 6478661086, राज जोशी, नाम ही काफी।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं, करते हैं बातचीत। राज जी, आपका स्वागत है।
3: सर जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और प्यारे लिसनर्स को, वेरी गुड आफ्टरनून
2: जी।
3: सर जी, कैलेडन इज बजिंग विद एंटिसिपेशन, एक न्यू लिमिटेड रिलीज है कैलेडन में, और आप फर्स्ट हो सकते हैं टू सी द फोर प्लान्स एंड एलिवेशंस। हमें आप कांटेक्ट कर लें अगर आप डिटेल्स चाहते हैं, परफेक्ट होम पा सकते हैं इन ऑफ योर लाइफस्टाइल इन दिस जीटीए'स अक्लेम्ड कैलेडन कम्युनिटी। 20 फुट के फ्री होल्ड टाउन, 20 फुट फ्री होल्ड टाउन फ्रॉम द मिड 600, डबल कार गैराज, दैट मींस फोर कार पार्किंग, एब्सोल्युटली जबरदस्त एरिया है। चिंकूसी रोड और मेफील्ड का इंटरसेक्शन on the north side, very close proximity to highway 410 bhi hai, aur of course all amenities are around. Agar aap Caledon ko apna residence banana chahte hain, bahut zabardast opportunity hai, main contact kar le, we can share the details with you. Aur saath hi saath ek water down mein bahut zabardast opportunity hai, 3 bedroom town homes ki aap appointment hamare through banwa sakte hain agar aap chahe. 799 का प्राइस था जो कि अब 649,990 का है। डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, स्टैक्ड टाउन्स है ये, और 3 बेडरूम 2.5 बाथरूम, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1400 स्क्वायर फुट, और स्टोन के किचन काउंटर टॉप्स, बहुत ही जबरदस्त कवेटेड एड्रेस है, हैमिल्टन बर्लिंगटन कॉरिडोर का ये, और ऑफ कोर्स फॉर गुड रीजन। क्लाइंट्स यहाँ पर जो भी भाई बहन चाहेंगे कि वो इसको अपना एड्रेस बनाए, वाटर डाउन को, ये बहुत टाइट नेट कम्युनिटी है और मेजर एक्सेस है मेजर सिटीज को, कन्वीनियंट एक्सेस है थ्रू 403, 407, एल्डरशॉट, गो स्टेशन, और ऑफ कोर्स आप मिनट्स टू पार्क ट्रेल, शॉपिंग, डाइनिंग, एवरीडे अमेनिटीज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वाटर डाउन में भी तो हमें कॉन्टैक्ट कर लें। बहुत सारी जबरदस्त प्री कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटीज विद वेरी यू नो गुड रिबेट्स राइट नाउ, और बिल्डर्स की ओर भी अगर हम देखें, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त ऑफर्स इस वक्त दिए हुए हैं। और साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो के लिसनर्स के लिए हमेशा हमारी टीम से भी एक बहुत जबरदस्त ऑफर होता है, वन विच इज ऑलवेज देयर, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, वो है फ्री मार्केट इवैल्यूएशन। हमें आपने कांटेक्ट करना है और जस्ट हमें बताना है कि आप साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो के लिसनर हैं। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून, थैंक यू।
2: सुपर, बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। 6478661086, 6478661086, बहुत ही नॉलेजेबल रियल्टर, द वन एंड ओनली राज जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: आभार
2: जी। 6478661086, बाहर का तापमान जो है हो चुका है अबाउट 9 एंड फील्स लाइक 6 एंड इट्स अ चिली डे, डजंट लुक लाइक मिड मे, बट नेक्स्ट वीक विल बी डिफरेंट। एंड गीत संगीत चलना चाहिए, आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, वी विल प्ले देम वन आफ्टर अनदर, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 12 टुडे, इट्स गोना बी अ बिट रेनी आल्सो हियर एंड देयर। सो चलिए ऐसे करते हैं, बहुत ही छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आगे चलकर मॉर्गेज अलायंस की मॉर्गेज क्वीन नीलम सडोव भी हमारे साथ होंगे। एशियंस के बारे में बता दें, इट्स अ पॉपुलर साउथ एशियन क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल स्टोर, मार्कम रोड और लॉरेंस एवेन्यू के करीब स्कारब्रो में, 3601 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट स्कारब्रो, जो कि जाना माना स्टोर है फॉर देयर प्राइसिंग, फॉर देयर स्टाइल्स, फॉर द फैशन, लेटेस्ट साड़ीज, लहंगा, सलवार सूट्स, ब्राइडल वेयर, मेन्स ट्रेडिशनल क्लोथिंग, ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम्स, अनबिलीवेबल, ओनली एट एशियंस। Enjoy these few कुछ पंक्तियां हैं जो हाथ लगी हैं आपके लिए, फिर आते हैं वापस।
4: सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, खुदा पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती।
5: Genesis Markham, यहां मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे, अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
6: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info.
7: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ek var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek suneya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
8: इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
9: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
10: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
9: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
11: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
1: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
1: ये वो टाइम ऑफ द ईयर है जिसका आप वेट कर रहे थे. डेमोन्स्ट्रेटर इवेंट एट डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस मई 16 तक. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.

0: 1940.
1: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend escape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही visit करें waynesautogroup.com.
2: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
3: अच्छी याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
2: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
4: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे. choleBhature.ca, कॉल 905-458-2448.
0: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स.
5: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
6: निशा, पूछ मत. सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही. होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
5: मैं समझ गई. उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
7: शी इज राइट. चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 9054573232. Clear Optical by Varun Kanda.
0: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद. क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद. सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए. ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 4166710577, 4166710577, alldebtsolutions.ca.
8: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन मई 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave or Denison Street.
9: Don Valley North Hyundai, doing business your way.
8: Member of Wayne's Auto Group.

0: Unlimited Radio on CMR 101.3 FM, Monday to Friday, 12 to 2 p.m.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी एंड ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंस लॉन्ड्री के सुल्तान जी हमारे साथ हैं. देर ओपन 7 डेज अ वीक 11 AM टू 7 PM एंड द नंबर इज 905-450-2828. और देखते हैं कि विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड की क्या धमाकेदार डील्स लेकर पहुंचे सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन की ओर सुल्तान जी, आपका स्वागत है.
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सुल्तान जी. सबसे पहले टीवी सेक्शन पर आपसे कुछ अमेजिंग डील्स लेते हैं लॉन्ग वीकेंड की.
2: बिल्कुल सनी भाई, एक्चुअली हमने भी कंपनी से ये बात की थी, ईमेल की थी, फिर मीटिंग हुई हमारी और डिसाइड किया गया, क्योंकि राइट आफ्टर मदर्स डे वीकेंड ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो इसकी वजह से मदर्स डे वाली प्राइसेस, जो कि जैसे मैं हमेशा कहता था साल में एक दफा मदर्स डे आता है और साल में एक दफा ही मदर्स डे प्राइस मिलती हैं, वही प्राइसेस विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे एक्सटेंड की गई हैं. तो 18th of March तक आपको स्पेशल लोएस्ट प्राइसेस जो है ये विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे मिलेंगी, जिसमें 85 इंच सैमसंग टीवी आपको मिल रहा है ओनली 999. सिर्फ 999 में आप 85 इंच का सैमसंग टीवी ले सकते हैं, जिसकी रेगुलर $1800 प्राइस थी. सेल पे भी ये 1399 का बिकता है, लेकिन 999 का विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे आपको दिया जा रहा है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से. 55 इंच सिर्फ 3

0: 699 में या 65 इंच सिर्फ 699 में अगर लेना है तो आपको आना है जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 हमारा नंबर है या BramptonAppliances.com ये वन वर्ड है BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट से डायरेक्शन ऑफ द स्टोर भी ले सकते हैं 905-450-2828 जी
1: 905-450-2828 जहां पर लॉन्ग वीकेंड विक्टोरिया डे की अमेजिंग डील्स लेकर सुल्तान जी पहुंच चुके हैं अप्लायंस लॉन्ड्री के सेक्शंस को भी यहां पर हम कवर करेंगे ताकि देखते हैं कि उन सेक्शंस में भी क्या अमेजिंग डील्स हैं जी सुल्तान जी
0: बिल्कुल जी बंडल पैकेजेस में तो बहुत शानदार डील है मोर देन 40% कस्टमर सेव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल लेना है स्टेनलेस स्टील का तो $5,000 वाला $29.99 में मिलेगा विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड 18th of May तक $2,000 आप थ्री पीस किचन बंडल पे सेव करेंगे और 6 मंथ में पे करना है अगर आपको बिल्ट इन किचन लेना है या पैनल रेडी फ्रिज वो भी 48 इंच का या पैनल रेडी डिशवॉशर के साथ बंडल पैकेज चाहिए तो 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है हमारे पास जो बॉश का बिल्ट इन कुकटॉप बॉश का बिल्ट इन वाल्वन विद माइक्रोवेव बॉश का बिल्ट इन डिशवॉशर और बॉश का ही बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज विद आइस एंड वाटर डिस्पेंसर $16,000 वाला बंडल पैकेज बिल्ट इन किचन विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड पे ओनली 9,900 में 9,900 में मिलेगा 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान पे फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर एनर्जी सेवर एनर्जी स्टार ये प्लैटिनम सीरीज है प्लैटिनम कलर में आपको वॉशर भी स्टीम और ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ मिलेगा $2,500 वाला ओनली $1,799 में इसमें भी सिर्फ वॉशर एंड ड्रायर लेने पे ही आपको $700 की सेविंग होगी विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मिस ना करें बोवेड एंड चिंकूजी वाली लोकेशन पे आना है जी 905-450-2828 टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर $1,700 वाला $1,099 में पेयर मिल जाएगा वॉशर ड्रायर दोनों और अगर आप किचन में काउंटर टॉप एयर फ्रायर लेना चाहते हैं वो भी निंजा क्रिस्पी निंजा बेस्ट नेम है इस वक्त प्रीमियम ब्रांड है निंजा क्रिस्पी हमारे पास इस वक्त स्पेशल प्राइस पे आया है जी $300 वाला ग्लास पॉट के साथ निंजा क्रिस्पी एयर फ्रायर ओनली $149 में जस्ट ओनली फॉर विक्टोरिया डे लॉन्ग वीकेंड मंडे 18th of May तक ये स्पेशल प्रमोशन है जरूर विजिट करें 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी
0: थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया
1: जी 905-450-2828 ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940.
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइन्ड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Wayne's Auto Group.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
3: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
4: Yeah.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
3: अक्सर घर खरीदे में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल, 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
4: सुन दे, मेरे प्रादी आज फ्लाइट है इंडिया तो।
5: ओ याद है, पर उन्हों कहीं कि आउंदा होया एक प्लेट छोले भटूरिया दी फड़ लिया वे।
4: इंडियन स्वाद वाले छोले भटूरे खाल ले, इंडिया दे सुपने ना देखो, choleBhature.ca ते चलो।
6: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे ते होर भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड ले पहुंचो। choleBhature.ca, कॉल 9054582448।
7: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga, and 1 by Vaughan Mills.
8: He's breaking through the midfield.
9: Don Valley North Hyundai aapko de raha hai mauka FIFA World Cup 2026 ke tickets jeetne ka. Koi bhi vehicle biker ke ghar le jaye aur paye double entries.
8: This is dangerous. Into the box.
9: Winter tires ya extended warranty le. Aur har ek ke saath paye ek extra entry. Aaj drive kare, kal jeete. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर। होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर सरबजीत गिल, सीपी चटवाल हमारे साथ हैं, रियल एस्टेट की रियल रिपोर्ट लेकर पहुंच चुके हैं। सरबजीत जी, सीपी जी, आप दोनों का स्वागत है।
10: थैंक यू सनी जी एंड सारे लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार।
2: जी, आप दोनों को भी नमस्कार। एंड क्या रिपोर्ट है सीपी जी रियल एस्टेट की? May 14th है, वी आर mid of the fifth month, and before we know, you know, this we'll just have about 7 months to go. Hello, जी, सी पी चटवाल, सरबजीत गिल, 6478872707 या 416-627-4737। सी पी जी,
10: थैंक यू सनी जी।
2: जी, एंड मेरा सवाल ये था कि जहां पर फिफ्थ मंथ इज ऑलमोस्ट यू नो पूरा हो चुका है, आधा तो महीना चले गया है, किस तरह से आप नेक्स्ट 7 months को देख रहे हैं? व्हाट इज इट दैट बायर्स शुड डू, सेलर्स शुड डू, व्हाट इज इट दैट दे शुड नॉट डू, क्या कहना चाहेंगे? ओके,
10: हेलो,
2: हाँ जी सीपी जी, आप ऑन एयर हैं।
10: हाँ जी सनी जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है और मार्केट की बड़ी एक हेल्दी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और आपने भी अभी न्यूज में सुना भी होगा और देखा भी होगा कि ऑलरेडी मार्केट में एक्टिविटीज बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग एंड लॉट ऑफ बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन की वी आर ऑल्सो वर्किंग विद कपल ऑफ बायर्स, कैम्ब्रिज किचनर, ब्रैंडफोर्ड एंड एजेक्स एंड विटमी एंड ओशवा, इन डायरेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखने को मिल रही है।
2: जी जी,
10: इवन की ब्रैम्पटन की भी सेल फिगर्स इम्प्रूव हो रही है।
2: जी जी
11: सनी
2: जी,
11: पिछले महीने तक कोई भी हमारी भी इस बात से इत्तेफाक रखने को तैयार नहीं था, बट अब जो है मतलब वो इत्तेफाकी बढ़ रही है।
2: जी, इज इट
12: obviously the listings have gone up, but jab aap keh rahe hain ki is it people, hamare listeners jo aapko contact kar rahe hain for home buying, is it sellers are more coming into the market, is it more multiple offers that you're saying, because the sales are obviously down.
11: Last week we put in an offer on East End, and that property got sold much above asking price, and there were 17 offers on that property.
12: Wow.
11: Yes.
12: And these are more for first-time home buyers, or how do you?
11: Yeah, we were representing first-time home buyers.
12: Gee.
11: You know, we are expert in first-time home buyers. We are CP both. Again. And the Brampton market has a little depression for different reasons.
12: Mm.
11: But agar aap last 10 years mein agar aap dekhe, to South Asian community ki jo immigration hai, wo highest hui hai. So GTA will be depending on the movement of the South Asian community.
12: Jee.
11: So it's just a matter of fact ki aap dekhenge ki yahan pe bhi jo hai movements aapko achhi nazar aayenge. And going forward, agar aap review kare, bahut saal pehle government ne foreign buying jo implement ki thi, wo 1st January 2027 ko khatam ho jayegi. Theek hai. Aur I think we are few months away from that.
12: Jee.
11: And already millions of dollars ki purchases जो है वो कॉन्डो मार्केट्स में हो रही है, जो कि बिग इनकॉर्पोरेशंस बाय कर रही है, एंड दे नो द रीजन दैट दिस इज द राइट टाइम फॉर देम टू डू इट.
12: जी.
11: बट जो कॉन्फिडेंस ऑफ इंडिविजुअल होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि दे आर डिपेंडिंग ऑन देमसेल्फ, दे आर नॉट बिग इनकॉर्पोरेशंस. बट यहीं पे वो चीज फर्क पड़ती है जहां पे हम बात करते हैं ना कि पैसे वाला पैसा बनाता है, क्योंकि पैसे वाला को थोड़ा सा टाइमिंग का डिसीजन लेना आता है.
12: अभी एक सवाल हमारे लिसनर का आया है कि रेंट में, ये सवाल कई बार पहले भी आता होता था, बट देन लिसनर सेंट अ सिमिलर क्वेश्चन कि रेंट में द फैमिली इज पेइंग अबाउट $2,200 इन रेंट लिविंग.
11: इमीडिएटली घर बाय करना चाहिए
12: उनको, घर बाय करना चाहिए आप कह रहे हैं.
11: बिल्कुल, अगर आप $2,200 रेंट पे कर रहे हैं, अगर आपका जो है क्रेडिट रीजनेबल है और आपकी इनकम रीजनेबल है, तभी आप कर.
12: हाउ मच डाउन पेमेंट वुड यू सजेस्ट टू देम इफ दे आर लिस्टिंग?
11: देखिए, इन एंड अराउंड 700,000 में आपको आज की डेट में ब्रैम्पटन में भी अफोर्डेबल घर मिल रहा है.
12: ओके ओके. एंड आर यू लुक,
11: यू आर द एक्सपर्ट इन मॉर्गेज, यू कैन वेरी वेल सी दैट कि आप अगर आप 2200 रेंट पे कर रहे हैं, 70% यूटिलिटीज अगर आप पे कर रहे हैं, ठीक है, सो यू आर नॉट टू फार ऑफ फ्रॉम बीइंग अ होम ओनरशिप. अगर आपके पास मिनिमम डाउन पेमेंट है और आपका क्रेडिट रीजनेबल है, तो आई थिंक सनी यू कैन वेरी वेल डू द कैलकुलेशंस दैट इट्स गोना बी लाइक नॉट टू फार अवे फ्रॉम ओनिंग इट.
12: बिल्कुल. 416-627-4737 सरबजीत जी का नंबर है, CPG 647-887-2707. एंड सवाल हमारे लिसनर का था कि भाई अगर मैं $2,200 रेंट में पे कर रहा हूँ कि मुझे घर ओनरशिप, होम ओनरशिप की तरफ कदम रखना चाहिए या नहीं, और सरबजीत जी ने कहा कि 110% यस, यू नो समथिंग इन द $700,000 रेंज इज अवेलेबल इन टुडेज मार्केट इन ब्रैम्पटन. सरबजीत जी, ओवरऑल मतलब ये साल के 5 महीने तो कह लीजिए ऑलमोस्ट डन ही है, किस तरह से आप 2026 को देखेंगे? क्या आपके करियर में, सीपीजी के करियर में, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग ईयर फॉर रियल एस्टेट्स, for real estate, realtors overall, not real estate overall?
11: Not really. देखिए, हमने वो वक्त देखा हुआ कि जब लोग कहते थे कि अमेरिका की जो इकोनॉमी, हमने अगर कुछ हुआ तो कनाडा बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है. तो हमने वो देखा कि अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत कुछ हुआ, बट कैनेडियन इकोनॉमी जो है वो अच्छे से मूव करती रही.
12: जी,
11: ठीक है. उसके बाद हमने ये वक्त भी से गुजर रहे हैं जहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं और तुम भाई भाई नहीं है, ठीक है. तो वो वाला वक्त भी आपके सामने, वी हैव अ वेरी गुड लीडरशिप, आई बिलीव सो, नाकानी साहब जो कर रहे हैं वो उसका जो इफेक्ट जब तक आएगा कि वो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो यूथ है, आई थिंक इट विल बी हाईली पेइंग जॉब्स विल बी अराउंड ओवर हियर. और जो फॉरेन बाइंग का जो है, मतलब आई थिंक अगर वो इस साल के एंड और बिगिनिंग ऑफ 1st January 2027, विच इज लाइक अनदर 7 months अवे और लिटिल मोर डेज, अगर वो हटता है तो बहुत सारे जो आई थिंक जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कनाडा फॉर ए बेटर एंड लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट.
12: जी, एंड मैं एक बार फिर से 416-627-4737 सरब जी जी का नंबर दे दूं, सीपी चटवाल 6478872707। सीपी जी, वेरी क्विकली मैं चाहूंगा कुछ लिस्टिंग्स भी शेयर करें जहां पर लॉन्ग वीकेंड है, विक्टोरिया डे वीकेंड है, दिस इज अ टाइम व्हेन फैमिलीज गेट आउट एंड यू नो वैसे भी वेदर भी इज गेटिंग बेटर, कोई लिस्टिंग्स जो चेकआउट कर सकते हैं परिवार?
10: सनी जी, ब्रैम्पटन में हमने बहुत प्यारा डिटैच का लिस्ट किया है, 799,000 में, 3 बेडरूम का डिटैच हाउस है, फिनिश बेसमेंट, सेपरेट एंट्रेंस, बहुत बढ़िया गैराज है और विद एक 4-car पार्किंग, बहुत बड़ा लॉट है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है रेल आसन एंड होटेंटोरियो पे। आप प्लीज कॉल कीजिए एंड ऑन द वीकेंड वी आर प्लानिंग फॉर ओपन हाउस एंड वी कैन शो दिस प्रॉपर्टी, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिटैच हाउस।
12: जी, जिसके लिए सीपी चटवाल सरबजीत गुल को जरूर के साथ संपर्क करें। 799,000 की प्रॉपर्टी है। विल देयर बी ओपन हाउस यू सेड दिस वीकेंड?
10: हाँ जी, हाँ जी, सैटरडे संडे 1-4, 1-4।
12: ठीक है जी, सैटरडे एंड संडे?
10: यस,
12: ठीक है जी, सैटरडे एंड संडे 1-4 PM ओपन हाउस है इस प्रॉपर्टी का इन ब्रैम्पटन। सरबजीत गिल सीपी चटवाल से आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी बाकी की ले सकते हैं 416-627-4737 या 6478872707। जाने से पहले अगर आप कुछ ऐड करना चाहें यहाँ पे?
11: सर, इसके लिए सनी जी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ सभी के लिए
12: जी,
11: कि इफ दे आर हैविंग देयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, then they really have to think, should they keep on carrying it as investment properties or should they think differently? Because abhi jo hai wo, jaise aapne mention kiya, my feelings is anybody who is paying $2,000 rent, $2,200 rent or $2,500 rent, anything above $2,000 they are paying, is their time to seriously think into, and the market is already started thinking into those terms. We are seeing youngsters, we are seeing young families, and even hamara jo last month jo Cambridge mein property thi, we have like a turnover of more than 160 showings happen on that,
12: okay,
11: including the walk-in and open houses and shown by the realtors. So I think what we are seeing on the west end, what we are seeing on the east end, we are seeing that yes, there are a lot of interest is developing around.
12: जी बिल्कुल, और हमारा तो यही कहना होता है कि भाई होम बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, इन्वेस्टर हैं, जिस तरह से भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, कदम पहली बार रख रहे हैं, एक्सपीरियंस 2 decade का मिलता है जब सरबजीत गिल सीपी चटवाल एक साथ होते हैं, आपको रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही मकसद होता है कि भाई इनके क्लाइंट को सबसे बेस्ट डील कैसे मिले, दिस इज़ व्हाट दे वर्क फॉर 365 days a year। 6478872707 या 416-627-4737 द वन एंड ओनली सरबजीत गिल सीपी चटवाल फ्रॉम होम लाइफ मिरेकल रियल्टी। जेंटलमैन बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट वीकेंड, अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात।
11: थैंक यू, हमारी तरफ से भी जो है, मेरे ओसीबी की तरफ से विशिंग एवरीबॉडी अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय द विक्टोरिया डे वीकेंड विद द फुल ऑफ द कैपेसिटी।
12: जी, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सीपी चटवाल सरबजीत गिल की तरफ से एक प्यारा सा गीत भी हमने लाइन अप कर दिया उदित नारायण की आवाज में, पापा कहते हैं मुझे यहाँ पे इजाजत दीजिए, मुलाकात कल होगी विद न्यूज व्यूज एंड योर म्यूजिक योर रिक्वेस्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।
9: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर, ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर। वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
13: You're listening to The Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jal mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, masti ki rail gari, aayi Sean Express, masti ki rail gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी.
5: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय Sean मीडिया. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. मैं शालिनी आपका वेलकम करती हूँ Sean Express मस्ती की रेलगाड़ी की आज की राइड में ऑन CMR FM 101.3. दोस्तों, दिन अभी बाकी है, एनर्जी अभी बाकी है और अच्छे मोमेंट्स अभी भी बाकी हैं. जो हो गया दोस्तों सुबह से अब तक उसे जाने दीजिए और जो आने वाला है उसे स्माइल के साथ वेलकम कीजिए. आज का मूड सिंपल है, फील लाइट थिंक ब्राइट. और आज का पॉजिटिव कोट कहता है, जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसका दिन अपने आप बेहतर लगने लगता है. तो आज दोस्तों अननेसेसरी स्ट्रेस को म्यूट कर दीजिए, दिल को थोड़ा फ्री रखिए और हर पल को नए एहसास के साथ जिए. म्यूजिक रहेगा फील गुड, बातें होंगी दिल से और वाइब्स रहेंगी हमेशा की तरह आज भी वार्म, हैप्पी एंड एनर्जेटिक. तो बने रहिए हमारे साथ और आज के दिन को बनाइए स्मूथ, पॉजिटिव और सुपर रिफ्रेशिंग. गुड आफ्टरनून.

0: शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी स्टेशन CMR 101.3 FM पर आ चुकी है. Dear sponsors, for fast, effective and result-oriented ride, get on board Shaun Express. For info, call 416-569-7812, 416-569-7812 or email info@shaunmedia.com, shonmedia.com.
1: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Farq aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
0: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
1: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
2: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
3: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
2: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
3: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुंचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
2: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल. वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट. स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का. फ्राइडे सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20.26. 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली वड़ा, स्पाइसी एरोमेटिक करीज एंड मोर. अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे. डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर. मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600, that's 905-789-6600.

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 9052061008, दैट इज 9052061008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना। साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर,
2: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर।
1: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स। बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी।
3: Team Hashtag Homes and Rahul Kashyap Lekar aaye hain first time home buyers ke liye an amazing opportunity. Free whole town homes from $499,000 and detached homes from $605,000. First time home buyers can enjoy up to $130,000 in savings with new rebates, unlocking home ownership for the first time home buyers with the closing of 2027. Agar aap is opportunity ko grab karna chahte hain, then get in touch with Team Hashtag Homes today at 647-993-4844.
4: Aap rishte ko chalana chahte hain ya phir ghar basana chahte hain, lena hai koi bahut bada faisla ya karna hai karobar, स्ट्रेस और एंजाइटी ने जिंदगी को हिला के रख दिया है, या फिर शादीशुदा लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना है, तो ये सब सितारों की वजह से भी हो सकता है। आप सबसे बात करके डिसअपॉइंट हो गए हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, बात कीजिए फिफ्थ जनरेशन एस्ट्रोलॉजर मास्टर धनिक महाराज से। 437-829-6023, it's 437-829-6023, Master Dhanik Maharaj।
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस। This segment is sponsored by Madras Restaurant, bringing you authentic South Indian flavors with their unlimited thali. 20 plus delicious dishes, fresh and unlimited, starting at just 20-26, Friday to Sunday, only at Madras Restaurant.
6: वेलकम बैक टू मस्ती की रेलगाड़ी। आप है मेरी यानी शालिनी के साथ, और खोलते हैं बॉलीवुड कैलेंडर का पहला पन्ना और देखते हैं कैसी पर्सनालिटी की जो ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन्स का भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मिस वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड तक का उनका सफर ट्रूली इंस्पायरिंग है। हम बात कर रहे हैं स्टनिंग एंड टैलेंटेड मनुषी छिल्लर की, और इन्होंने दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन किया जब उन्होंने मिस वर्ल्ड 2017 का क्राउन जीता। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली एक ग्रैंड हिस्टोरिकल फिल्म के साथ, और अपनी ग्रेसफुल प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। सम्राट पृथ्वीराज में उनका रॉयल अवतार, द ग्रेट इंडियन फैमिली में उनका लाइट रिलेटेबल रोल, दोनों ही अलग अलग शेड्स नजर आते हैं। और उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है उसमें एक बड़ा एलिगेंट चार्म नजर आता है। और बता दें आपको कि मनुषी ओरिजिनली मेडिकल स्टूडेंट थी जो डॉक्टर बनना चाहती थी। मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने से पहले उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का टाइटल भी जीता, और उनका सोशल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शक्ति वुमेन हाइजीन अवेयरनेस के लिए था, और उसे ग्लोबल रिकग्निशन भी मिला। उनका कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स उन्हें ब्यूटी क्वीन से ज़रा अलग बनाते हैं। और ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक रोल मॉडल हैं जो ब्यूटी के साथ साथ पर्पस भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं पर फिल्माया अगला गाना, सुपर हिट ट्रैक आपकी नजर करेंगे। एंजॉय कीजिए मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी के साथ आज की राइड ऑन CMRFM 101.3। गुड आफ्टरनून।

0: फ्रेडी। और दोस्तों द ग्रेट इंडियन फैमिली से लिया गया है बहुत प्यारा सा गाना साहिबा, आपकी नजर किया शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन सीएमआर एफएम 101.3 थर्सडे मई 14 आज की तारीख है। बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो आर सोशल मीडिया फैंस फॉर ज्वाइनिंग अस ड्यूरिंग द राइड टुडे। और अब जो है मौसम की बारी है, बाहर का जो मौसम है कल के मुकाबले मैं कहूँगी बेहतर भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा ठंडा ही है। 9 degrees centigrade है और बाहर क्लाउडी स्काई है, फील्स लाइक 5 degrees हाइएस्ट आज का, प्लस 11 जा सकता है 5 बजे। और इसके साथ साथ जो लोएस्ट टेम्परेचर की बात करूं तो लोएस्ट टेम्परेचर जा सकता है यही 9 degrees centigrade रात के 11 बजे। और एक और दिन है खुश होने के लिए, एक और दिन है अपने चेहरों पर स्माइल लाने के लिए, और एक और दिन है दुनिया के चेहरों पर स्माइल लाने के लिए। यू नो समटाइम्स वी हैव टू लिव फॉर अदर्स एज वेल। आई नो वी हैव जस्ट 24 hours इन अ डे, लेकिन उसमें अपने लिए तो जीते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत जी लें तो अच्छी बात है। फिलहाल बता दूं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अपडेट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आपके घरों को, आपके ऑफिसर्स को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बनाया जाए, यश विंडोज एंड डोर्स की तरफ से वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स इंस्टॉल कर सकते हैं रीजनेबल प्राइस में। खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी खुद ही फैक्ट्री है अपनी, और उनके अपने एक्सपर्ट इंस्टॉलर्स आपकी प्रॉपर्टी पर जाकर इंस्टॉल करते हैं विंडोज एंड डोर्स। कोई मिडल मैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक exceptionally good looks, quality, security, durability, energy efficiency, सब कुछ, और price ऐसी जो आपके pocket को suit करे। इसके साथ साथ franchise options are also available if you're looking for a great business opportunity with a growing team, तो आप यश windows and doors में बात कीजिएगा धर्म जी से 416-732-3600। That's 416-732-3600। और चलिए आपको बता देते हैं देओल ट्रैवल की तरफ से कौन कौन सी डील्स आ रही हैं। दोस्तों इस आप महीने या आने वाले कुछ महीनों में ट्रैवल करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो गो टू देओल ट्रैवल टुडे, कॉल देम एंड गेट दिस डील। सबसे पहले तो ये डील सुनिए, टोरंटो से दिल्ली या मुंबई इस महीने जा सकते हैं 1 way 820 में, टोरंटो से अमृतसर 1 way इस महीने जा सकते हैं 960 में 2 bags के साथ। नाउ दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक राउंड ट्रिप लगा है लिमिटेड सीट्स के साथ $1,490। नाउ टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर से अक्टूबर तक राउंड ट्रिप लगा है $1,540 2 bags के साथ, लिमिटेड टाइम ऑफर है। और आप दोनों में से किसी भी लोकेशन पर कॉल कर सकते हैं ब्रैम्पटन एंड इटोबिको देओल ट्रैवल 905-588-5100, 905-588-5100 and 905-588-4200, 588-4200। And welcome back दोस्तों, एक बार फिर से चलते हैं अब मिडा फर्नीचर गैलरी की तरफ, और सल्यूट किया जा रहा है समर को इन एडवांस, क्योंकि अब भाई समर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो कुछ ब्यूटिफाई करते हैं। और अब तो पवन जी की 5वीं location भी आ रही है सर्व करने के लिए फ्रॉम लंडन, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम। पवन जी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
1: गुड आफ्टरनून जी, और मस्ती की रेलगाड़ी सुनने वाले सभी मेरे बहन भाइयों को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिसका नाम, प्रोग्राम का नाम ही मस्ती की रेलगाड़ी है, जब हम मस्ती की रेलगाड़ी पे चलते हैं तो मस्ती तो आ ही जाती है। और आपकी मस्ती को और बढ़ाने के लिए एक कुछ नया, क्योंकि आई थिंक प्राउड टू बी साउथ एशियन, जिसे देसी कह लो, साउथ एशियन कह लो, इंडियन कह लें, पंजाबी कह लें, स्टोरों पे कभी नहीं सुना होगा, बड़े बड़े कारपोरेट लेवल पे भी शायद कम होता होगा, आई थिंक कॉस्को शायद कर देता होगा, मिडा फर्नीचर बोल के आया आपके लिए कि हमारी सबसे जैसे नींद जरूरी है, हमारे को अच्छी नींद आनी चाहिए और मैट्रेस सभी को चाहिए होती है। अब मैट्रेस कई बार क्या होता है कि आप एक बार आते हैं, अभी तक का एक्सपीरियंस यही है, स्टोर पे आते हैं 10-15 मिनट स्टोर पे आप लेट के भी देख लेते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं, तो कई बार आपको वो कम्फर्ट पसंद नहीं आता एक दो हफ्ता सोने के बाद। तो आपका वो जो खत्म कर रहे हैं आज से मिड्डा फर्नीचर की किसी भी लोकेशन से, 5वीं location की खुशखबरी तो है, हम बहुत सारे मॉडल देंगे 120 दिन, और एक जो बहुत हाई एंड मैट्रेस नेक्टर कंपनी की ला रहे हैं उसका 365 दिन, एक साल तक आपको मैट्रेस सोने के बाद लगे कि यार कहीं ना कहीं चूक हो गई, ये तो सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये है, आए और बिना किसी कॉस्ट के आपको अपना अपग्रेड करना है, या मतलब मैं लो ग्रेड तो नहीं कहूंगा, मतलब कंफर्ट चेंज करना है कि जैसे एक मैट्रेस है उसे 4 कंफर्ट आते हैं, प्लस आता है, मीडियम प्लस आता है, फर्म आता है, मीडियम फर्म आता है, तो आप एक ले गए उसमें से, तो आपको एक साल में अगर वो लगा कि नहीं नहीं नहीं ये तो गलती हो गई है, आ जाएं आप वापस आ जाएं, वो वापस उस मैट्रेस ट्रेड कर देंगे और नई मैट्रेस आपको पकड़ा देंगे. दूसरी मैट्रेसेस जो है जैसे वो थोड़ा मैट्रेस हाई एंड भी है और हम चाहते हैं आपके घर में अच्छी मैट्रेस पहुंचे, और दूसरी मैट्रेस जो देने जा रहा हूँ कोई भी मैट्रेस, चाहे वो 299, 399, 499, 599, कोई भी मैट्रेस मेटाफ्रिक्टर से लेंगे उसकी भी 120 दिन की स्लीप गारंटी है. 120 दिन आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमें अच्छी नहीं लग रही, गलती हो गई हमारे से, मतलब मिस्टेक हो गई, कम है लेकिन मिट्टा फर्नीचर जिम्मेदार है, आप ले आए उसे, उसको आपको वापिस कर, मतलब आपको एक्सचेंज कर देंगे और मैट्रेस रख लेंगे, हो सकता है किसी को डोनेट कर देंगे क्योंकि मैट्रेस जो यूज करी हुई है वो वापिस तो होती नहीं, तो जैसा भी होगा उसका अरेंजमेंट किया जाएगा. तो मिड्डा फर्नीचर हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग करके लाता है आपके लिए. उसी तरह फर्नीचर हम सस्ता दे रहे हैं, पहले प्राइस बीट करते थे 10% से, और मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि मेरे बहन भाई, वो भी मेरे बहन भाई हैं जिनका बिजनेस है, लेकिन क्या करें, मेरे इतना जो बड़ा एक्सटेंडर परिवार है उनके प्यार की वजह से हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है. पांचवी लोकेशन की वजह से 2% और बढ़ गया, 12% से प्राइस मैच नहीं बीट करेंगे किसी भी एडवर्टीज प्राइस को. और अगर आपके घर में अच्छा फर्नीचर चाहिए, मैं शालिनी जी क्यों अच्छा बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर जब ऐड करता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैट्रेस, अभी मैं आपको मैट्रेस कहता हूँ मैट्रेस $35 वाली ले लें, वो उसमें अच्छी क्या, अच्छा क्या होगा उसमें, मतलब फोम की मैट्रेस अगर बच्चे कुछ किसी को चाहिए तो मिल सकती है. लेकिन कल हमने एक मैट्रेस लाए, आप उसके मैट्रेस में 3 इंच तक तो आप सिंक और सिंकिन हो जाते हैं, तो 3 इंच में आपकी पूरी बॉडी पोस्चर ले लेती है, उसके बाद वो आपको ग्रिप कर लेती है कि आपको, मतलब वो मतलब ऐसी मैट्रेसें भी हम लेके आ गए. तो अगर आपका ऐसे सोफा चाहिए, आजकल 12 इंचेस कुशन हम ले आए, मेमोरी फोम ले आए, फादर सेटिंग ले आए, कस्टमाइजेशन आप ले आए, अगर आपके घर में बढ़िया फर्नीचर और रीजनेबल प्राइस पे चाहिए ना, तो मिड्डा फर्नीचर भी हो सकता है वो वेबसाइट पे ना हो, एक बार आप हमारे किसी स्टोर पे आए, हमने वेबसाइट पे एक और मैसेज दिया है कि हमारी जो ऑनलाइन प्राइसेस आप देखेंगे वो भी आपको हमने लिख दिया है मैसेज कि स्टोर पे आएंगे तो और यू डिजर्व बेटर, क्योंकि आपकी वजह से हमारी जो 4 से 5 हो रही है आपकी वजह से हो रही है, तो चाहे वो ये लिमिटेड टाइम रखें या पूरा लॉन्ग टाइम, यू डिजर्व मोर बेटर डिस्काउंट एट अवर स्टोर, तो आए आजमाएं और हमें अपना बनाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है. फिर मैंने ये एक दो चीजें बोलनी, अगर चाहते हो तो मैं बोल दूंगा मॉडल नंबर. हाँ, एक हमारे पास सेक्शनल आया है, सर पावर रिक्लाइनर है, 3 पावर रिक्लाइनर है उसमें, और सिर्फ 18 है, 18 स्टॉक है, ओनली 18, 1499 है, $1,000 आपके बचत में आ रही हो तो लाना देके जाए, मतलब ये भी है कोई हमें डील मिली तो आपके लिए फैब्रिक का सेक्शनल है, पावर रिक्लाइनर है, आए और उसको ले जाएं, आप उसका फायदा उठाएं. जो भी आपने लेना है, चाहे वो $35 वाली मैट्रेस लेनी है या वो 2000 वाली भी लेनी है, 2000 की जो बाजार में मिल रही होगी मिड्डा फर्नीचर पे तो $600 कम भी मिल रही होगी, और जो 600 की मिल रही होगी मिड्डा फर्नीचर पे $200 कम मिल रही होगी, मॉडल टू मॉडल कंपेयर करा के प्राइस देंगे आपको सस्ती, तभी तो रिश्ता बन पाएगा. तो आए हम आपका, आपकी इंतजार रहता है आपका हमेशा सदा, और जो आपका प्यार मिल रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. 416-901-2810, 416-901-2810, थैंक यू वेरी मच जी.
0: थैंक यू सो मच पवन जी फॉर शेयरिंग द वंडरफुल डील्स. आपसे फिर बहुत जल्दी हम जुड़ेंगे. दोस्तों middafurniture.com विजिट करें, 416-901-2810, दैट्स 416-901-2810. ऑल द बेस्ट पवन जी, टेक केयर जी. और दोस्तों बॉलीवुड के कुछ और पन्ने खोलेंगे बहुत जल्दी और आपको बताएंगे और किस किस का बर्थडे है आज, आज के दिन में क्या क्या खास हो रहा है. और यहाँ पर बता दें, अगर आप अच्छा कुछ खाना चाहते हैं, टेस्टी खाना चाहते हैं, तो आज है नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे. ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ट्राई किया हो तो जरूर बताइएगा ये कैसा है. तो आज अगर खाना चाहते हैं तो ये डेलिकेसी आप खा सकते हैं, नेशनल बटर मिल्क बिस्किट डे. और इसके अलावा डांस लाइक अ चिकन डे भी है, अगर आप डांस करना चाहते हैं चिकन के जैसे तो डांस करिए. बॉन्ड विद योर डॉग डे है, आपके पास अगर एक डॉगी है, एक पपी है, तो उसके साथ बॉन्ड कीजिए, उसके साथ वक्त बिताइए, उसको घुमाने ले जाइए, उसको थोड़ा सा स्पेशल फील कराइए, क्योंकि आज उनका दिन है, उनके और आपके बीच का जो प्यार है वो दिखाने का जताने का दिन है. इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है भाई, ऑनलाइन रोमांस डे, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल, जब आप ऑनलाइन आशिकी में पड़ जाते हैं तो पता नहीं चलता दूसरी तरफ कौन है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए. लेकिन अगर हम फन की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा सा फन लविंग डे है, ऑनलाइन रोमांस डे, और इसके साथ कई सारी चीजें और हैं ड्यूरिंग द शो आपको बताते चलेंगे। छोटा सा टाइनी सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर चलते हैं आज की ताजा हेडलाइंस की तरफ। शिफाली हमारे साथ जुड़ने लगी हैं इंडिया से, जुड़े रहिएगा 4 बजे तक हमारे साथ ऑन शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। डायरेक्ट नंबर टू रीच अस ड्यूरिंग और आफ्टर द शो 416-569-7812, 416-569-7812. गुड आफ्टरनून।

0: कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
1: वीरे वधिया फर्नीचर ली किथे जावा?
2: भाई चार लोकेशन तो देन सेवावा, बस ऐसे करके ही मैं ता मिड्डा फर्नीचर ते ही जावा।
3: लेटेस्ट डिजाइन एंड हाई एंड फर्नीचर विद बेस्ट सर्विसेज, मार्केट दे प्राइस नालों 10 to 30% सस्ती प्राइस।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस. शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया. न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी. फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157. That's 416-570-0157.
3: नमस्कार. शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में सवार हो चुके हैं आप और ये है न्यूज जंक्शन. पहले जान लेते हैं हेडलाइंस. ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को वियतनाम में उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रो ने ईरानी मूल के एक्ट्रेस के कारण थप्पड़ मारा था, मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा. उधर भारत में चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की घोषणा की है. ये SIR का तीसरा फेज होगा. भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर उठाया सवाल. भारतीय पंजाबी सिंगर तलविंदर हाल ही में टोरंटो में पाकिस्तानी सिंगर हसन रहीम के लाइव कॉन्सर्ट में शामिल हुए, उनके साथ मंच शेयर किया.
4: और दोस्तों अब नजर डालते हैं ताज़ा लोकल खबरों की तरफ. वॉन से एक सनसनीखेज खबर आ रही है. डबल शूटिंग हुई है. ये टारगेटेड शूटिंग है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और यॉर्क रीजनल पुलिस ने 2 लोगों की पहचान की है जो शूटिंग में मारे गए हैं. एक 49 ईयर ओल्ड पास्कुएल कैसीटो हैं और दूसरे 34 ईयर ओल्ड क्रिश्चियन बेल्सिटो हैं. दोनों को केसर और फॉरेस्ट ड्राइव एरिया में घर के बाहर खड़े होने के दौरान गोली मारी गई है. पुलिस का कहना है ये टारगेटेड हमला लग रहा है. एक विक्टिम उसी घर में रहता था और दूसरा भी नियर बाय रेजिडेंट था. करीबन 12 किलोमीटर दूर हंटिंगटन रोड और किरबी रोड्स पर एक SUV आग में जलती हुई मिली है और अब पुलिस ये छानबीन कर रही है कि क्या दोनों इंसिडेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं. टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में स्टाफ कट्स का असर अब साफ नजर आ रहा है. 218 सेंट्रल स्टाफ पोजीशंस कट की जा रही हैं. 91 वेकेंट रोल्स खत्म किए जा रहे हैं. बोर्ड का कहना है कि क्लासरूम टीचिंग पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन कई स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स प्रभावित होंगे जिससे स्टूडेंट्स को मिलने वाली सर्विसेज कम हो सकती हैं. मिसिसागा में डेंजरस हिट एंड रन का केस सामने आया है. पील रीजनल पुलिस के अनुसार इंसिडेंट ट्रुस्कॉट ड्राइव एरिया में हुआ है. व्हाइट फोर्ड पिकअप ड्राइवर ट्रैफिक रोकने के लिए गाड़ी से उतरा है और सस्पेक्ट व्हीकल ने वाइड लोड को बायपास करते हुए उसे टक्कर मारी और फरार हो गया. विक्टिम को सीरियस इंजरीज के साथ हॉस्पिटलाइज किया गया है. एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टेल विंड और जिसमें ऑटो फ्रॉड बस्ट हुआ है. ओंटारियो में स्टोलन व्हीकल्स रैकेट का बड़ा खुलासा. ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस की प्रोजेक्ट टाइविंड इन्वेस्टिगेशन में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें एक सर्विस ओंटारियो एम्प्लॉय भी शामिल है और आरोप है कि सस्पेक्ट रीविनिंग यानी विन बदलकर गाड़ियों को लीगल दिखाना चाहते थे. लोगों को फेक डॉक्यूमेंट से व्हीकल

को रजिस्टर करके बेच दिया जाता था और इन कार्स को फिर से पब्लिक रोड्स पर लेजिटिमेट व्हीकल की तरह चलाया जाता था। एक कंज्यूमर अलर्ट है, डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्टर स्कैम सामने आया है। वार्म वेदर के साथ अब स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं। पिकरिंग रेसिडेंट्स ने बताया कि डोर टू डोर कॉन्ट्रैक्टर ने ड्राइववे रिपेयर करने का ऑफर दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अगले दिन काम शुरू किया, अचानक $3,000 की डिमांड कर दी। बगैर वेरिफिकेशन के डोर टू डोर सर्विसेज अवॉइड करें, कहते हैं एक्सपर्ट्स। अप फ्रंट पेमेंट देने से पहले प्रॉपर चेक्स रखें। और अब अंत में जान लेते हैं आज का वेदर। आज रहेगा मेनली क्लाउडी स्काई विद हाई ऑफ 11 डिग्रीज एंड लोज ऑफ 9 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनते रहिए शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून। न्यूज हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय अंजुम कुरैशी। फॉर ऑल काइंड ऑफ कार एक्सीडेंट क्लेम्स कॉल 416-570-0157। दैट्स 416-570-0157। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: जी हाँ, विन लाइफ टाइम के सॉफ्टवेयर के जरिए आप दुनिया में कहीं से भी जितना चाहो पैसा बना सकते हो। एवरी सैटरडे 1 PM इनका सेमिनार अटेंड तो करें, इट कैन चेंज योर लाइफ। कॉल 905-206-1008, दैट इज 905-206-1008, और विजिट winlifetime.com। विन लाइफ टाइम।
1: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस, इम्प्रेस, इम्प्रेस।
3: वेलकम बैक दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी आप लोगों का फिर से स्वागत करती है। और आज का दिन बड़ा फैंटास्टिक है, और आज के दिन को और भी ज़्यादा फैंटास्टिक बनाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे जहन में। और सुनती हूँ मैं कि इस टॉपिक के हवाले से आप में से कितने लोग सच बताते हैं मुझे। कभी ना कभी दोस्तों हम सभी ने लाइफ में एक लेजेंडरी एक्सक्यूज ज़रूर बनाया है। कभी कभी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए, कभी कभी काम से छुट्टी लेने के लिए, कभी कभी एक्स्ट्रा नींद लेने के लिए। किसी ने कहा बुखार है लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी में वंडरलैंड में घूम रहे थे। किसी ने बोला कार स्टार्ट नहीं हो रही और असल में अलार्म ही नहीं सुना था। तो कहते हैं कि बहाना बनाने में भी एक अलग ही कला होती है। कभी खांसी कभी पेट दर्द की दवा होती है। बहाना बनाने में भी एक अलग कला होती है। कभी खांसी कभी पेट दर्द की दवा होती है। काम या स्कूल से छुट्टी चाहिए जब दिल को, काम या स्कूल से छुट्टी चाहिए जब दिल को, तब ऑस्कर विनिंग एक्टिंग भी हवा होती है। तो आपसे मुझे पूछना है कि कौन सा सबसे ज्यादा फनी एक्सक्यूज आपने अपनी जिंदगी में बनाया है अपने वर्क या स्कूल को अवॉइड करने के लिए। वो क्या बहाना आपने बनाया है छुट्टी लेने के लिए, बस एक दिन की हमारे साथ शेयर कीजिए ऑनेस्टली ऑन एयर 416-593-0055। और ये भी बता दीजिएगा लगे हाथों कि ये जो आपने बहाना बनाया है इसमें आप पकड़े गए रंगे हाथों की नहीं, डिड यू गेट अवे विद इट और नॉट। तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ये रहेगा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और आज के विनर को कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी की तरफ से $100 का गिफ्ट भी मिलेगा। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। और हमारे साथ अब जुड़ने जा रही है अगली हस्ती राहुल कश्यप जी, जो ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैं #home से, और कल हमारे साथ इन स्टूडियो रहेंगे लाइव। और आज उनके पास हैं कुछ अमेजिंग ऑफर्स हम सभी के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। राहुल जी वेलकम, हाउ आर यू?
4: जी शाल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
3: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल राहुल जी। तो क्या स्पेशल है आपके पास हमारे लिसनर्स के लिए फॉर दिस वीक?
4: जी बिल्कुल, सिंस वी ऑल नो रियल एस्टेट मार्केट इज गेटिंग रियली हॉट एंड स्पेशली जो प्री कंस्ट्रक्शन की मार्केट है for the low-rise homes, especially the way they're being priced. A lot of people are taking advantage of it. Chahe wo first-time home buyers ho, ya regular buyers the jo market mein wait karte the. Aur usi ki wajah se we are working very hard to bring in certain quality products all over the GTA and around the areas as well. So jo pehla project is pe obviously humne baat ki thi most recently, wo tha Wasaga mein. Wasaga mein hum townhomes lekar aa rahe hain. These are freehold townhomes jo shudho honge. आपका नेट ऑफ HSC प्राइस
3: 449,000।
4: ओह वाव, क्या बात है। सो साढ़े चार लाख से ये है, बहुत ज्यादा इंसेंटिव इसमें आने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो एक्चुअली पब्लिक लॉन्च है वो होगा जून में, लेकिन टीम #homes के पास May 20th से इसका ऑलरेडी एक्सेस है। And right now, we already have floor plans available as well. So, aapko wait karne ki zarurat nahi hai. We have the site plan. We have the floor plans. Our clients are looking at it right now. They're booking in their reservations right now. And May 20th, ko aapko aapki unit ki allocation mil jayegi. That's very simple. Agar aap Visakha mein lena chahte hain from 449,000 townhomes, walking distance to the beach. This is your opportunity, guys. You cannot go wrong with something like that. Or the pricing again, challenge 449,000 with HST rebate. This is an opportunity that you have to consider because again, this price point. Main yahan pe pehle bhi jo projects aaye hue Visakha mein, kuch saal pehle we had sold them there and they were pricing almost over 650,000.
3: Wow!
4: So you can imagine. Or ye jo project hai, yahan pe 3 to 5 bedroom ke options hai.
3: Acha.
4: With finished basement. Wow. So you can get a lot of options here, a lot of incentives here, like I mentioned. All you have to do is get in touch with our team and make sure you look at these floor plans, look at the site plan, tell us what you're looking for, and May 20th, we'll be able to get you your unit. Usik and Shamiji, we're also bringing in Caledon Kenda detached homes starting from mid 800,000.
3: Oh my God, really?
4: क्या बात है? Mid 800,000 से यहाँ पे शुरू होने वाले हैं single car garage, detached homes Caledon में with HST rebate. Again, this pricing is phenomenal because आप यहाँ पे hundreds of thousand dollars save कर रहे हैं because of the HST rebate benefit. But again, these are very limited release. It's not going to last for too long. We have availability here. So जो भी हमारे listeners हैं, अगर आप Caledon में भी लेना चाहते हैं and you're looking at a detached home, because again, mid 800s is a pricing jo kuch saal pehle townhomes ki thi. Now you're looking at a single car garage detached at least. We have double car garage detached as well, less than $1 million. You can't really go wrong with something like this, guys. You have to get in touch with our team right away. My direct line is 647-993-4844.
3: क्या बात है राहुल जी, आपने तो अमेजिंग हमारे साथ शेयर किए हैं प्रोजेक्ट्स और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है कि वसेगा बीच में 3 से 5 बेडरूम के टाउन होम्स हैं और साथ में उसमें बेसमेंट भी आ रही है और मिड 400s में स्टार्ट हो रहे हैं और कैलेडन में तो 800s में तो अनबिलीवेबल ऑफर है, वो भी डिटैच्ड होम्स का. तो कल हम इसके बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे राहुल जी, व्हेन आई हैव यू विद मी इन स्टूडियो टुमारो लाइव, और हमारे लिसनर्स आपको सुनेंगे देखेंगे भी सोशल मीडिया पर. तो नंबर आपका मैं बता दूं फॉर ऑल द डिटेल, 6479934844 6479934844 पर दोस्तों राइट अवे राहुल जी से बात कर लीजिए. राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, कल मुलाकात होती है, ऑल द बेस्ट.
4: जी, थैंक यू सो मच शान जी,
3: टेक केयर जी. हाँ जी, वेल दोस्तों, एक आज का जो टॉपिक है मैं फिर से अनाउंस कर देती हूँ कि कौन सा एक आपने फनी सा बहाना अपनी जिंदगी में बनाया है अपने स्कूल को मिस करने के लिए या अपने वर्क को मिस करने के लिए, जरूर हमारे साथ शेयर करें. कहते हैं कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, गलती हम सभी से होती है, लेकिन कभी कभी हम गलती करते हैं, कभी कभी बगैर किसी को हार्म किए थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती है जिंदगी में, ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं होनी चाहिए. और कभी कभी ये भी मज़ा आता है कि जैसे अगर आपका बच्चा बहाना बना रहा है और आपको पता है आपका बच्चा बहाना बना रहा है, और उसको अनदेखा करना, उसको अनसुना करना, उसको फन लेने दीजिए अपनी जिंदगी में, उसको ज़्यादा सीरियसली ना लीजिए कभी कभी. अनलेस देयर इज अ बिग ब्लंडर हैपनिंग, कोई एग्जाम है और बच्चा नहीं जा रहा, तो फिर उसको टैक्टफुली आप हैंडल करो. लेकिन कभी कभी यू नो, लेट समबडी हैव फन इन लाइफ, व्हाई नॉट. हम क्यों इतनी सीरियसली अपनी जिंदगी को लेते हैं? बहाने हम कब बच्चे नहीं थे, बड़े होकर भी बहाना बनाते हैं, बचपन में भी हम सभी ने बनाए हैं बहाने. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे, कि कौन सा एक ऐसा फनीएस्ट बहाना है जो आपने बनाया है अपनी जिंदगी में अपने स्कूल को मिस करने के लिए या अपने घर को मिस करने, अपने वर्क को मिस करने के लिए और घर को भी मिस करने के लिए. कभी कभी लोग बहाना बनाते हैं घर नहीं जाना वापस, तो उसके लिए भी बहाना बनाते हैं. और ये भी बताइएगा कि क्या आपको रंगे हाथों पकड़ा गया कि नहीं कि आप स्मार्टली उस सिचुएशन से बाहर आ गए, जरूर हमारे साथ शेयर करें 416-593-0055। और ये जो आज का क्विज है ये स्पॉन्सर किया जा रहा है कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी के सौजन्य से, जो लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड। घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर पर गोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स आप लगवा सकते हैं। फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड। बहुत ही स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइन हैं, कंपेटिटिव प्राइसिंग है, और फ्री कोटेशन आपको मिलेगा 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन, दिस वुड बी द एड्रेस। नंबर है 416-831-4790, 416-831-4790। और इसके साथ साथ अगर आप परेशान हैं पेस्ट को लेकर या वाइल्ड लाइफ को लेकर, चूहे, खटमल, कॉकरोच, बेड बग्स, ऑल दोज थिंग्स, अनोइंग थिंग्स, इफ दे आर रोमिंग अराउंड इनसाइड योर हाउस और ऑफिसेस, यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, सो वैनगार्ड पेस्ट कंट्रोल इंक है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लाइसेंस्ड एंड इंश्योर्ड हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है, और अपने घर और बिजनेस को सेफ एंड पेस्ट फ्री रख सकते हैं। अयान काशिफ जी से आज और अभी बात कर लीजिए, 647-966-4355, 647-966-4355। और आज का बॉलीवुड बर्थडे का दूसरा कैलेंडर हम खोलते हैं, कैलेंडर का इनफैक्ट दूसरा पन्ना खोलते हैं और आपको बताते हैं कि आज कौन सी और अदाकारा अपना बर्थडे मना रही हैं। सो वेल दोस्तों, टाइमलेस लेजेंड कही जाती हैं वहीदा रहमान, और इनकी ग्रेस, एलिगेंस और एक्टिंग आज भी अनमैच्ड है। ये एक ऐसा नाम है जो बॉलीवुड के गोल्डन एरा की पहचान है। इन्होंने अपने करियर में ऐसे आइकॉनिक रोल्स किए जो आज भी सिनेमा लवर्स के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी एक्टिंग में इतनी सिंप्लिसिटी, डेप्थ और नेचुरल ब्यूटी थी कि उसका जो ब्लेंड था ना वो एब्सोल्युटली परफेक्ट था। कितनी फिल्मों के मैं नाम बताऊं यहाँ पर वहीदा जी ने जो करी हैं, जो लेकिन आइकॉनिक फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो गाइड हो गई, प्यासा हो गई, चौदहवीं का चांद हो गई, और आज भी इनके जो परफॉर्मेंसेज हैं वो सबसे पावरफुल परफॉर्मेंसेज में जाने जाते हैं। ये ओरिजिनली ट्रेंड डांसर हैं वहीदा रहमान, और उनकी जो ग्रेस है उसी से आती है। उन्होंने हमेशा बड़े डिग्निफाइड रोल्स किए जो उनकी पर्सनालिटी को बड़ा रिफ्लेक्ट करते हैं, और बहुत ही लेजेंडरी डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स के साथ काम किया, और हाईएस्ट ऑनर्स से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, अपने आप में एक लेगेसी है, टाइमलेस ग्रेस और फॉरएवर इंस्पायरिंग। तो इनको हम डेडिकेट करते हैं आज का अगला गाना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, फ्रॉम द मूवी गाइड, जो 1965 की फिल्म थी। डायरेक्टर थे देवानंद और एसडी बर्मन का म्यूजिक है। आपकी नजर करते हैं यही टाइमलेस क्लासिक सॉन्ग ऑन मस्ती की रेलगाड़ी। स्टे ट्यून्ड।

0: जी हाँ, यहाँ त्योहार पूजा पाठ और सजावट का सामान, मंदिर, मूर्तियाँ, हवन सामग्री, फेंगशुई वास्तु आइटम्स, रिलीजियस बुक्स,
1: यानी पूरे इंडिया का कल्चर एक ही छत के नीचे।
0: 31 मेलेनी ड्राइव, ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-6808
1: और विजिट pujahut.com।
2: इंडिया सजावट एंड पूजा हट।
0: जय श्री राम।
3: वेलकम टू मद्रास रेस्टोरेंट। स्वाद स्वाग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय कीजिए ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट सिर्फ 20-26। 20 प्लस साउथ इंडियन डेलिकेसीज, गर्मा गर्म और अनलिमिटेड पराठा, इडली, वड़ा, स्पाइसी अरोमेटिक करीज एंड मोर। अनलिमिटेड सर्विंग्स, अमेजिंग वैरायटी और प्राइस जो पॉकेट को भी खुश करे। डोंट फॉरगेट टू ट्राई देयर सिग्नेचर डोसास, बिरयानी एंड लॉट मोर। मद्रास रेस्टोरेंट, 905-789-6600। दैट्स 905-789-6600।
0: इस तेज रफ्तार जिंदगी में लीजिए एक लवली ब्रेक। चाहे बैक होम जाना हो या करनी हो दुनिया भर की सैर, अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बनाइए लवली विद लवली फेयर्स। वेकेशन पैकेजेस, टूर्स या फ्लाइट्स, लवली ट्रैवल्स इज ऑलवेज रेडी टू मेक योर ट्रिप मेमोरेबल एंड अफोर्डेबल। कहीं और से टिकट्स बुक करने से पहले एक बार लवली फेयर्स जरूर चेक करें। लवली ट्रैवल्स, 80 मैरिटाइम बुलेवार्ड, यूनिट नंबर 54 इन ब्रैम्पटन। कॉल 905-458-5300।
4: इस सीजन शानदार कैनेडियन रोड ट्रिप विच ड्राइवर सते अन्ना दी टोयोटा दा होवेगा दी ग्रेट वाइड नॉर्थ दे अनजान रस्तियां नाल आमना सामना। इस च साथ देन के चिप्स, चाह वाली ब्रेक्स अते अतरंगी प्लेलिस्ट्स। पर इस यादगार सफर तो पहला एक गल याद रहे, एह टाइम है तुहाडे स्थानक टोयोटा डीलर ते एक्सपर्ट सर्विस दा। ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स अते टायर बदलों लई तुहाडा एक इजी स्टॉप। अज ही अपॉइंटमेंट बुक करो क्योंकि यह सफर होने वाला है तूफानी।
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस इम्प्रेस इम्प्रेस।
0: शॉन एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शॉन मीडिया।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय विन लाइफटाइम। क्या आप भी चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम? तो विन लाइफटाइम लेकर आए हैं ट्रेडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस 90 मिनट रोजाना। फ्री सेमिनार एवरी सैटरडे एट 1 PM इन मिसिसागा। लिमिटेड सीट्स बट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। कॉल 905-206-1008 और विजिट winlifetime.com। मद्रास रेस्टोरेंट, स्वाद स्वैग और साउथ का तड़का। फ्राइडे, सैटरडे और संडे एंजॉय करें ऑथेंटिक साउथ इंडियन अनलिमिटेड थाली स्टार्टिंग एट ओनली 20-26। एंड KCDL कंस्ट्रक्शन ग्रुप, लीगल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन से लेकर फुल होम रेनोवेशन, सेपरेट साइड एंट्रेंस, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एस्फाल्ट पेविंग, रीसर्फेसिंग कंक्रीट, इंटरलॉकिंग एंड मच मोर। कॉल 647-766-4335, 647-766-4335।
6: मेरी आंखें ये कहा करती हैं मुझसे अक्सर, आप देखी हुई चीज़ों को बहुत देखते हैं। राजेश रेड्डी साहब के इन अशआर के साथ आगाज कर रहे हैं आज के इस खास सेगमेंट का। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ईरान जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में गुजरात का एक और मालवाहक जहाज डूब गया। हाजी अली नाम का ये जहाज 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था, तभी उससे कोई ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार टकरा गया। हादसे के बाद जहाज में आग लग गई। हालांकि ओमान कोस्ट गार्ड के सभी 14 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के द्वारका निवासी और जहाज मालिक सुल्तान अहमद अंसार ने बताया कि MSV हाजी अली जहाज बेरबेरा पोर्ट से शारजा जा रहा था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत किया। इस दौरान ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के बीच दो घंटे बैठक चली। बैठक की शुरुआत में जिनपिंग ने कहा, पूरी दुनिया इस बैठक पर नजर लगाए हुए है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अमेरिका चीन रिश्ते वैश्विक स्थिरता के लिए बेहद अहम है। जिनपिंग ने कहा, दोनों देशों को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को वियतनाम में उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों ने ईरानी मूल के एक्ट्रेस के कारण थप्पड़ मारा था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ये दावा फ्रांसीसी पत्रकार फ्लोरियन तारदीफ ने अपनी नई किताब एंड परफेक्ट कपल में किया है। ये किताब हाल ही में प्रकाशित हुई। किताब में कहा गया कि ये विवाद ईरानी मूल की अभिनेत्री मौल शिफ्ते फराहानी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच कथित चैट की वजह से हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रों अभिनेत्री को मैसेज भेजते थे। तो अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार होंगी भारत से जुड़ी हुई खबरें।
0: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहां से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: Big dog, thank you very much. Good afternoon to you and your listeners.
1: Good afternoon to you as well. Thank you for joining us today, Rafi ji. And बहुत सारे लोग जो आपके seminars में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे. बड़े happy होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी positive बातें करते हैं Win Lifetime के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने already trading करी हुई है और उन्हें अच्छा experience नहीं रहा trading करने से. तो मैं चाहूँगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी. तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में.
2: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते. तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता. आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया. नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की. हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिसेज हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग इसलिए एक बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे. बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है. तो इट्स नॉट ए वन मैन शो. तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें, ऐसे नहीं होता. नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते.
1: वाओ, क्या बात है. तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस एट विन लाइफ?
2: एब्सोल्युटली, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है. वो कोई रिस्क नहीं है, सारे का सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो. तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे.
1: दैट्स अमेजिंग. तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताए हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए.
2: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपने पिकनिक चेयर्स रखें साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी. तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है. लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से. You're never too, young to start, never too early to start. कभी भी आएं, आपको ऐसी opportunity हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी.
1: Wonderful. तो दोस्तों 10 नंबर के फासले पर है ये opportunity. 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com. Right away call करें और सैटरडे के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें. थैंक यू राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.
2: Thank you. Take care.
3: Sean Express News Bulletin brought to you by Sean Media.
4: वेलकम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. और अब जान लेते हैं भारत से जुड़ी हुई खबरें. चुनाव आयोग ने हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा की है. ये SIR का तीसरा फेज होगा. पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी. इस दौरान 36 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का वेरिफिकेशन होगा. जिन राज्यों में SIR होगा उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव है. अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे. SIR के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं. SIR के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है. केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में TVK ने जीत हासिल की है. भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने पिछले 22 साल में 54 विदेश यात्राएं की, सितंबर 2025 में सीक्रेट यात्राएं भी की। उन्होंने दावा किया कि हर विदेश दौरे में राहुल के साथ 3-4 लोग भी जाते थे। इन यात्राओं पर कुल खर्च करीब 60 करोड़ बैठता है। राहुल के हलफनामे के मुताबिक पिछले 10 साल में उनकी घोषित आय 11 करोड़ रही, तो इन यात्राओं का खर्च किसने उठाया, किसने फंडिंग की, राहुल फंडिंग का सोर्स बताएं। इधर कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 साल में 76 देशों के 96 दौरों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा, जनता की गाड़ी कमाई मौज मस्ती पर उड़ाई। पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर 13 राज्यों में दिख रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को एमएलसी शपथ ग्रहण समारोह के लिए बाइक से विधान भवन पहुंचे। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेट्रोल डीजल की बचत के लिए नए आदेश जारी किए। अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगे। 50% सरकारी बैठकें ऑनलाइन होंगी और कोई भी मंत्री 1 साल तक विदेश दौरे पर नहीं जाएगा। त्रिपुरा में ग्रुप सी और डी के सिर्फ 50% सरकारी कर्मचारी ही रोज ऑफिस जाएंगे, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसी तरह पंजाब में गवर्नर ऑफिस में हर बुधवार को अधिकारी 4 पहिया वाहन से नहीं आएंगे। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी हफ्ते में 1 दिन बिना गाड़ी के चलेंगे। भारत में इन दिनों 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अयोध्या समेत 30 जिलों में आंधी तूफान के कारण 104 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो 21 मौतें प्रयागराज और 17 मौतें भदोही में हुई, और काफी तेज आंधियां भी चली। बरेली में एक शख्स टीन शेड समेत हवा में उड़ गया। राज्य के बांदा शहर में तापमान 45 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। उधर राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव का असर है। यहां जैसलमेर जो है वो देश का सबसे गर्म शहर दर्ज हुआ। पाकिस्तानी फिल्म मेरा लियारी सिनेमाघरों में हालांकि 8 मई को रिलीज हो चुकी। ये फिल्म पाकिस्तान के लियारी इलाके में पर आधारित है। गौरतलब है कि लियारी का जिक्र भारतीय फिल्म धुरंधर में भी हुआ, जो सुपरहिट साबित हुई। हालांकि मेरा लियारी को बॉक्स ऑफिस पर कमजोर रिस्पॉन्स मिला। फेसबुक पेज ऑल पाकिस्तान शोबिज स्टार्स ने दावा किया कि फिल्म मेरा लियारी को खराब शुरुआत के बाद फैसलाबाद के ताजमहल सिनेमा से हटा लिया गया। फिल्म पहले दिन सिर्फ 22 टिकट ही बेच पाई। भारतीय पंजाबी सिंगर तलविंदर हाल ही में टोरंटो में पाकिस्तानी सिंगर हसन रहीम के लाइव कंसर्ट में शामिल हुए और उनके साथ मंच शेयर किया। दरअसल तलविंदर ने इंस्टाग्राम पर कंसर्ट की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए। उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, टोरंटो में हसन रहीम के साथ विशेज पूरी हुई। कांस फिल्म फेस्टिवल में आलिया भट्ट लॉरियल पेरिस गाला डिनर के दौरान नजर आईं, जहां उन्होंने फ्लोरल ब्रोकेट आउटफिट पहना। वहीं गुरुवार को सिंगर इन्फ्लुएंसर आरती खेत्रपाल का सनातन धर्म थीम वाला लुक सामने आया, जिसमें वो कांस के रेड कार्पेट पर हाथ में भगवद गीता और हरे राम लिखे पर्स के साथ नजर आईं। तो शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी में न्यूज जंक्शन का ये स्टॉपेज यहीं तक। शुक्रिया।
3: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।
5: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
3: 970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
5: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
7: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
8: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
7: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
8: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन.
7: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल.
3: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
1: वेलकम बैक दोस्तों, शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMR FM 101.3. इट्स 3:15 राइट नाउ. और चलते हैं दोस्तों एक बार फिर से मिड्डा फर्नीचर की सैर करने, जहां से पवन मिड्डा जी हमारे साथ जुड़ेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ. पवन जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक.
9: गुड आफ्टरनून जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मिड्डा फर्नीचर आपकी सेवा में हाजिर है जी. 4 लोकेशन और 5वीं की सॉफ्ट ओपनिंग, क्योंकि अभी हम बहुत क्लोज हैं इस वीक सेटअप करने में. नया नया सामान लंदन में भी सेटअप, जो अगर आपके कोई बहन भाई, यार दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी जानने वाला लंदन की साइड में रहते हैं, तो ग्रैंड ओपनिंग की जो डील्स होंगी वो ऑल ओवर 5 लोकेशंस पे होंगी. लेकिन उससे पहले विक्टोरिया डे आ रहा है, तो हर वीकेंड आपके लिए कुछ ना कुछ डील ऐसी लाते हैं कि आप भी एक बार आपके भी मुस्कुराहट आ जाए और हमें आपके दर्शन हो जाए, आपका प्यार मिल जाए, आपका वैल्यूएबल बिजनेस मिल जाए, यही कोशिश रहती है. तो ये रिश्ता तो बना हुआ है शालिनी जी, रिश्ता तो बना हुआ है, तो रिश्ते को संभाल के रखना सबसे बड़ी बात अहमियत है. और रिश्ते को जिनसे नहीं बन पाया उनसे बनाना, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम रिश्तों की डोर जो है उसको लंबा भी करना चाह रहे हैं, चेन जो है उसे स्ट्रांग भी करना चाह रहे हैं और लंबी भी करना चाह रहे हैं. और आपका प्यार बखूबी मिल रहा है तभी ये हिम्मत आती है मॉडल नंबर बताना, डीलें लाना. पहले 10% से प्राइस बीट करते थे, और देखो माफी भी मांगते हैं, क्योंकि जिन बहन भाइयों का स्टोर होगा, मैं भी कभी ऐसे ही एक छोटे से स्टोर से शुरू कर रहा था, लेकिन हमें जो वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है आपकी वजह से मिलता है, इसलिए आपको वापस करते हैं. गिमिक से बहुत बहुत दूर है और कुछ ना कुछ अलग लाते हैं. मैट्रेस की बात अपने करी, पिछले लिंक में मैंने करी कि आपको अगर मैट्रेस चाहिए तो फिर 120 दिन आप सो के देखें. अगर ऐसा नहीं है कि आपको वो मतलब बदलनी ही बदलनी है, अगर हाँ, अगर आपको किसी कारणवश उसका कंफर्ट सही नहीं लग रहा, गारंटी तो 10 साल की होती है, मैट्रेस में गारंटी 10 साल की होती है, लेकिन वारंटी तो रहेगी. लेकिन अगर आपको सिर्फ गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको 4 महीने के अंदर वो लगता है, क्योंकि 1-2 दिन में नहीं आप कंफर्ट पता कर सकते, तो या 15-20 मिनट में स्टोर पे भी आप हमारे पास होती हैं लेट के, कई बार पता लग जाता है आपको, जैसे जो अगर नहीं लगता तो आपको फील फ्री करा रहे हैं कि कुछ कुछ स्ट्रेस फ्री है आपका. और हमारे पास हाई एंड मैट्रेस जो है वो भी लेके आए हम, 300 पे उसके 1 साल का देंगे. 1 साल की वारंटी है कि आप 1 साल में स्लीप गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको ठीक नहीं लगे आके आप चेंज कर लें. तो मिड्डा फर्नीचर सेक्शनल लेके आया है 1499 का पावर रिक्लाइनर की मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने कनेडियन मेड सोफा लव सीट बोला था 899 में. मैं कोशिश करता हूँ कि अपने 1-2 मिनट में आपको प्राइस पॉइंट का भी दे दूं. हम वो बिल्कुल वो प्राइस नहीं एडवर्टीज करते, वो 299 होते हैं हमारे पास, उसी की क्वालिटी भी वैसी ही होती है. पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बहन भाई हैं, कोई बड़ा भाई ये नहीं चाहेगा कि मेरे छोटे भाई के घर, मेरी छोटी बहन के घर या मेरे किसी बुजुर्गों के घर जो वो फर्नीचर जाए कि जो चले ही ना, मतलब अपने किसी बहन भाई का बजट हो सकता है, किसी बहन भाई की टेम्परेरी जरूरत हो सकती है, कोई मेरा बच्चा स्टूडेंट अभी आया है तो वो उसके लिए वो $35 वाली मैट्रेस भी कई बार लगता है कि अभी देयर इज नो इनकम कमिंग एंड स्पेंडिंग तो वो बच्चा सेक्रीफाइस करके भी सो रहा है. तो वो हम 35 वाली भी 25 मतलब $5 वो भी कम कर लेते होंगे. लेकिन अगर मैं आऊं, मेरा मुझे तो मन करेगा ना कि बच्चा वो फोम वाली मैट्रेस से तो चुभेगी ना, मतलब अपने
1: जी,
9: वो मैं बोलूं या ना बोलूं वो तो फोम वाली 10 दिनों के बाद ऐसी ही लगेगी. लेकिन हाँ, आपको एशले सीरा स्लीप की मैट्रेस अगर ट्विन साइज की चाहिए तो 199 की भी होती है, मतलब 8 इंच फोम होती है, ब्रांड नेम भी होता है, 5 साल की गारंटी भी होती है. तो मिडा फर्नीचर उन चीजों के लिए जाना जाता है जो बड़े बड़े स्टोर जो आपको देते हैं महंगी चीज देते हैं. 299 वाली हम 199 में दे देते हैं. तो उन चीजों के लिए हमें बाद विश्वास, मैं कहता हूँ विश्वास बाद में करें, पहले आप हमें अजमाएं, फिर हम अपना अपनाएंगे और फिर एज ए कस्टमर जब आपका आपका दिल क्या उठेगा कि वाकई ही ये जो बोला जा रहा है रेडियो पे या जो हमें दिखाया जा रहा है वो सही है, तो फिर तो हमारा हक बनता है कि आपका वैल्यूएबल बिजनेस जो आप देते आ रहे हैं इतने टाइम से और आगे ही यूं देते रहेंगे, ये चेन और लंबा करेंगे. तो आए मिड्डा फर्नीचर पे स्वागत है आपका. फिर डील एक दो चीजों की क्यों, जिसकी जो बन पाएगी. मैंने तो वेबसाइट पे नोट करा दिया कि यू डिजर्व बेटर प्राइस इन स्टोर इन शोरूम के अंदर. तो आप बिल्कुल, आपको मैसेज वो भी प्रोफेशनली भी मैसेज दे दिया, रिटर्न में दे दिया कि आपको बेटर प्राइस मिलेगी मिड्डा फर्नीचर पे आके. तो आए मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810 416-901-2810. थैंक यू वेरी मच जी.
1: थैंक यू सो मच पवन जी. हैव अ ग्रेट वीक डे अहेड. और कल फिर आपसे जुड़ेंगे. पता नहीं मुझे आज फ्राइडे क्यों लग रहा है, लेकिन कल फ्राइडे को आई नो आपकी डील्स होंगी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पेशल. सो लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन टुमारो. ऑल द बेस्ट पवन जी. थैंक यू. जी. और वेल इट्स 3:20 राइट नाउ और आप लोगों का फिर से हम वेलकम करते हैं. और पता है मुझे आज फ्राइडे क्यों लग रहा है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा मजेदार है. कुछ लोग छुट्टी लेने के लिए सीधा बोल देते हैं आज मूड नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स भी शर्मा जाएं, शॉक हो जाएं. कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कभी हमारी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो जाती है हर एग्जाम वाले दिन, कभी कभी कैमरा हम ऑफ कर देते हैं ऑनलाइन क्लास में और कहते हैं नेटवर्क इशू चल रहा है, जबकि इंसान आराम से सो रहा होता है. ना पढ़ने का मन था, ना काम पे जाने का मूड था. ना पढ़ने का मन था, ना काम पर जाने का मूड, फिर दिमाग ने इंस्टेंटली बना दिया एक्सक्यूज का फूड. कभी बुखार, कभी हेडेक का सहारा लिया, कभी बुखार कभी हेडेक का सहारा लिया और फिर छुट्टी लेकर पूरे दिन नेटफ्लिक्स का नजारा लिया. तो क्या आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फनीएस्ट यानी फनीएस्ट एक्सक्यूज कौन सा बनाया है, अपने स्कूल के को मिस करने का या अपने वर्क को मिस करने का, कौन सा बहाना आपने बनाया, हमारे साथ शेयर करें. आज हमारे पास एक भी बहाना नहीं आया, इसका मतलब आप सब लोग कहते हैं कि हम जो हैं बहुत ही राजा बेटा रानी बेटी हैं, हमने कभी नहीं बनाया. तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकती, बिकॉज आई नो हम सभी ने बहाने बनाए अपनी जिंदगी में, जब बच्चे थे तभी भी और जब बड़े हो गए हैं तभी भी. हाँ, ये बात अलग है कि आप ओपनली उस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, तो इसीलिए मैंने आपको चैलेंज किया है. लेट्स हियर इट फ्रॉम यू. ओके, सो वी हैव वन कॉलर 416-593-0055. लेट्स हियर इट. हु इज दिस? गुड आफ्टरनून.
10: वेरी गुड आफ्टरनून मैडम, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं?
10: अभिषेक बोल रहा हूँ मैडम.
1: जी अभिषेक, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक.
10: बहाना बता क्या फसाद हो गया आज, है ना? बचपन की याद ताजा करेंगे आज आप.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या बनाया बहाना बताइए.
10: नहीं, बहाने तो बहुत बनाए, क्योंकि क्रिकेट वाज माय फर्स्ट लव, क्रिकेट खेलते थे. सो बचपन में बोल दिया, मैच था लेकिन बोल दिया कि बीमार हूँ, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रही है मम्मी, स्कूल नहीं जाऊंगा मैं. सो एक्टिंग कुछ ज्यादा हो गई, फिर फंस गए हम, एक्टिंग ज्यादा हो गई और मम्मी बोलते कि सीरियस है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा.
1: ओह माय गॉड, और इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा.
10: पिछले दिन ऐसा हुआ था कि मैंने कच्चे अमरूद खाए थे, कच्चे तो रिजल्ट सही थे, लेकिन मैंने डॉक्टर ने पूछा कि कल इसने क्या खाया, मम्मी ने बता दिया कि ये खाया, मैंने कहा मैंने गावा भी खाए थे, तो बोलते हैं अच्छा अच्छा इसने कच्चे खाए होंगे इस वजह से इसके पेट में दर्द है, उसने मेडिसिन दे दी. फिर बोलते हैं कि थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लूज मोशन लगेंगे लेकिन सब ठीक हो जाएगा, सो इसको बोलना बेड रेस्ट करनी है. तो अपना मैच था, सो मैच भी खेलने से गया और उसने बेड रेस्ट करवा दी, सो फंस गया, अब क्या करें. सो नहीं, जैसे तैसे करके आने बनाए, मैं घर से निकल गया, चला गया खेलने के लिए. घर वाले बोलते वापिस आओ फिर बताते हैं, ठीक है. वापिस तो चला गया और हुआ क्या कि उस दिन तो मैं ठीक रहा, लेकिन नेक्स्ट डे सच में बीमार हुआ. तो घर वाले बोलते नहीं, अब तेरा बहाना नहीं चलेगा, अब तो
1: माय गॉड
10: पड़ेगा.
1: Oh God.
10: तो सच में हुआ लेकिन ये चीज हुई थी.
1: That's very interesting.
10: कभी कभी हमें बहाने ले डूबते हैं. हाँ जी हाँ जी
1: जी जी बिल्कुल सही बात है. और ये ऐसा हमारी जिंदगी में अभिषेक बहुत बार होता है कि वो स्टोरी सुनी थी ना आपने शेर आया वाले कि पहले तो हमने कह दिया है ना, वही होता है ना. तो ऐसी जिंदगी में होता रहता है. बट दैट इज व्हाई आई वांटेड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंसेस आपकी जिंदगी में. बट आई ट्रूली लव्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे.
10: थैंक यू मैडम. थैंक यू. ख्याल रखें अपना. थैंक यू.
1: ऑल द बेस्ट. यू टू. जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे 2631 लास्ट फोर डिजिट्स. गो हैड प्लीज. गुड आफ्टरनून.
11: हेलो जी.
1: हाँ जी कौन बात कर रहे हैं?
11: मैं आमिर.
1: आमिर जी. जी आमिर जी बताइए.
11: जो स्टोरी सुनाई है थोड़ी इन्होंने सेंसर कर ली. डॉक्टर ने जब इनको दवाई दी थी कहा था इसको थोड़ा घबराना नहीं, डायरिया भी होगा. जब ये क्रिकेट खेलने आए तो बैटिंग के दौरान हर दो बॉल के बाद ये वॉशरूम जा रहे थे.
1: ऐसी चीजें. जी और ये कभी कभी बहाने हमारे ना बड़े एक्सट्रीम केसेस पर पहुंच जाते हैं और हमें बट लेकिन आप अपना बहाना बताएं आमिर जी. आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा काम.
11: मैडा फर्नीचर का जब एड आ रहा था ना तो मुझे वो खेल याद आ गया. वाबिस्ता समझती है किसे कहते हैं वाबिस्ता?
1: जी जी
11: जुड़े रहने को.
1: जी जी जी बिल्कुल.
11: जिंदगी वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, नींद तो कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ.
1: ओहो क्या बात है. हाउ नाइस.
11: अच्छा मेरा बहाना ये है कि मैं ग्रेड 8 में था.
1: अच्छा.
11: तो उस दिन हमने शादी पर जाना था स्कूल में. मैंने के बाद जो है ना छुट्टी कर दी घर. अच्छा? आ गया मैं बस्ता लेके. अब जब घर आ गया फिर आपने शादी के लिए तैयार होकर जब जा रहे थे तो रास्ते में कौन से मकान में मेरा क्लास फेलो था वो मुझे. अच्छा? मिल गया. कहता है तुम्हें वो सर जोग्राफिया के सर पूछ रहे थे तुम इंटरव्यू के बाद कहाँ थे. तो अब्बा कह रहे अब्बा मेरे साथ में थे कहते कि तुम इंटरव्यू के बाद क्या घर. कहता अंकल ये स्कूल नहीं आया था इंटरव्यू के बाद. अब्बा वहां से वापस लेके आए घर. वापिस लेके आए मेरी खूब पिटाई की.
1: आपकी शामत आई. हाँ
11: पिटाई करने के बाद वो उन्होंने ये कहा ले गए शादी. दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गया स्कूल में जनाब. हाँ, मेरा जो फिजिकल टीचर वो जो था हमारा पीटी है पीडीआई.
1: जी जी
11: जी हाथों पे लगाए बेटे टीचर लगाई और जो अभी तीन टीचर मेरे हाथ भी बैठ लगाई.
1: ओह गॉड.
11: उसके नेक्स्ट डे हमारा वो मैच था सॉकर का.
1: अच्छा ओके.
11: अच्छा वो सॉकर के मैच में मैंने तीनों टीचरों का बदला ऐसे लिया मैंने 11 गोल खाए.
1: अच्छा
11: 11 गोल खाए. नेक्स्ट डे प्रिंसिपल ने बुलाया कि अमीर तुमने इतने इजी गोल जो तो रोकने तो तुमने रोके. मैंने कहा तीन टीचरों ने मेरे हाथ पे इतने बेत मारे मुझसे गेंद नहीं रुकी जा रही थी.
1: टिट फॉर टैट है ना.
11: आज ही मेरे दोस्त जब मुझे मिलते हैं वाले वो कहते हैं मेरे वो बिल्ले वाली बात छेड़ते हैं. कोई जिक्र नहीं.
1: क्या बात है अमित जी. बहुत इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. बहुत ही मजा आया आपके किस्से सुनकर. और ऐसे ही हमारे बाकी लिसनर्स भी अगर हमें ज्वाइन करना चाहें अपने बहाने लेकर, कौन सा एक बहाना है जो आपको अभी तक याद है आपने अपने स्कूल में मारा हो या अपनी वर्क प्लेस में मारा हो और आप पकड़े गए रंगे हाथों की नहीं ये भी बताते जाइए. लेट्स पिगी बैक बोथ द थिंग्स टुगेदर. 4165930055. अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स और बड़े रीजनेबल प्राइस में तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट इंस्टॉलर टीम खुद ही इंस्टॉल करती है. कोई मिडलमैन नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. सीधे फैक्ट्री से आपके घर तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, सिक्योरिटी, एनर्जी एफिशिएंसी और प्राइस ऐसी जो आपकी पॉकेट को सूट करती है. इसके अलावा अगर आप अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो एक ग्रोइंग टीम का हिस्सा बन सकते हैं. फ्रेंचाइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. कॉल कीजिएगा 4167323600 यश विंडोज एंड डोर्स. दोस्तों अब चलते हैं हम आपको लेकर एक ऐसी जगह जहां पर डील्स की कमी नहीं है, ऑफर्स की कमी नहीं है, हैप्पीनेस की कमी नहीं है. और जब आप वहां पर जाकर डबल डिप ऑफर लेते हैं तो मजा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाता है. राजन जी हमारे साथ जुड़ेंगे स्पेक्स एक्सप्रेस से इस वीकेंड के स्पेशल्स लेकर. राजन जी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम.
12: गुड आफ्टरनून शालिनी जी, थैंक यू सो मच. और मस्ती की रेलगाड़ी के सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून. शालिनी जी, हमेशा हम डील्स देते हैं, आज हम सोचते हैं कि लॉन्ग वीकेंड है तो थोड़े से गिफ्ट भी दिए जाएं अपने लिसनर्स को.
1: Oh wow, great. Let's hear it.
12: Yes, so deals mein announce karunga, to aaj isi mein se gift niklenge. Main deals announce karke ek question puchunga, jo bhi hamare listeners call karke aapko sahi answer denge, to pehle teen listeners ko hum bahut badhiya Skechers ke polarized gift denge without any purchase.

0: बात है।
1: ये
0: तो
1: उसके बाद
0: दोस्तों मैं बता दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा ये बातचीत। अब जरा अपने कान आंख नाक खोल लीजिए और जरा ध्यान से स्मेल भी कीजिए, डील्स को देखिए भी, समझिए भी, सुनिए भी, क्योंकि इन्हीं डील्स में से छुपा है कोई ना कोई सवाल का जवाब, जो राजन जी बहुत जल्दी पूछेंगे। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस टॉपिक का आंसर आप दीजिएगा। रेडी हो जाइए अपने फोन्स के साथ, 416-593-0055। जी राजन जी।
1: बिल्कुल जी। सो लॉन्ग वीकेंड है शान जी, बहुत सारे हमारे लिसनर्स होते हैं जिनको होता है कि बढ़िया ब्रांडेड फ्रेम्स हो या फिर ब्रांडेड सनग्लासेस उनके पास हो, तो गुची के, प्राडा के, डॉल्ची गबाना के, टॉम फोर्ड के, टिफनी के सभी ब्रांडेड सनग्लासेस हम अपने लिसनर्स को फ्लैट 30% ऑफ करके दे रहे हैं। और मैं रिपीट कर दूं, ये फ्लैट है, ये अप टू नहीं है। तो जब आप स्टोर के अंदर जाओगे, जो भी इन ब्रांडेड फ्रेम्स और सनग्लासेस के ऊपर प्राइस टैग लगाया है, आपको 30% ऑफ कर लेना है। और ये 30% ऑफ करके आपको ये ब्रांडेड फ्रेम्स एंड सनग्लासेस मिलेंगे। इससे भी बढ़िया रीला जी, अगर आपको रेवन के फ्रेम्स चाहिए, अरमानी के, माइकल कोर्स के, केट स्पेड के या फिर कोच के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम्स आपको आज फ्लैट 50% ऑफ मिलेंगे। और सबसे भी बढ़िया डील, कैल्विन क्लाइन के फ्रेम्स, टॉमी हिलफिगर के फ्रेम, फैंटी के फ्रेम एंड वेलेंटिनो के फ्रेम फ्लैट 75% ऑफ दिए जा रहे हैं जी। सो ये अमेजिंग अमेजिंग डील्स है। और जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है, डॉक्टर आज हमारे पास थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे तीनों दिन है जी। थर्सडे इवनिंग को हमारी सैंडलवुड एंड क्रेडिट व्यू वाली लोकेशन पे है, फ्राइडे को हमारी रेजोल्यूशन वाली लोकेशन पे है, और सैटरडे मॉर्निंग को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक भी रेजोल्यूशन वाली लोकेशन पे है। सो जिन्होंने भी आई एग्जाम बुक करवाना है अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर है जी 905-460-8888, 905-460-8888। और शैलेंद्र जी, एक हमारा होता है वैल्यू पैकेज। ये वैल्यू पैकेज इतना जबरदस्त है कि इसको लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो इसमें हम एक तो अपने लिसनर्स को सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम दे रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, ये रेगुलर नहीं है, ब्रांडेड फ्रेम है। इसमें लिवाइज के, रेगुलर के, वैन ह्यूसन के, एडी बावर के, ये सभी के सभी ब्रांडेड फ्रेम $300 की कीमत के हैं जी। सो एक तो आपको ये फ्रेम दिया जा रहा है, दूसरा इसमें सिंगल विजन लेंसेज जो कि $100 के वो भी दिए जा रहे हैं। सो इसकी रेगुलर प्राइस है जी वैल्यू पैकेज की $400, जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं।
0: ओह माय गॉड,
1: इट्स अ बिग सेविंग। और ऐसे जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए, उनके लिए एसएलआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज है जी, $300 की कीमत के ये लेंसेज है और 300 का फ्रेम। सो ये प्रोग्रेसिव ग्लासेस कंप्लीट पेयर आपका 600 का होता है, जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $258 में दे रहे हैं जी। सो 600 डील है सिर्फ 258 में, ह्यूज सेविंग है। सो जितने भी लिसनर्स आकर ये 600 की या 258 की डील ले रहे हैं जी, सभी लिसनर्स को आज हम इसके साथ स्केचर्स के पोलराइज सनग्लासेस एज अ गिफ्ट बिल्कुल फ्री दे रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: तो ये अमेजिंग अमेजिंग डील है जी। आप स्टोर में कोई भी परचेज कर रहे हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो आपको स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस साथ में बिल्कुल फ्री मिलेंगे। जो भी हमारे लिसनर्स इस वीक नहीं आ सकते, वो कहेंगे कि हम नेक्स्ट वीक अवेलेबल है। दोस्तों आपने सिर्फ कॉल करके अपना नाम लिखवाना है 905-460-8888 के ऊपर, और यही डील हम आपको नेक्स्ट वीक भी देंगे अगर आपने नाम लिखवाया हुआ है। सो ये डील लेने के लिए पहुंचने आपने स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कैले या कैनेडी एंड स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा। और नंबर एक बार फिर से 905-460-8888। और अब क्वेश्चन हमारा, तो हमारी डील में हमने जो बोला जी प्रोग्रेसिव ग्लासेस का, दोस्तों आपने बताना है कि प्रोग्रेसिव ग्लासेस की डील की रेगुलर प्राइस क्या है और आफ्टर डिस्काउंट आपको कितने के दिए जा रहे हैं। सो पहले जो भी 3 कॉलर शालिनी जी आपको कॉल कर रहे हैं ऑन एयर, उनको हम स्केचेस के पोलराइज सन ग्लासेस गिफ्ट देंगे विदाउट एनी परचेज।
0: अच्छा, और अगर सवाल का जवाब थोड़ा गलत हुआ, इधर उधर हो गया, तो भी मिलेंगे क्या उनको?
1: थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, ज्यादा नहीं।
0: अच्छा, एक बार फिर से बताइएगा कि प्रोग्रेसिव ग्लासेस की क्या
1: रेगुलर प्राइस क्या है और हम डील के ऊपर कितने में दे रहे हैं। ये वैल्यू पैकेज वाली प्रोग्रेसिव ग्लासेस।
0: अच्छा, वैल्यू पैकेज, ओके, वो तो मुझे भी याद है, इसका जवाब मुझे याद है, बिकॉज आई सेड वाओ, आई रिमेम्बर दैट। अच्छा, दैट्स ग्रेट।

0: तो दोस्तों, जो वैल्यू पैकेज बताया है आज राजन जी ने प्रोग्रेसिव ग्लासेस के साथ, तो इसमें ये बताना है आपको कि रेगुलर प्राइस क्या है और डिस्काउंटेड प्राइस क्या है. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू आंसर फर्स्ट थ्री कॉलर्स हु आर गोइंग टू कॉल नाउ. दे विल गेट स्केचर्स के जो वो हैं पोलरॉइड सन ग्लासेस, राइट? दे विल गेट इट फ्री, वन पेयर. ठीक है, तो लाइन्स आर ओपन नाउ 416-593-0055. और बिल्कुल राजन जी विनर्स के नाम आप तक पहुंचाएंगे बहुत जल्दी. और अगर राइट, और आपको डेफिनेटली हम अपडेट करते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राजन जी, आइए, यू बी विद अस, लेट्स हियर इट फ्रॉम द कॉलर. जी, नेक्स्ट कॉलर ऑन एयर, गो अहेड प्लीज. जी, आप ऑन एयर हैं, बताइए. आपकी हम तक आवाज आ रही है, लेकिन शायद आपको हमारी आवाज नहीं आ रही इस वक्त. तो डेफिनेटली हम आपसे बात करते हैं राजन जी, आपको डेफिनेटली हम अपडेट करते हैं. फर्स्ट थ्री जो लोग कॉल करेंगे हमें इन स्टूडियो, और इसका एक और कॉलर जुड़े हैं राजन जी, आई गेस आप दो मिनट इंतजार कीजिएगा, नेक्स्ट कॉलर से करते हैं बातचीत. राइट, ओके, लेट्स हियर इट. गुड आफ्टरनून
1: शालिनी जी, कैसी?
0: बिल्कुल ठीक जी. कौन बात कर रहे हैं?
1: जी आजम नाम है मेरा, और आंसर 600L258.
0: आजम जी, आजम जी, 600L258, क्या बात है. तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर द फर्स्ट विनर आजम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन.
1: थैंक यू.
0: आपका नंबर हमारे पास आ चुका है, और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेट्स हियर इट फ्रॉम हिम. जी गुड आफ्टरनून
2: संदीप.
0: गो अहेड संजीव.
2: हाँ संदीप, 600 and 258.
0: Okay, Sandeep ji, right answer. Thank you so much for joining us. Thanks a lot. Congratulations. And let's see the third caller. Hello?
3: Hello?
0: Haan ji, bataiye.
3: Haan ji, Srujal bol raha hu. Answer hai 600 or 258.
0: जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच. आप तीनों को मिलते हैं पोलराइड स्केचर्स के जो सनग्लासेस हैं बिल्कुल फ्री. और राजन जी, अगली बार हम कहेंगे ना, जब ये कॉन्टेस्ट करेंगे, तो पहला सही जवाब आने पर हम ये नहीं बताएंगे कि जवाब सही है, ताकि हमें पता चल जाए कि बाकी लोग
4: नहीं, नेक्स्ट टाइम हम तीन अलग अलग क्वेश्चन रख लेंगे.
0: ठीक है, डन बिल्कुल. तो दोस्तों, आप स्पेक्स एक्सप्रेस में कॉल कीजिएगा. आजम जी, संदीप जी, सुजल जी, आप तीनों विनर्स हैं आज के कॉन्टेस्ट के. 905-460-8888, 905-460-8888. राजन जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट.
4: थैंक यू सो मच,
0: टेक केयर. जी, और चलते हैं दोस्तों म्यूजिक की तरफ अब. और आज बर्थडे मना रही हैं बॉलीवुड की ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस जरीन खान, और ग्रैंड डेब्यू के साथ इन्होंने एंट्री की बॉलीवुड में. ऑडियंस का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लिया, और इनका सफर शुरू हुआ फिल्म वीर से, जहां वो नजर आई सलमान खान के ऑपोजिट. और इसी फिल्म से लिया गया बहुत प्यारा सा गाना है, आपकी नजर करते हैं सुरीली अखियों वाले, मस्ती की रेलगाड़ी पर.

0: जी दोस्तों, और बहुत प्यारा सा गीत जरीन खान का बर्थडे है, उनको डेडिकेट किया हमने। और अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं नौ जनरेशन्स के अनुभवी गुरुजी, जिनको मिरकल गुरुजी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी दवाइयों में इतनी शक्ति होती है कि क्रॉनिक से क्रॉनिक इलनेसेस जो हैं चुटकियों में दूर भाग जाती हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ ये पर्सनलाइज्ड हर्बल गाइडेंस देते हैं और बॉडी को अंदर से बैलेंस करते हैं। आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरुजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। 4374383399 है उनका नंबर। गुरुजी नमस्कार, वेलकम टू द शो।
1: नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसा है जी?
0: बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं गुरुजी?
1: हाँ, मैं बहुत अच्छा है, भगवान आशीर्वाद से आपके बात कर रहा है, हैप्पी है। हमारा शो सुन के बहुत लोग इलाज वो कि हमको फोन कर रहा है, आपको भी थैंक्स बोल रहा है, ये आपको भी शुक्र है, बहुत भगवान आशीर्वाद है।
0: थैंक यू सो मच गुरुजी, आप इतने डिवाइन हैं और इतने आराम से आप बात करते हैं। यू नो, 8-8, 10-10 घंटे आप पेशेंट्स के साथ रहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कितनी भारी भीड़ होती है, बट आपके चेहरे पर बिल्कुल आप यू आर वेरी कंपोज्ड, और यू नो इतनी बड़ी से बड़ी बीमारियों का हल आप निकाल देते हैं। तो हमारे जो लिसनर्स जिन्होंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्हें बताएं कि कौन कौन सी ऐसी इश्यूज़ हैं बॉडी में जो आप टैकल कर सकते हैं अपनी नेचुरल मेडिकेशंस के साथ।
1: यस यस, ये नेचुरल तरफ में जी, शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए इलाज है। उसमें स्पेशली हम लोगों को हमारा बॉडी में वाता पित्ता कबा बता के तीन रोग और तीन दोष होता है। ये तीन दोष में बनता है, पेट में एसिडिटी बन जाता है और गैस्ट्रिक बन जाता है, स्टमक ब्लोडिंग बन जाता है और फैटी लिवर बन जाता है, इससे अच्छा से डाइजेशन नहीं आता है। ये एसिडिटी ऊपर जाए तो हार्ट बर्निंग होता है, ये सिर को जाए तो वो वन साइड का सिर में दर्द, माइग्रेन तप पेन आ जाता है। ये एसिडिटी हमारा इंटेस्टाइन को अंदर जाए तो एसिड जाए तो को फाइल्स भी हो जाता है, फाइल्स के लिए भी हमारा पास इलाज है। ज्यादा यूरिक एसिड से जॉइंट में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है और नी में दर्द आता है, वो आर्थराइटिस बन जाता है, उसको लिए बहुत अच्छा इलाज हमारा पास है। वो इलाज वो स्किन के लिए भी बहुत लोग ठीक हो रहा है, स्किन के लिए बहुत लोग आके बहुत लोग ठीक हो रहा है, एक दो नहीं है, बहुत प्रॉब्लम के लिए हमारा पास इलाज होता है विदाउट विदाउट साइड इफेक्ट। ये सारा जड़ी बूटी से हम कर रहा हूँ।
0: क्या बात है। तो गुरुजी, जो छोटे बच्चे हैं, क्या कौन सी एज से उन्हें ये हम दवाइयाँ दे सकते हैं?
1: वो लिए तो 3 साल से हम कर सकते हैं, 3 साल।
0: अरे वाह,
1: बच्चे लोगों को 100 साल 90 साल ओल्ड एज बच्चे तक हम करता हूँ, इसमें कोई भी बीमार है। अभी अभी आजकल क्या होता है, ये एलर्जी से सीजनली एलर्जी होता है, स्नीजिंग आ रहा है, नोस ब्लॉक हो रहा है, रनिंग नोस हो रहा है, वैसा लोगों को बहुत लोग आ रहा है आजकल। थोड़ा ये एक फ्लावर होता है, फ्लावर से एलर्जी होता है, उसको लिए बहुत लोग आके ठीक भी हो रहा है।
0: क्या बात है गुरुजी। और मैं चाहूंगी कि अपनी लोकेशन और अपने टाइमिंग जरूर बता दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके।
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं वीकली 3 दिन कार्बो में रहता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और 4 दिन ब्राम्पटन में रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। हमारा हमारा कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कंसल्टेशन को पैसा वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और वो क्या प्रॉब्लम है देख के, हम नाड़ी देख के नस देख के उसको क्या प्रॉब्लम है हम बता करता है।
0: क्या बात है, क्या बात है। और दोस्तों, आपको अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बतानी होती, गुरुजी को खुद समझ आ जाता है, फेस रीडर भी हैं बहुत अच्छे और नाड़ी देखकर भी बहुत कुछ जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो दोस्तों, ये नंबर मैजिकल नंबर है, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। डोंट हैव टू लिव इन द पेन, टेक द एक्शन टूडे। 4374383399, 4374383399। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ओके और वेल दोस्तों आपका एक बार फिर से शालिनी स्वागत करती है CMRFM 101.3 पर शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेल गाड़ी के साथ. और साथ ही दोस्तों इट्स 3:46 राइट नाउ और जितनी भी कॉलर्स ने हमें कॉल किया आप लोगों का बेहद बेहद शुक्रिया. और हमने बात की थी कि कौन सा बहाना आपने जिंदगी में बनाया है, तो चलिए आज के विनर का नाम हम बता देते हैं. आज के विनर का नाम है अभिषेक. अभिषेक कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोबी की तरफ से $100 का गिफ्ट मिलता है एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन. और इसके अलावा तीन विनर्स हैं जो स्पेक्स एक्सप्रेस की तरफ से जिन्हें मिल रहे हैं पोलराइड सन ग्लासेस स्केचर्स के, आजम जी, संदीप जी एंड सुजल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन. तो वेल दोस्तों अब हम आगे बढ़ाते हैं शो को और आपको फिर से बता देते हैं, एक बार रिमाइंडर दे दें देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स के बारे में. आप दुनिया भर में कहीं भी जाना चाहते हैं देओल ट्रैवल में जरूर बात करें. और इनकी जो डील्स हैं, टोरंटो से दिल्ली या मुंबई में जा सकते हैं इस महीने वन वे 820 में, अमृतसर जा सकते हैं वन वे 960 में दो बैग्स के साथ, दिल्ली से टोरंटो मिड जून से अगस्त तक जा सकते हैं राउंड ट्रिप में 1490 में, और टोरंटो से अमृतसर या दिल्ली सितंबर से अक्टूबर 1540 में विद टू बैग्स. लिमिटेड टाइम ऑफर है. दो लोकेशन इटोबिको एंड ब्रैम्पटन 905-588-5100 एंड 905-588-4200. और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अब मॉर्गेज डिलीजेंस से रिनाउंड मॉर्गेज ब्रोकर मुकेश चौहान जी, और आपकी मदद करते हैं तमाम मॉर्गेज के हवाले से अलग अलग जो हैं दोस्तों ऑप्शंस ये आपको देते हैं. मॉर्गेज का छोटा काम हो या कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस हो, ही कैन डू इट वंडरफुली विद एन ईज. आइए इनके बारे में सुनते हैं, फिर करते हैं मुकेश जी के साथ एक छोटी सी मुलाकात. स्टे ट्यून्ड.
2: एक लाइफ है जिसे लव है,
3: ये कहते मुझसे सब है,
4: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है,
5: हाँ

0: One stop solution for all your mortgage needs. Bank declined. Mortgage for self employed. Quick closing in 48 hours. Or commercial loan. Just don't worry. 647-512-7000. Mortgage broker Mukesh Chauhan from Mortgage Diligent. FSRA number 10252. Conditions apply.
1: Don't worry. Mukesh Chauhan hai.
2: जी दोस्तों, मुकेश चौहान जी रीफाइनेंसिंग में मदद करते हैं, डेट कंसोलिडेशन में मदद करते हैं. 55 एंड अबव आप अगर हैं तो रिवर्स मॉर्गेज की मदद से आप अपने घर में रहकर इंडिपेंडेंस पा सकते हैं. होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए, लो इनकम लो क्रेडिट से परेशान है, डोंट परी, मुकेश जी आपकी मदद कर सकते हैं. पावर ऑफ सेल में फंसे हैं, मॉर्गेज पेमेंट्स मिस कर रहे हैं, एक्ट नाउ बिकॉज द हेल्प इज अवेलेबल. अगर आप बिजनेस ओनर हैं, वर्किंग कैपिटल चाहिए अप टू $1 million की, देन ही कैन डेफिनेटली हेल्प यू. 647-512-7000, 647-512-7000. मुकेश जी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम, हाउ आर यू?
3: ग्रेट ग्रेट, हैप्पी मिनी फ्राइडे शालिनी जी.
2: Happy mini Friday to you as well. Thank you for joining us.
3: Victor, thank you so much. And yes, Victoria Day ki bahut sari batayi hain, long weekend ki aur bahut masti wala fun wala weekend ho sab logo ka, kyunki weekend weather is quite good.
2: Yeah, I'm super excited Mukesh ji. Aur चार चांद लग जाएंगे अगर आपने एक अच्छी सी हैवी वेट होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट दिला दी हमारे लिसनर्स को, तो बस फिर तो बल्ले बल्ले. ऑलराइट, सो
3: बिल्कुल
2: पूछती हूँ पहला सवाल आपसे कि मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग या होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट होम ओनर के लिए, अगर हम बात करें होम रेनोवेशन के लिए, तो क्या प्रोडक्ट बेटर है, कौन सा इन दोनों में से?
3: डेफिनेटली शालिनी जी, आई एम श्योर के इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड माईसेल्फ, हम लोग हर होम ओनर जो है रेनोवेट तो करवाते ही घर, राइट? मिनिमम 1000 से लेके $50,000 वी स्पेंड अ गुड मनी एंड ड्यूरिंग द समर टाइम. अब कंफ्यूजन, आपने सवाल जो पूछा है, अक्सर क्लाइंट डिस्टर्ब रहता है कि ये रीफाइनेंस करवाएं या हम अलग से लाइन ऑफ क्रेडिट लें. देखिए, बहुत ही सिंपल आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूंगा, राइट? रिन्यूअल आपका अगर 3 से 6 महीने में आ रहा है, ठीक है, तो आपका रिन्यूअल आ रहा है, तो रीफाइनेंसिंग के थ्रू आप होम रेनोवेशन के पैसे निकाल सकते हैं. बहुत सिंपल है, राइट? क्योंकि आपके देखिए पेनल्टी नहीं पड़ेगी कोई आपको रिन्यूअल अगर 3 से 6 महीने में, राइट? और अगर पेनल्टी थोड़ा सा 9 महीने में भी है या विद इन अ ईयर, बैंक से पता कर सकते हैं, तो पेनल्टी $1,000-2,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, राइट? बहुत कम होती है, लास्ट मोमेंट में आपकी पेनल्टी डिक्रीज हो जाती है इज इन अ लोअर साइड. अब बात आती है कि आप रेनोवेट करवाना है, बेसमेंट रेनोवेट करवाना है, होम किचन अपग्रेड करवाना है, जो है आपको जो है एक्सटेंशन करवाना है, और तो ये सारे पॉसिबल है. रीफाइनेंसिंग में एक्विटी निकालें, अपने प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किए 2-3 साल से वो पे करें, सेकंड मॉर्गेज है, क्रेडिट कार्ड डेट्स हैं, वो सारी चीजें आप कंसोलिडेट कर सकते हैं ओनली थ्रू रीफाइनेंसिंग. सबसे मैजिकल टूल का यही बेनिफिट है, जो पेमेंट 10,000 दे रहे हैं आपके महीने की 6 से 6,500 हो जाएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ. यस,
2: अमेजिंग.
3: देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज एवरीथिंग यू ब्रिंगिंग टू द मॉर्गेज रेट, सिंपल मैथ्स, राइट? आप 4-4.5 मॉर्गेज रेट पे करा रहे हो, क्रेडिट कार्ड पे 19% रेट दे रहे हो आप, राइट? तो ये सारा मैटर करता है. ये तो बात हो गई. दूसरी बात है, अगर आपका रिन्यूअल 2027 या 2028 में है, पेनल्टी आपको $15,000-20,000 पड़ रही है, तो फिर आप रीफाइनेंसिंग मत कराएं, फिर आप अलग से लाइन ऑफ क्रेडिट अप्लाई करें, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट. होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट अपने बैंक को भी अप्रोच कर सकते हैं, अगर इनकम अच्छी है, क्रेडिट अच्छा है, तो बैंक को अप्रोच करें. अगर आपको लग रहा है कि इनकम क्रेडिट में इश्यूज हैं, तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, मेरी तरह किसी भी प्रोफेशनल को रीच आउट करके. बेस्ड ऑन दी एक्विटी, नॉट बेस्ड ऑन योर इनकम और क्रेडिट का इश्यू है, तो बेस्ड ऑन दी एक्विटी इन योर होम, आप होम रेनोवेशन के लिए पैसे निकाल सकते हैं. सिंपल मैच, राइट? तो ये दोनों ही ऑप्शन है, लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनकंसिस्टेंट इनकम है, इन सब चीजों का सोल्यूशन है. वंस यू गिव मी अ कॉल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू. दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलीजन. नंबर टू कॉल 647-512-7000, 647-512-7000.
2: और मुकेश जी, होम वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट कैन यू गिव?
3: देखिए, आप जब कॉल करेंगे, मेरी टीम आपके घर की फ्री वैल्यूएशन करके बताएंगे घर की वैल्यू क्या है. जब आपकी वैल्यू पता लग गई, देन विल गो फॉर अ पेड अप्रेजल. सो सिंपल, बैक टू यू शालिनी जी.
2: Wow, that's great, Mukesh ji. अच्छा, अब business owners के पास आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारी बात नहीं होती. तो आजकल businesses बड़े सफर कर रहे हैं. एक चीज जो बड़ी important होती है cash flow. तो अगर working capital उन्हें चाहिए business owners की, या कोई जैसे business start करना हो, या you know if somebody already has a business और आजकल की situation में उसको working capital चाहिए, तो how can you help और उसके लिए क्या क्या guidelines होंगी eligibility?
3: देखिए, दो चीजें. देखें, एक तो नए बिजनेस की बात करिए. नए बिजनेस के लिए तो काफी बिजनेस ओनर जो नहीं बने, बनने और बनना चाहते हैं, उनको ये फिक्र होती है डाउन पेमेंट कितनी देनी है, कितनी की मॉर्गेज मिलेगी, कितना अमाउंट होगा, एलटीवी क्या होगी, राइट? तो कभी भी आप बिजनेस परचेज करते हैं, एनीथिंग फ्रॉम 20-35% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, राइट? अगर आप एज अ प्रिंसिपल बाय कर रहे हैं, एज अ ऑनर ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, तो डाउन पेमेंट कम देनी पड़ेगी. बट एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ रेंटल बाय कर रहे हैं, तो डाउन पेमेंट ज्यादा देनी पड़ सकती है. कुछ कुछ केसेस में आपको 10% डाउन पेमेंट देके भी आप बिजनेस बाय करते हो. अच्छा, एक होता है, आपने अगर एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जिन्होंने विद इन अ वन ईयर बिजनेस बाय किया मगर कोई लोन नहीं लिया, अगर उनको एक साल नहीं हुआ और अपना और उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो वन प्रोडक्ट कॉल कैनेडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग लोन, CSBFL इज बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा. तो ये $5,00,000 तक, अप टू $500,000 तक का मिल सकता है. अगर आपको इस तरह के लोन की रिक्वायर्ड है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. अब बात आती है वर्किंग कैपिटल की. आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए, अगेन CSBFL कैन हेल्प यू, कैनेडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग लोन. और रियल स्टेट के साथ अगर प्रॉपर्टी लिए तो लोन आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको मैक्सिमम आपको ज्यादा भी मिल सकता है, $500,000, $1,000,000, $2,000,000, राइट? तो डिपेंड करता है. तो अगेन बिजनेस की इंक्वायरी है, आप मुझे कॉल करें. हर सिचुएशन डिफरेंट होती है. वंस यू गिव मी अ कॉल. तो नए बिजनेस के लिए एक चीज और याद रखिये, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, 680 एंड अबव. और कुछ गाइडलाइंस है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बिफोर आई फॉरगेट, कोई भी बिजनेस बाय करने से पहले आप फाइनेंसिंग कंडीशन के बगैर मत लीजिएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस. एटलीस्ट 3 months की आपको फाइनेंसिंग कंडीशन चाहिए. तो वंस अगेन, दिस इज मुकेश चौहान, मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. नंबर यू कैन रीच मी 647-512-7000, 647-512-7000. शालिनी जी, वंस अगेन हैप्पी लॉन्ग वीकेंड, और जरूर बात होती है नेक्स्ट वीक में आपसे.
2: जरूर, बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मुकेश जी. आपका नंबर 647-512-7000, 647-512-7000. ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर.
3: थैंक यू
2: जी. दोस्तों, एक छोटा सा टाइनी सा मैसेज लेते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, उसके बाद वापस लौटते हैं. और बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर.
4: अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
2: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉक इन क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
1: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर विजा इज डिक्लाइंड।
2: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232
3: भाई मैनू कहना भी पैना ते तुहानू सुनना भी पैना डिजाइनर फ्रेम ते ब्रांडेड सनग्लासेस दे बथेरे स्टोर देखे पर जिन्नी वैरायटी कांडा ऑप्टिकल दे कोल है ओदा ता जवाब है नहीं
4: सोने फेस वाली है उच्ची हील वाली है गुच्ची वाला सच पावे दिल ते थवारी है
3: फॉर अमेजिंग डिजाइनर फ्रेम्स एंड डिजाइनर सनग्लासेस विजिट kandaoptical.com और कॉल 416-922-5263 कांडा ऑप्टिकल द नेम यू कैन ट्रस्ट

आप सुन रहे थे शॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी विद शालिनी ऑन CMR FM 101.3. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल अस ऑन 416-569-7812, 416-569-7812, और ईमेल अस एट info@shawnmedia.com. Shawn Express, a Shawn Media presentation.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो वॉइस एक ऐसा रेडियो शो जो सुने आपकी बात,
3: जो हो आपके दिल के करीब,
2: जो मनाए आपके त्योहार,
3: रखे चुटकुले तैयार,
2: जहाँ पर मिले आपके सवालों के जवाब,
3: जहाँ मचे शायरी की धूम,
2: जो दे खबरें अप टू डेट
3: और दे ढेरों इनाम।
2: आपका अपना रेडियो शो रेडियो वॉइस
3: जतिन के संग
2: ऑन CMR 101.3 FM. Tune in Monday to Friday or log on to CMR.FM.
4: The views and information shared by the guests and their ads are their own and shall not be construed as advice from Radio Voice hosts. We make no recommendations or endorsements for radio show programs, products or experiences mentioned on air. Personal views expressed by the guests, ads, interviews will always be presented as such. No liability, explicit or implied, shall be extended to Radio Voice or the show hosts whose words and or opinions appear on the show.
5: हाँ जी मित्रों भाइयों, जो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं नोटों की बारिश में नहा रहा हूँ। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं नोटों की बारिश में नहा रहा हूँ, डॉलर को अपनी उंगलियों पर नचा रहा हूँ। तभी अलार्म बजा और मुझे असलियत याद आई। तभी अलार्म बजा और मुझे असलियत याद आई। मैं तो 10 रुपए वाली चाय के लिए भी चिल्लर जुटा रहा हूँ। आजी मित्र भाइयों, कई बार लगता है कि हम डॉलर को उंगलियों पर नचा रहे हैं, लेकिन सही मायने में डॉलर हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा होता है। बिंद्र भाइयों, वैसे तो नाचने से एक्सरसाइज अच्छी होती है, लेकिन डॉलर को अपनी उंगलियों पर नचाए वो ही बनता है मुकद्दर का सिकंदर। ये हिट वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम।

0: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
1: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है, चॉकलेट इतने खाता रहता है, और दूसरी तरफ माँ जी के दांतों में दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: समझना क्या, डॉक्टर नील गज्जर को फोन करो, बहुत ही रिनाउंड डेंटिस्ट है, और उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा और मेरा भी अपॉइंटमेंट बना लो दांत की सफाई करने के लिए। ये लीजिए फोन नंबर 289-401-0009 289-401-0009।
1: डॉक्टर नील गज्जर, 735 ट्वीन एवेन्यू सुइट 16 मिसिसागा, कॉल 289-401-0009।

0: ஃபார் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கால் சரப் சபர்வால் 647-864-8844 that's 647-864-8844
1: or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
8: Radio Voice, aapki pehli choice. Call karein 416-660-8545.
9: Dr. Neil Gajjar Associates and Specialists, Family Dentists, caring for all your dental needs. Accept कर रहे हैं patients जिनके पास CDCP यानी कि Canadian Dental Care Plan है. अगर आपने ये plan receive नहीं किया है और आप eligible है, तो इस plan में enroll होने के लिए visit करें CDCP website. CDCP की website visit करके enroll हो जाइए और कॉन्टेक्ट कीजिए डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट का. बेंद्र भाइयों, आपकी अपॉइंटमेंट अभी से बुक करवा ले 905-564-2021 डॉक्टर नील गज्जर एसोसिएट्स एंड स्पेशलिस्ट्स, आपके फैमिली डेंटिस्ट्स.
10: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized hai in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare Mumbai. MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
11: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
12: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walking clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232
9: जी. बंदर भाइयों, रेडियो वॉइस कल होगा लाइव ऑन लोकेशन फ्रॉम रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट. बंदर भाइयों, विक्टोरिया डे सील का धमाका, इस धमाके का जरूर बेनिफिट लीजिएगा और पहुंचिएगा रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट 5200 डिक्सी रोड इन मिसिसागा. कॉल भी कर सकते हैं 647-765-7657. रिट्ज फर्नीचर प्लेनेट, कल रेडियो वॉइस लाइव ऑन लोकेशन.
13: इस सीजन शानदार कनेडियन रोड ट्रिप में ड्राइवर्स और उनकी टोयोटास का होगा द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के अनजान रास्तों से आमना सामना. साथ देने आएंगे स्नैक्स, चाय ब्रेक्स और अटपटी प्लेलिस्ट्स. पर इस यादगार जर्नी से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर.
14: ये टाइम है फॉर एक्सपर्ट सर्विस एट योर लोकल टोयोटा डीलर.
13: वन इजी स्टॉप फॉर ऑयल चेंजेस, ब्रेक चेक्स एंड टायर स्वैप्स. बुक योर अपॉइंटमेंट टुडे, क्योंकि ये सफर होने वाला है तूफानी.
15: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस.
9: हाँ जी मित्र भाइयों, ये वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन। बेंद्र भाइयों, गर्मी की शुरुआत होते ही आपके पड़ोस में कुछ ऐसे लोग नजर आने लगे होंगे जो घर की मरम्मत, पेविंग या रूफिंग का ऑफर देते हैं। लेकिन सावधान, दरवाजे पर दस्तक देने वाला हर शख्स मददगार नहीं होता। ओंटारियो के पिकरिंग में एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां एक महिला को सस्ते काम के लालच में हजारों डॉलर का चूना लग गया। क्या है पूरा मामला? पिकरिंग की रहने वाली एक महिला के घर अप्रैल के मध्य में एक शख्स आया। उसने दावा किया कि वह पड़ोस में काम कर रहा है और हाइडी के घर के पुराने पत्थरों स्टोन वर्क को नया जैसा बना सकता है। उस शख्स ने कहा कि वह इंटरलॉकिंग पत्थरों को फिर से लगाएगा, प्रेशर वॉश करेगा और उन्हें सील कर देगा। महिला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगले ही दिन काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने $3,000 की मांग की। जैसे ही पैसे दिए गए, वे ठेकेदार सिर्फ कुछ घंटे काम करके वहां से गायब हो गया। महिला ने बताया कि पैसे देने के बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। बेंद्र भाइयों, आपको बता दे, इस महिला के पति दिवंगत है। उन्होंने सोचा कि मैं अच्छी तरह से जो स्टोन से उसकी केयर लूं, लेकिन मामला कुछ और ही हो गया। इस महिला ने कॉम्पैक्ट मेसनरी एंड रूफिंग के साथ समझौता किया था, लेकिन कंपनी का संपर्क करने की कोशिश की गई तो फोन का जवाब न मिला, न ही ईमेल का जवाब मिला। लैंडस्केप ओंटारियो के कार्यकारी निदेशक जो सालेमी का कहना है कि वसंत के मौसम में ऐसे मामले बढ़ जाते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर तुरंत कैश की मांग करता है तो वह प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि एक जालसाज है। चौकन्ने रहिएगा। ये वॉइस हम हैं आपके दोस्त जतीन। दुनिया भर की खबरें weeklyvoice.com पर।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman, sasta nahi. High end the saman mile sasta.
2: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5-10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12-3, डिनर 5-10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक नई ओर ले जाना है, तो डायल करें 416-660-8545 रेडियो वॉइस.
4: हाँ जी मेरे भाइयों, ये रो वॉइस और हम हैं आपके दोस्त जतीन. मेरे भाइयों, कर्जे से बाहर आना है, सिद्दीक साहब से बात कीजिए. कर्जे की और जाना ही नहीं है तो भी सिद्दीक साहब से बात कीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एडवाइस देते हैं, सालों का एक्सपीरियंस, और जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं. नंबर टू डायल इज 416-671-0577 416-671-0577. सिद्दीक साहब, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज हमारे श्रोताओं को बताएं आज किस बात पर आप फोकस करना चाहेंगे. ओवर टू यू सिद्दीक साहब.
5: जी यजमान भाई, बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप पे कोई कर्जे हैं, पिछले 2-3 महीने से मिनिमम पेमेंट्स कर रहे हैं, या एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हैं, तो अपना पैसा इंटरेस्ट में ज़ाया होने से आप बचा सकते हैं. अगर आप कॉल करेंगे, नंबर है 416-671-0577 416-671-0577 पे कॉल करके, चाहे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन ले लें या मेरी किसी भी लोकेशन पे आके मुझसे मिल सकते हैं. फ्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना. आए, इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद डिसाइड करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा. लेकिन अगर आप बगैर इंफॉर्मेशन लिए घर बैठे ये डिसाइड कर लेंगे कि मैंने पूरा कर्जा विद इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं पिछले 25-26 सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आपका पैसा भी इंटरेस्ट में ज़ाया हो जाएगा, आप डीप डेट में भी जाएंगे और आपका क्रेडिट भी ज़्यादा ख़राब होगा. इसलिए इस चीज़ को सीरियस लें, इग्नोर ना करें. चाहे कर्जा छोटा है या कर्जा ज़्यादा है, चाहे वो पर्सनल कर्जे हैं आप पे या बिजनेस के कर्जे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं, पर्सनल लोन्स हैं, बिजनेस के लोन्स हैं, पेड लोन्स हैं जो हाई इंटरेस्ट लोन होते हैं, या इनकम टैक्स का मामला है CRA के साथ पर्सनल, या बिजनेस का GST आउटस्टैंडिंग है, पेरोल आउटस्टैंडिंग है, वही सब्सिडी आउटस्टैंडिंग है, या सीबा लोन, हेस्केप लोन लिए थे पे नहीं कर सके वापस, या कोई कार, ट्रक या ट्रेलर फाइनेंस किया था, पेमेंट नहीं कर सके, उठा के ले गए, या पेमेंट नहीं कर सकते, वापस करना चाहते हैं, तो ये सारे कर्जे आपके बड़ी आसानी से सेटल हो सकते हैं. उसके लिए कई ऑप्शन अवेलेबल हैं. हम आपको गाइड करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम रिलीफ मिल सके वो आपको दिलवाएं और बाकी छोटी छोटी किस्तों में बगैर इंटरेस्ट के आप पे करें. इसलिए अगर आप पे कर्जा है तो नंबर है 416-671-0577 416-671-0577 पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. दूसरा, अपना मनी मैनेजमेंट ज़रूर देखें, वीकली, बाई वीकली या एटलीस्ट मंथली एक दफ़ा ये देखें कि आपकी इस महीने इनकम कितनी थी और आपके एक्सपेंसेस कितने थे. अगर उसमें कुछ डेफिसिट हो तो अगले महीने उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेफिसिट जो होता है ये ज़ाहिर है क्रेडिट कार्ड से पूरा होता है, और क्रेडिट कार्ड पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो चलते चलते डेट ज़्यादा हो जाता है जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए इसको सीरियस लें. नंबर 416-671-0577. एक चीज़ की मैं गारंटी करता हूँ कि एक तो मेरे ऑफिस से आपको ऑनेस्ट एडवाइस मिलेगी. अगर आपको ज़रूरत हुई रिलीफ लेने की तो बताऊँगा रिलीफ लो, अदरवाइज़ कोई और ऑप्शन दूंगा. दूसरा, अगर मैं आपका केस रिव्यू करने के बाद लूंगा तो इस चीज़ की भी मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे ऑफिस से आपको कभी भी किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा. जो आपसे वादा करूँगा पहली मीटिंग में उसके मुताबिक आपका केस अप्रूव होगा. और अगर इसमें आपका क्रेडिट ख़राब होता है या ऑलरेडी ख़राब हो चुका है तो याद रखें, हम अपने क्लाइंट को एनरोल करते हैं क्रेडिट रिबिल्ड प्रोग्राम में, और अगर उसपे आप एनरोल होते हैं, मेरे एडवाइस पे अमल करते हैं, तो बहुत जल्द मैं आपको वापस बैक टू ट्रैक पे ले आऊंगा। बहुत जल्द आपको वापस क्रेडिट भी मिल सकता है। इसलिए अगर आप पे कर्जा है, घर बैठे डिसाइड ना करें, आप मेरी लोकेशन पे आके विजिट कर सकते हैं, चाहे एक दफा आए, 10 बार आए, फ्री कंसल्टेशन है, कुछ आपने पे नहीं करना। या अगर लोकेशन पे नहीं आ सकते तो कॉल कर सकते हैं 416-671-0577, 416-671-0577। लोकेशन हमारी स्काब्रो में है, मार्कम एंड अलगमेर के पास, इटोबिको में हेड ऑफिस है, किपलिंग रेक्सल के पास, मिसिसागा में है डिक्सी 401 के पास, और ब्रैम्पटन में है ब्रैम्बली बवेर के पास। टॉल फ्री नंबर है 1-855-671-0577 या मेरी डायरेक्ट लाइन है 416-671-0577, 416-671-0577 पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी जतन भाई।
4: सिद्दीक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेंद्र भाई, अब आपकी बारी, एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। सिद्दीक साहब से बात करने के लिए कॉल करें 416-671-0577, 416-671-0577। डिटेल जानकारी alldatesolutions.ca पर। यही डू वॉइस, हम हैं आपके दोस्त जतीन।
6: रेडियो वॉइस आपकी पहली चॉइस 416-660-8545।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232 416-890-3232.
4: रिट्स फर्नीचर दा मैसेज जरा

0: மீட் ரோஹித் தயஸ்மேன் அட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட், 5200 டிக்சி ரோட், மிசிசாகா. டெலிபோன் 905-232 ரிட்ஸ், தட் இஸ் 232-7489. விசிட் ரிட்ஸ் ஃபர்னிச்சர் பிளானட்.ca.
1: சஸ்தா சமான் சஸ்தா நை, ஹை அண்ட் த சமான் மில சஸ்தா.
2: ரேடியோ வாய்ஸ் ஆப்கி பெஹலி சாய்ஸ், கால் கரே 416-660-8545.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
5: अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर,
6: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा. 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 and 10, ब्रैम्पटन. टेलीफोन 905-799-9400.
7: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर.
8: टेस्टी डोसा खाने का मन है? हमारा फेवरेट गुरु लक्ष्मी है ना, यूनिट 44-50 7070 सेंट बारबरा बुलेवार्ड, मिसिसागा. मंडे और ट्यूसडे को डिनर शाम 5 to 10, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंच 12 to 3, डिनर 5 to 10. वेडनेसडे को बंद, मगर लॉन्ग वीकेंड पे खुले रहते हैं. कॉल करें 9057952299 या विजिट करें gurulakshmi.com. गुरु लक्ष्मी, साउथ इंडिया के स्वाद का असली तड़का.
9: क्या बात है, उलझन में लग रही हो?
10: उलझन ही तो है, एक तरफ चिंटू के दांतों में कीड़ लग गई है.

0: 2894010009.
1: Dr. Neil Gajar, 735 Tween Avenue, Suite 16, Mississauga. Call 2894010009. Radio Voice, aapki pehli choice. 416-660-8545.
2: Bahut satri akal. Aap sun rahe hain Radio Voice FM 101.3 aur main hoon Amitabh. 4:30 बज रहे हैं और हर थर्सडे की तरह इट्स टाइम फॉर आवर स्पेशल इंटरएक्टिव सेगमेंट मॉर्गेज मंत्रा, एक ऐसा टॉक शो जहां कनाडा के मॉर्गेज इंटरेस्ट रेट्स और रियल एस्टेट की असली और सटीक बातें होती हैं. एंड राइट नाउ दैट कॉन्वर्सेशन हैज नेवर बीन मोर इम्पॉर्टेंट. कनाडा का मॉर्गेज लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स एक नाजुक मोड पर हैं और इस साल लाखों कैनेडियंस एक बड़े रिन्यूअल शॉक का सामना कर रहे हैं या करने जा रहे हैं. द स्टेक सिंपली कुड नॉट बी हायर. और ऐसे वक्त में हमें जरूरत महसूस होती है एक ऐसे प्रोफेशनल की जिन पर हम पूरी तरह से पूरा भरोसा कर सके. और हम शुक्रगुजार हैं कि आज और हर थर्सडे एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है. ही इज अ नेशनल टॉप 5% अवार्ड विनिंग मॉर्गेज ब्रोकर जिनकी दशकों की मेहनत और एक्सपर्टीज ने GTHA एंड कनाडा हजारों परिवारों के घर के सपने सच किए हैं. द वन एंड ओनली मिस्टर अयाज भांजी. तो अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, रिफाइनेंसिंग के बारे में सोच रहे हैं या अपने अपकमिंग मॉर्गेज रिन्यूअल को लेकर थोड़े परेशान से हैं, तो ये सेगमेंट है आपके लिए. अयाज जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे 4:50 तक. तो अगर आपका मॉर्गेज से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप अयाज जी से डायरेक्टली पूछ सकते हैं बाय कॉलिंग आवर स्टूडियो एट 416-593-0055. अयाज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. प्लीज हमारे श्रोताओं को मॉर्गेज इंडस्ट्री की इस हफ्ते की कुछ खास अपडेट्स दें.
3: Thank you, Amitabh bhai. First of all, thank you for your very kind introduction and all the support that you give us to be able to come on your show. So very, very grateful, sir. Amitabh bhai, I may be ek article padha hu jiske bare mein aaj mujhe baat karni hai listeners ke saath. To hamari ek mortgage conference thi a few days ago jahan Derek Burton, who is the deputy chief economist for the TD Bank Financial Group, he was the speaker. And it's a really interesting article. Main sab listeners ko batana chahta hun ki they can go on to Canadian Mortgage News, Mortgage News website. And the article is there. Basically, he was talking about the Canadian economy.
2: Okay.
3: And what he was saying is that the Canadian economy has gone through severe shocks, just like other international economies, right? So he was basically saying that since the pandemic, stability has not been there, right? What we saw during the pandemic, the rate of inflation went up aggressively. And so, because originally the rates were very down to handle the pandemic, and the bank started, lowering the rates, pushing up inflation, and then the bank had to catch up and really raise interest rates. And we all know the effect of that was really aggressive, right? So as the rate of inflation came down, and interest rates stable at a more sustainable and active levels, we see what happened. Suddenly, after the shock of the pandemic, we now have a problem with the United States on the trading issues. And majority of our trade is done there. So that has also put another a nail in sort of the Canadian economy. And exactly. Beyond that also, we see what's happening in the Middle East, where, again, there is a problem. So the economy has seen a series of shocks. However, what he has been saying, which I completely agree with, there is resiliency within the economy. Canadians are resilient. We see that in February, consumer spending actually went up by 0.8%. So people are not depressed, and people are not just sitting at home, and people are not not wanting to spend money. I remember Saturday, on the eve of Mother's Day, when I was trying to book a restaurant, there was no room anywhere. So yes, that tells you that Canadians are very resilient. And what Derek Burton was saying is that he agrees with all the top

मीट अगेन ऑन द डे जो सेलिब्रेट करता है बर्थडे उनका, जिनके डेटाबेस में दुनिया भर के अधिकतर लोगों के बर्थडेज फीड रहते हैं। इनफैक्ट हम बुलक्कर लोग भी मुझे लगता है कई बार उसी के भरोसे हो जाते हैं कि एफबी हमें नोटिफाई कर रहे, टपक के आए वो नोटिफिकेशन कि आज फला फला का बर्थडे है, हेल्प देम टू सेलिब्रेट, एज इफ कि ये भी कोई जरूरत की चीज हो, हैशटैग हेल्प देम। हाँ, और हम जानते हो नहीं, ठीक से नहीं भी जानते हो तो भी हैप्पी बर्थडे विश कर ही डालते हैं, विच इज अ नाइस थिंग एक्चुअली। इट्स लाइक कि आप अपना या अपनों का बर्थडे एक बार को भूल जाए, पर ये ना ना, इनका तो जैसे काम ही है रोज का बर्थडे रिमाइंडर्स देने का। वेल, मार्क ज़करबर्ग की बात कर रही हूँ जिनका आज बर्थडे है, हेल्प देम टू सेलिब्रेट भाई वाली नोट। दिस इज स्वाति एंड पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि यूथों ने सबको एक पावर दे डाली है यहाँ पर कि शेयर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद एवरीवन एंड एनीवन, जैसे भी आपका मन करे। पर उस एनीथिंग टू एनीवन का जो पावर इन्होंने इस्तेमाल किया है वो ना, मुझे लगता है एक खुद एक लाइन से बाहर वाला यूसेज रहा। हम सभी का डेटा यहाँ वहाँ शेयर कर डाला, ये इल्ज़ाम भी इन पर जमकर लगा। बाकी एक और कोट उनका भी वर्थ शेयरिंग मुझे लगता है, मतलब QUOTE वाला कोट कि अ सक्सेसफुल मैन ऑलवेज वियर टू थिंग्स ऑन हिज लिप्स, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। अब साइलेंस तो खैर अपने बस की बात नहीं क्योंकि रोजी रोटी बकर बकर से चलती है अपनी, पर स्माइल उसका साथ वो मैं छोड़ती नहीं।

0: Genesis Markham. यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस. लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से. आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Wayne's Auto Group.
1: इस बायर्स मार्केट में घर का प्राइस बहुत कम मिल रहा है और रियल्टर्स कमीशन भारी पड़ रहा है, क्या करूं?
2: स्मार्ट सेलिंग प्राइस बेशक मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन माई रियल्टो के सेलर एडवांटेज प्रोग्राम से आप खुद डिसाइड करते हैं सर्विस पैकेज और कमीशन भी.
1: यानी फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल दोनों मेरे हाथ में.
2: बिल्कुल. लिस्टिंग कमीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0.99%. मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड माई रियल्टो. कॉल मी फॉर अ फ्री मार्केट इवैल्यूएशन एट 416-843-7600.
1: My property, my choice. My Realco, the real estate company. Or visit myrealco.com. Not intended to solicit buyers and sellers already under contract.

बायर्स मार्केट में अगर घर बेचना आपको एक मुश्किल काम लग रहा है एट अ डिजायर्ड प्राइस, तो माई रियलको के ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड संजीव मनोजा जी अब लाए हैं सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम, जिसमें लिस्टिंग कमीशन शुरू हो रहा है फ्रॉम जस्ट 0.99%, यानी हजारों डॉलर्स की बचत। बाकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस तो उनका यूं भी सॉलिड है, जिससे घर बेचना हो या खरीदना, एक्सपीरियंस आपका बस हैप्पी वाला होगा विद लिस्टिंग कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 0.99%। उन्हें कॉल करें एट 416-843-7600 और सेलर्स एडवांटेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स पता कर लें। घर अगर खरीदना है तो भी उनके पास बायर्स रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है, जहां अप टू 40% ऑफ इस कमीशन आपको मिल सकता है एज कैशबैक, अगेन सेविंग यू thousands of dollars. Free consultation hai. Call kare 416-843-7600. Sanjeev Manocha from My Real Co. 416-843-7600 or visit myrealco.com.

0: It's Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra Finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ.
3: जैसे आपने सुना कि नजरें बदलें तो नजारा बदल जाएगा, और इसके लिए आपको बहुत जरूरी है नजरों का बदलना, है ना. इसे नजरें फेरना नहीं कहते, बदलना कहते हैं फॉर गुड. और उसके लिए एकदम आंखें दुरुस्त दुरुस्त चाहिए, तो चश्मे कई बार बहुत अच्छे चाहिए होते हैं आपको. गॉगल्स, ग्लासेस, डिजाइनर सनग्लासेस, ये सब अच्छे चाहिए होते हैं, है ना. और उसके लिए स्पेक्स एक्सप्रेस वो जगह है जहाँ आपको एक बार जाना बनता है फॉर मेनी रीजंस. एक, सर्विस बहुत अच्छी है. दूसरा, वहाँ पे जो कलेक्शन सिलेक्शन आपको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा. थर्ड रीजन, वहाँ पर जो डील्स होती हैं वो बहुत ऑसम होती हैं. कई बार तो इतनी अच्छी अच्छी डील्स होती हैं कि आपको टू गुड टू बी ट्रू लग रही होती हैं, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं सच होता है. पर स्पेक्स एक्सप्रेस पर ही होता है. नंबर टू कॉल देम इज 9054608888. पर डिटेल में इस लॉन्ग वीकेंड पे घूमने फिरने के लिए, आंखों में अच्छे से चश्मों के लिए क्या डील्स है वो हम आपकी बात करा देते हैं राजन जी से. राजन जी, वेलकम.
4: थैंक यू सो मच स्वाति जी, और सभी लिसनर्स को प्यार भरी नमस्कार. स्वाति जी, आप चौथा पॉइंट छोड़ गए कि लॉन्ग वीकेंड है तो कुछ बढ़िया सा होना चाहिए.
3: मैं तो बस यही सोच रही थी कि लॉन्ग वीकेंड है तो घूमने फिरने जा रहे हैं ना, तो चश्मे तो अच्छे चाहिए, पर पॉकेट तो वैसे आजकल इधर उधर कट रही है, तो कहीं से तो बचत हो तो चश्मों भी क्यों ना करी जाए.
4: बिल्कुल जी, बिल्कुल. सो लॉन्ग वीकेंड के ऊपर बहुत बढ़िया डील्स है जी. सबसे पहले बता दूं, जितने भी लिसनर्स आज थर्सडे शाम के 7 बजे तक, कल फ्राइडे और परसों सैटरडे, तीनों दिनों में किसी दिन भी आ रहे हैं और कोई भी परचेज कर रहे हैं, दोस्तों आपको हर परचेज के साथ स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस एज अ गिफ्ट बिल्कुल दिए जा रहे हैं. तो मैं रिपीट कर दूं कि ये आपकी कोई भी परचेज हो, कई बार होता है कि यार हम तो वैल्यू पैकेज ले रहे हैं, ये वैसे इतना सस्ता है तो इसके साथ क्या मिलेंगे, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल मिलेंगे. अगर आप हमारा वैल्यू पैकेज ले रहे हैं तो बताता चलूं, सिलेक्टेड ब्रांडेड फ्रेम है इसमें, लंडन फॉग के, लिवाइस के, रेंगलर के, वैन हिल्सन के, एडी बावर के, $300 की कीमत का फ्रेम है जी. साथ में हम आपको सिंगल विजन लेंसेज भी डाल के दे रहे हैं जो कि $100 के हैं. सो कुल मिलाकर ये 400 का पैकेज है जो कि हम अपने लिसनर्स को सिर्फ $129 में दे रहे हैं. ऑन टॉप ऑफ इट, आप अपने ग्लासेस के ऊपर जितनी मर्जी कोटिंग ऐड करवाएं, सभी कोटिंग्स 50% ऑफ. अगर कोई भी पर्सन आकर दो पेयर बनवा रहा है तो पहले पे कोटिंग 50% ऑफ है और दूसरे पे कोटिंग एब्सोल्युटली फ्री. और लॉन्ग वीकेंड का मसाला जी, साथ में हम आपको स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दे रहे हैं. तो मैं रिपीट कर दूं कि अगर आप कोई कोटिंग भी नहीं ऐड करवाते, कुछ भी नहीं करवाते, सिर्फ 129 का पैकेज लेकर जाते हो कि जी हमें सिर्फ 129 का बेसिक पैकेज चाहिए, तो उसके साथ भी आपको स्केचेस के पोलराइज्ड सनग्लासेस बिल्कुल फ्री हैं. और ऐसे जिनको प्रोग्रेसिव ग्लासेस चाहिए, एसएलआर कंपनी के हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं, $300 की कीमत के लेंसेज और $300 की कीमत का फ्रेम, $600 का पैकेज सिर्फ $258 में जी. और उसके साथ भी आपको स्केचेस के पोलराइज सनग्लासेस बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं. तो ये डील लेनी है तो पहुंचना क्या जी, स्पेक्स एक्सप्रेस के ऊपर 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन में, 410 एंड स्टील्स कह लें या कैनेडी एंड स्टील्स की इंटरसेक्शन है जी, वॉलमार्ट वाला प्लाजा. और नंबर है हमारा 9054608888. 8888 और जिन्होंने आई एग्जाम करवाना है डॉक्टर हमारे पास कल फ्राइडे को शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अवेलेबल हैं। अगर आप फ्राइडे नहीं आ सकते तो सैटरडे भी सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अवेलेबल हैं। प्लीज कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लें ताकि आपका टाइम सेव हो। और स्वाति जी, एक और स्पेशल चीज, जो भी हमारे लिसनर्स कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, जिनके प्लान्स हैं कि वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नहीं आ सकते, उनके लिए एक और बढ़िया मौका, आप दोस्तों कॉल करके अभी अपना नाम लिखवा दें। जो भी लिसनर्स हमें नाम लिखवाएंगे उनको ये डील हम मई के एंड तक 31 मई तक देंगे। कोई भी परचेस कर लेंगे तो साथ ही स्केचेस सनग्लासेस फ्री है, एज लॉन्ग एज आपने कॉल करके अपना नाम लिखवाया जी। तो कॉल करके नाम लिखवाने के लिए एक ही नंबर 905-460-8888 905-460-8888। और जिन लिसनर्स के पास बेनिफिट्स हैं, बताते चलें कि मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज को हम डायरेक्ट बिल करते हैं, चाहे आपका आई एग्जाम हो, आपके प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस हो या फिर प्रिस्क्रिप्शन सनग्लासेस। सो दोनों लोकेशन में से कहीं पर भी जाकर दोस्तों आप ये डील्स ले सकते हैं। जरूर कॉल कर पहले अपना नाम लिखवा दें ताकि ये डील आपके लिए रिजर्व रहे। 905-460-8888 905-460-8888। थैंक यू सो मच स्वाति जी।
3: थैंक यू सो मच राजन जी। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, प्लीज इस नंबर पे अपना नाम जरूर लिखवाएं, क्योंकि अगर आप वीकेंड तक नहीं जा पाते क्योंकि आप बाहर गए हुए हैं या वीकेंड पे जा रहे हैं, तो लौट के वो जो नाम आपने लिखवाया होगा ना वो काम आएगा, आपको ये डील्स ऑनर कर दी जाएंगी। तो इन डील्स का फायदा जरूर उठाएं। यू जस्ट हैव टू पिक अप अ फोन एंड कॉल एंड रजिस्टर योर नेम फॉर दीज डील्स। नंबर इज 905-460-5555
4: 905-460-8888
3: Sorry, 8888 Thank you, Rajan ji.
4: Thank you so much.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: बिजनेस में ग्रोथ रुक गई है, हो सकता है आपका बिजनेस नेम या वास्तु सही सपोर्ट ना कर रहा हो। पन्ना शाह के साथ पाइए बिजनेस नेम करेक्शन, शॉप एंड ऑफिस वास्तु और बिजनेस ग्रोथ न्यूमरोलॉजी। सही नाम और सही दिशा दोनों बनाते हैं बिजनेस को स्ट्रॉन्ग। आज ही व्हाट्सअप करें 4376733125, 4376733125 और पाइए 10 मिनट की फ्री कंसल्टेंसी।
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
3: At Wayne's Auto Group, आप हम पर rely कर सकते हैं for everything automotive. चाहे हो daily commute या weekend scape, हमारा promise will always remain the same. हर journey को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 dedicated associates जो बोलते हैं आपकी language. Offering 9 brands across 15 dealerships. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. आज ही विजिट करें waynesautogroup.com.
4: फायदा उठाए स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 6473412785, 6473412785 और विजिट amitkhurana.com।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: Grand Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: Fresh Breeze, new release. On CMR at 5 PM. फिल्मी नुक्कड़ सीएमआर 101.3 एफएम पर आप हैं स्वाति और पायस्विनी के साथ. एंड ये है फ्रेश ब्रीज न्यू रिलीज का टाइम. तो गाना ताजा तरीन जो मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, इट्स अ सॉफ्ट रोमांटिक यट पेपी विद अ जैज वाली वाइब्स फ्रॉम अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की अपकमिंग क्राइम थ्रिलर. नाम है उसका बंदर, ऑल्सो टाइटल्ड एज मंकी इन अ केज. मतलब उस हिसाब से मैं सोची थी इसका नाम होना चाहिए था एक बंदर पिंजरे के अंदर, पर चलो हम सिर्फ बंदर से ही काम चला लेते हैं. कहानी है इसमें एक टेलीविजन स्टार की जिसका जादू पब्लिक पर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, चढ़ता सूरज ढलने लगा है. एंड उसकी वजह उसका काम नहीं, उसकी वजह परिस्थिति है. क्या उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड ने उस पर इल्जाम लगा दिए हैं असॉल्ट एंड ऑल के, और फाइनली एक ब्रोकन रिलेशनशिप आप कह सकते हैं जिसकी वजह से जेल होती है और सामने आता है करप्ट लीगल सिस्टम भी. अब फिल्म में सानिया मल्होत्रा है, सबा आजाद भी है,

ये टिफ में लास्ट ईयर एक्चुअली प्रीमियर भी की गई थी, अच्छा रिस्पांस मिला था। इस साल जून 5 को आप सबके लिए रिलीज हो रही है। अच्छा सा गाना है फिल्म का जो मैं सुनवाने वाली हूँ, इट्स टाइटल्ड एज क्यों मजा आ रहा है। कुछ फ्लर्टी सा है, रोमांटिक भी, ड्रीमी सा एंड ग्रूवी भी। इट्स सॉन्ग बाय विशाल मिश्रा, लिरिक्स भी अच्छे से हैं। कुछ लाइंस पर आपका एक्चुअली ध्यान जा सकता है जब कहेंगे अरे अच्छा लिखा है। शाश्वत द्विवेदी के लिरिक्स है, म्यूजिक है आदित्य देव का। सॉफ्ट सा, पैशनेट सा है, मेलोडियस है विद अ रेट्रो टच। ट्रम्पेट और गिटार इसमें जो है वो काफी प्रोमिनेंटली नोटिसेबल है। आई वुड गिव दिस सॉन्ग डेफिनेटली अ प्लेस इन माई प्ले लिस्ट। बाकी आप सुन के बताएं क्यों मजा आ रहा है सुनकर, क्या मजा आया है? स्टूडियो का नंबर 4165930055।

That was Aankh Mare from full-on police drama wali film Simba. वो बात और है कि पुलिस आंख मारने वालों को पकड़ती है, खुद नहीं मारती. पर ये तो बॉलीवुड है, तो यहाँ तो वही सब संभव है. कभी हुड़हुड़ दबंग सी पुलिस, कभी आटा माजी सटकली सी पुलिस, कभी आला रे आला सिम्बा सी पुलिस, और कभी चिंता का चिता चिता करती राउटी राठौर सी पुलिस. बाकी ये अच्छी वाली पुलिस चाहे ऑन स्क्रीन में हो या ऑफ स्क्रीन वाली सच्ची मुची की, इट्स फॉर आर सेफर कम्युनिटी, है ना. और इसीलिए इट्स ट्रेंडिंग हैशटैग पुलिस वीक. आप ट्वीट करें या ना करें उनके सपोर्ट में, बट दिल से एक थैंक यू जरूर बोल दें, वो भी चलेगा. एस अगर ये हमारे साथ, तो बस समझो सेफ्टी भी है अपने साथ. Right?

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे पे हो रही है जबरदस्त हंडे संडे की अल्टीमेट सेविंग सेल ऑन May 24th. इन्वेंटोरी पर ह्यूज बोनस ऑफर्स. डील्स इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. संडे मई 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. डॉन वैली नॉर्थ हंडे पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए DonValleyNorthHyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Mark Cooper. Doing business your way. Member of Wayne's Auto Group.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: हम होंगे आपके साथ हमेशा.
3: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
4: जी हाँ, दैट्स द नंबर आयशा मुनव्वर जी को कॉल करने के लिए 416-428-2165. इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपकी कर्जे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं फटाफट फुर्र हो जाएंगी. वेल, कॉल करें, पर जब तक आप करते हैं कॉल, एक क्विक सी मुलाकात मैं करा देती हूँ यहीं पर विद आयशा मुनव्वर. आयशा जी, वेलकम एंड ओवर टू यू.
5: Thank you very much for having me on air. I'm Aisha Munawwar. I'm offering debt solutions since last 25 years to our community. और बेताशा हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब डेट फ्री हो चुके हुए हैं और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेसेस जो हैं उसको रन कर रहे हैं. तो हम कंज्यूमर प्रपोजल्स की सर्विसेज ऑफर करते हैं, बैंकरप्सीज की भी सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, लमसम प्रपोजल्स. अगर किसी का प्रपोजल्स टूट गए हैं तो उसके लिए भी आप एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं. सो वी कैन एडवाइज यू कि क्या आपकी ऑप्शंस हैं. आपके एसेट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं प्रोटेक्टेड रहें, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बन जाएं और लीगल एक्शन और कलेक्शन जो हैं वो रुक जाएं. All information is being kept confidential because हम आप ही की कम्युनिटी से हैं और मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस विद एवरीबडी. और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हर एक से ये इन्फॉर्मेशन लें और गलत किस्म की एडवाइस जो है वो ले लें और बाद में उसका नुकसान हो आपको. तो ऑलवेज यू नो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स. सो वी आर प्रोफेशनल्स और उसमें यह है कि आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड की जाती है दैट सूट्स यू द बेस्ट. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने आपके एक फ्रेंड को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी सर्विस को हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे या वो आपको सूट करती है. फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू एंड सी आपके लिए क्या बेस्ट है. आपने किस तरह से इसमें से निकलना है, आपने फ्यूचर में किस तरह से दोबारा एस्टैब्लिश होना है और किस तरह से दोबारा क्रेडिट आपने जो है वो एस्टैब्लिश करना है, किस तरह एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं. आई टोटली एक्नॉलेज एंड ऑनर दिस थिंग दैट ऑल आवर क्लाइंट्स जो हमें कॉल करते हैं, किसी भी सोर्स से हमें कॉल कर रहे हों, चाहे वो दोस्तों ने रेफर की हों, चाहे एडवर्टीजमेंट रेडियो की हो, न्यूज़पेपर की हो, जहां से भी वो कॉल करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक टू मी पर्सनली. एंड आई हैव टू लेट यू नो कि हमारे ऑफिस से कोई मेरा ऑफिस कलीग मेरे बिहाफ पे अपॉइंटमेंट, मेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता. मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की टेक केयर करती हूँ. तो अगर आप मुझे सेल नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, अगर आप देखते हैं कि फोन मेरा बिजी आ रहा है, तो यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड वी विल स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ताकि आराम से कंफर्टेबली टाइम दे के हम आपकी सिचुएशन को डिस्कस करें और सोल्यूशंस को वर्कआउट करें. एंड वन कॉल विल मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ, दैट आई गारंटी. सो माई फोन नंबर इज 416-428-2165. अगेन इट्स 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
4: थैंक यू आयशा जी, थैंक यू सो मच. वेल, ये थी आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ. 416-428-2165 उनका नंबर है. एज आई सेड, अगर अपनी जिंदगी में कर्जे में आप डूबते चले जा रहे हैं या लग रहा है कि शायद आ जाएं, तो भाई फटाफट टाइमली एक्शन लें और उस समस्या से बाहर निकल जाएं. उनको कॉल कर लें, लंबा अनुभव है और अपनी जिंदगी के लिए खुशियों का रीसेट बटन आप दबा सकते हैं वंस यू कॉल हर. 416-428-2165.

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: Genesis Markham, यहाँ मिले लग्जरी का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट डीलरशिप और आपकी अपनी लैंग्वेज में एक्सपर्ट सर्विस। लीज करें ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 G70 सिर्फ 1.9% से, या लीज करें 2026 GV70 सिर्फ 4.9% से। आज ही बुक करें टेस्ट ड्राइव। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, डूइंग लग्जरी योर वे। A proud member of Wayne's Auto Group.
2: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
3: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 एंड 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 9057999400।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशेलिन टायर्स के ऑथराइज्ड डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप चार नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारब्रो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca. क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट लें कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स अ केयर It deserves.
4: Music charts पर ये है On Top. Private Studio से नुक्कड़ Indie Pop.

0: Don Valley North Hyundai पे हो रही है जबरदस्त Hyundai Sunday की Ultimate Saving Sale on May 24th. Inventory पर huge bonus offers. Deals इतनी जबरदस्त की मिस नहीं कर सकते. Sunday, May 24th को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो. Don Valley North Hyundai पर हमारी टीम बात करती है हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल में. विजिट करिए donvalleynorthhyundai.com. Woodbine Ave और Denison Street, Markham पर.
1: Doing business your way.
0: Member of Wayne's Auto Group.
2: अच्छा इस बेतरतीब से ठंडे से मौसम में आजकल एक चीज है जो गर्म है. पूछो क्या? सेंसस फॉर्म. उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसके क्वेश्चनेयर, जिसे देखकर कुछ लोगों ने प्यार से हाई हेलो किया, जानकारी का पिटारा जितना मांगा था रिस्पॉन्सिबिली दे भी दिया, तो कुछ लोगों ने सिरे से इग्नोर मार दिया कि टाइम ही कहाँ है हमारे पास, या ये सब क्यों पूछा जा रहा है इतना कुछ. बाकी कुछ लोग होते ही है वो जो देर से ही जागते हैं ये कहकर कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला ये फॉर्म कब आया और कब गया. वेल द पॉइंट इज, अगर आपने सेंसस का वो लॉन्ग फॉर्म अभी तक नहीं है भरा तो याद रखें ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है. फॉर्म भरो वरना फाइन भरो वाली स्थिति है. और फाइन भी कोई छोटा मोटा नहीं, $500 की बात हो रही है जनाब. वैसे ये कोई नई बात तो है नहीं, 350 साल पुरानी परंपरा है अनुशासन की. सेंसस कनाडा की जो शुरुआत हुई थी 1666 में हुई थी, जब घर घर जाकर लोगों की गिनती की जाती थी. आसान भी था क्योंकि इतनी जनसंख्या ही नहीं थी, 3215 के कुछ रही थी. अब इतने लोग तो आज का सोचो ना, एक परिवार के डिस्टेंट रिलेटिव सहित अगर जो इकट्ठे हो जाएं, पड़ोसी दोस्त यार, तो शादी में ही दिखने लगते हैं, है ना. अच्छा कंफ्यूजन भी रहा लोगों को कि ऑप्शनल है या जरूरी, क्योंकि जो 2010 का सेंसस था NHS फॉर्म, उसमें जो था वो वॉलंटियरली भरा जाता था, मतलब भरो चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं. पर जब उसमें डाटा कनेक्ट ही नहीं हुआ बहुत सारा, लोग सरकार को मिला ही नहीं ठीक से, तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो वापस जरूरी करना पड़ेगा वरना लोग टाल देंगे. सो अगर आपने नहीं भरा तो याद रखें भाई, स्टैट कैन वाले ना, आपने उधार वापस ना किया हो उनका, ऐसे वाली फील आपको दे जाएंगे रिमाइंडर्स पे रिमाइंडर्स दे देके. फिर फाइन अलग होगा अगर जो तब भी नहीं दिया. प्लस एक्चुअली अगर हम ये जानकारी देंगे किस भाषा के हैं, कहाँ से आए हैं, कितने लोग हैं, कितनी उम्र के हैं, तो उस हिसाब से फैसिलिटीज जो होंगी स्कूल की, पार्क की, हॉस्पिटल्स की, सड़कों की, घरों की और बहुत सारी, वो सरकार ठीक से डिसाइड कर पाएगी किस एरिया में कितनी किस तरह की देनी है. सो वेल, सरकार मांग रही है हिसाब, हर घर को देना होगा जवाब. $500 बचाओ, सेंसस की गिनती में आओ और एक अच्छे सिटीजन की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाओ.

0: Toyota Red Tag Days at Markville Toyota. 2026 Prius Plug-in Hybrid. Ghar le jaane ka perfect time. Receive kare up to $7,500 off. Current Toyota owners ke liye up to 1% rate reduction. Toyota Tundra finance kare as low as 3.99% for up to 36 months. Aapke trade ke liye hum dete hain top dollar. Visit Markville.com. Ya jaye 5362 Highway 7, Markham Bay. Markville Toyota, Wayne's Auto Group ka proud member.
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से $500 की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू $2,029, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time. मेरी रेगुलर किराया देने से प्रॉपर्टी मेरे लैंडलॉर्ड की मॉर्गेज फ्री हुई और मेरे अपने घर का सपना वो सपना ही रह गया।
1: अब वक्त है अपने घर का सपना साकार करने का। मैं हूँ संजीव मनोचा, ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड माय रियल को, द रियल एस्टेट कंपनी। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों फर्स्ट टाइम बायर्स को उनके बजट और जरूरत के हिसाब से घर खरीदने में हेल्प की है। अब बारी आपकी। कॉल मी नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एंड स्मार्ट बायर्स रिवॉर्ड प्रोग्राम एट 416-843-7600।
0: दैट्स 416-843-7600 और विजिट myrealco.com. फायदा उठाएं स्प्रिंग स्पेशल मॉर्गेज रेट्स एंड एक्स्ट्रा प्रमोशन का विद अमित खुराना। 5 इयर्स फिक्स्ड 4.14%, 3 इयर्स फिक्स्ड 4.19%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.55%, प्लस कैशबैक फ्रॉम बैंक एंड स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अमित खुराना अप टू $1,500। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कॉल अमित 647-341-2785,
2: 647-341-2785 or visit amitkurana.com. Demonstrator event at Don Valley North Lexus, May 16th tak. Lease rates as low as 2.9% up to 24 months. Select demo vehicles per savings up to $4,989 included. Best selection ke liye Don Valley North Lexus, jaldi visit kare. Jaldi kare. Offer ends May 16th. Visit DonValleyNorthLexus.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353, 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353. Get on your feet with Peppy Nukkad Beats.

एंड डे टू डे इज वो जब नेशनल लेवल पर दिया जाता है जोर कि बटर मिल्क बिस्किट ले हाथ में, डिसेंसी रखे साथ में और डांस पूरी चिकन स्टाइल में. It's hashtag National Dance Like Chicken Day, hashtag National Decency Day and hashtag Buttermilk Biscuit Day भी. मतलब कुछ भी रख लेते हैं लोग. But well, ये सब हो ना हो, चिकन डांस करना आता नहीं तो क्या, डांस करना भी चाहे आता ना हो, मेक श्योर कि उसकी जील जो है ना वो भरपूर हो. और फिर चाहे यू डांस लाइक छमिया और डांस लाइक पंजाबी.

0: Swan Valley North Hyundai आपको दे रहा है मौका FIFA World Cup 2026 के टिकट्स जीतने का. कोई भी व्हीकल बाइकर के घर ले जाएं और पाए डबल एंट्रीज. विंटर टायर्स या एक्सटेंडेड वारंटी ले और हर एक के साथ पाए एक एक्स्ट्रा एंट्री. आज ड्राइव करें, कल जीते. Visit DonValleyNorthHyundai.com today. A proud member of Vane's Auto Group.
1: FIFA ki ticket chahiye ghar, to jaye DonValley North Hyundai par. Ab poochho wahan kyun? Unhone khoob samjhaya hum sab ka man. Ab dekho na, FIFA ke tickets lena कोई छोटी बात थोड़ी है. मारा मारी हो रखी है भाई टिकट्स की. मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है उन टिकट्स का हाथों में आना. ऊपर से बजट के बाहर उनकी प्राइसिंग फॉर अ साधारण इंसान, है ना. पर डॉन वैली नॉर्थ हंडई के साथ ये हो सकता है आसान. अब पूछे कैसे. एक बैलेंस है उनका जिसमें एंट्री आपको करनी होगी बस टिल May 31st, दैट्स अ डेडलाइन. और फिर ड्रॉ होगा जून में. जिनके नाम निकल आए उनको मिल जाएंगे टिकट्स फीफा के. अगर आप मुझसे कोई भी हंडई कार लेते हैं ना, तो दो टिकट जीतने के लिए आपको ड्रॉ में दो नाम डालने होंगे बैलेट में. अगर विंटर टायर्स लेते हैं विद स्टोरेज, तो एक नाम एक टिकट के लिए डाल पाएंगे. या फिर कोई एक्सटेंडेड वारंटी ले लेते हैं, तो भी एक नाम फॉर वन टिकट आप लकी ड्रॉ बैलेट में डाल पाएंगे. देखिये, ऐसे नहीं तो वैसे क्या आपको फीफा टिकट मिल पाते हैं. और डॉन वैली नॉर्थ हंडई ने तो अपनी कोशिश आपके सामने रख दी है आपको जिससे टिकट मिल पाए. अब आपको करने अपने प्रयास. जल्दी जाएं एट डॉन वैली नॉर्थ हंडई, वुडबाइन एवेन्यू, मार्कम. फिर होंगे आम के आम और कटली के दाम.

0: அம்மா.
1: அரி ஜா ஜா ஜா ஜா.
0: அரி சுன் சுன் சுன் சுன்.
1: ஜா ஜா ஜா ஜா.
0: சுன் சுன் சுன் சுன்.
2: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़. इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल. 6478305042 6478305042. विजिट filminukkad.com.
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 9054608888. दैट्स 9054608888.
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस. बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस. स्पेक्स एक्सप्रेस.
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
7: At Wayne's Auto Group, आप हम पर रिलाई कर सकते हैं फॉर एवरीथिंग ऑटोमोटिव. चाहे हो डेली कम्यूट या वीकेंड स्केप, हमारा प्रॉमिस विल ऑलवेज रिमेन द सेम. हर जर्नी को बनाए खास. Wayne's Auto Group हमेशा आपके साथ. Over 1400 डेडिकेटेड एसोसिएट्स जो बोलते हैं आपकी

0: अपनी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
0: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
2: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
3: घर कहीं भी ले

ऑलराइट, दैट वाज लवली सा ट्रैक. अच्छा, 90s की सुपरहिट फिल्म थी दामिनी, उसने भी पिछले ही हफ्ते कुछ साल पूरे किए हैं. फिल्म में इस चक्कर में फिर से चर्चा में, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बात चली, क्योंकि सालों बीते लेकिन समस्या जो है जो इस फिल्म में दिखाई गई थी वो अभी भी वहीं की वहीं है जो इस फिल्म में उठाई गई थी. और फिल्म आप ये कह सकते हैं दैट एक्चुअली सिग्निफाइड सच्चाई और आत्मा की आवाज जब नहीं की जाती नजरअंदाज, उस मुद्दे को उठाया था. फिल्म को मीनाक्षी शिशाद्री की बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट भी कहा जाता है. पर आयरनी ये है कि उनके अलावा, यानी कि मीनाक्षी शिशाद्री के अलावा, सभी और कैटेगरीज में फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले दैट ईयर एक्सेप्ट हर. अ कल्ट फेमिनिस्ट फिल्म थी जो तब बहुत कम बनती थी. सोशल ड्रामा विद यू नो राइट इंटेंशन एंड राइट मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड ग्रिपिंग स्क्रिप्ट, और कोर्ट रूम सीन विद दमदार वाले डायलॉग्स और वो इमोशनल सा डायलेमा कि सच्चाई का साथ दूं या परिवार का साथ दूं, जब दोनों अलग अलग रास्ते पे हों तो किसका साथ दूं, बहुत मुश्किल हो जाता है. वो डायलेमा अलग था इसमें. इंटरेस्टिंगली फिल्म का म्यूजिक भी बहुत पसंद किया गया था बाय नदीम श्रवण, एंड द सॉन्ग ऑफ द फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय स्वहिल फोक सॉन्ग, जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ. बूझो तो कौन सा.

0: लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवर्टाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: आपकी दुकान या बिजनेस का सही नाम और सही वास्तु ला सकता है सक्सेस, क्लैरिटी एंड ग्रोथ, क्योंकि सही नाम और सही दिशा बनाते हैं किसी भी बिजनेस को स्ट्रांग। तो बिजनेस का नाम करेक्ट करना हो या शॉप ऑफिस का सही वास्तु या बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजी का यूज, कॉल पन्ना शाह एट 4376733125। 10 मिनट्स की कंसल्टेशन एकदम फ्री है। कॉल टुडे एट 4376733125।
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 4169902462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर It deserves. Winters में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं, और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर। सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन। गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज। मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये, एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं। इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं। विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर। For details, visit mymechanicauto.ca.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353। दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं। सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स। कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353, 6474535353.
4: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 6474535353.
5: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
6: मगर क्यों? पिताजी नहीं माने क्या?
5: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
6: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
4: हाँ, सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

अच्छा, आज मैं बात करने वाली हूँ ऑफ ए वेरी पॉपुलर नेम ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट एरा. प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बहुत फेमस, जिन्होंने पूरे 4 decades से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया. बचपन से ही अंग्रेजी फिल्में देखा करते थे, तो बस मन हुआ कि मैं भी एक्टर बनूंगा. और 17 साल के हुए नहीं कि लाहौर से कलकत्ता चले आए. ये बात हो रही है तब की, जब भारत पाकिस्तान एक भारत ही था. फिर मुंबई आ गए, वहां से 4 साल का स्ट्रगल किया और छोटे मोटे रोल्स किए. पर वो छोटे मोटे रोल्स करते करते ना उन्हें एक चीज समझ में आ गई थी कि डायरेक्टर का रोल हिंदी फिल्मों में कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कई बार एक्टर से, एक्टिंग करने से. तो उन्होंने सोचा कि भाई हम ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला काम करेंगे, और डायरेक्शन की तरफ उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया और उस तरफ उन्होंने रुख कर लिया. पहले असिस्टेंट डायरेक्टर बने कई फिल्मों में, और फिर उन्हें ब्रेक मिल गया एज यू नो सोलो डायरेक्टर विद अ फिल्म मतवाली जोगन. तब वो मालूम है सिर्फ कितने साल के थे? 21 साल के. पर मेजर पॉपुलैरिटी उन्हें तमिल फिल्म्स करने से मिली. सुपरहिट फिल्में दी उन्होंने कुछ. And he founded his own production company after that, जिसका नाम था K. Amarnath Productions. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ K. Amarnath जी की, जो बहुत versatile थे. स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग भी अच्छी कर लेते थे. और यू नो, फिर उन्होंने हिंदी फिल्म्स जो उसके बाद दी, बहुत हिट फिल्में रहीं. अलिफ लैला उनमें से एक है, वो दिन याद करो उनमें से एक है, बेकसूर, बारादरी एंड मोर. और फिल्म्स भी ना हर जॉनरे की बनाई, एक्शन सस्पेंस थ्रिलर से लेकर फैमिली सोशल ड्रामा तक, रोमांटिक कॉस्ट्यूम ड्रामा तक, म्यूजिकल भी और फैंटेसी वाली भी, जैसे कि बताया ना मैंने भी अलिफ लैला. सो वेल रिमेम्बरिंग द लीजेंड टुडे, जिन्होंने बहुत से फेमस नेम्स एंड टैलेंट्स इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस भी करे, जैसे सलमान खान के पापा फेमस राइटर सलीम ऑफ सलीम जावेद, जिन्होंने के अमरनाथ जी की फिल्म 1960 की जो थी बारात, उसमें एक्ट भी किया था. जैसे संजय खान, जिन्होंने 1965 की फिल्म वो दिन याद करो में हीरो बने थे जो. एंड जैसे मीनू मुमताज जी, कॉमेडियन महमूद साहब की बहन, 1955 की फिल्म बारादरी से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत करी. एंड जैसे कि वेरी ग्लैमरस, वेरी टैलेंटेड हेलन, अलिफ लैला में शी गॉट हर फर्स्ट ब्रेक एज अ मेन सोलो डांसर. सो वेल लीविंग यू विद दिस सॉन्ग, दिस इज स्वाति साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. वो गाना है जो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट्स है, मेरे पापा का भी, यू नो, जिसका आइडिया ही कुछ ऐसा है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड समटाइम्स कलर्स टू. हम मिलते हैं जल्दी, तब तक लव एंड स्माइल्स फ्रॉम मी टू यू.

0: 3FM.
1: न्यूज के लिए हमें दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा, जबकि वो आबनाए हुरमुस को खुला हुआ देखना चाहता है. चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और अमरीका को हरीफ नहीं शराकत दार होना चाहिए. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ईरान मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहा. उनका कहना था कि चीन आबनाए हुरमुस में टोल टैक्स लगाने के खिलाफ है और यही मौकफ हमारा भी है. खबरों के मुताबिक ईरान की बहरी अफवाज ने बुध की रात से चीनी जहाज़ों के एक ग्रुप को आबनाए हुरमुस से गुजरने की इजाज़त दे दी. दूसरी जानिब ईरान ने मुबैना तौर पर असलहे से भरा एक जहाज़ जब्त कर लिया, जबकि ओमान के साहिल के करीब एक भारतीय जहाज़ के डूबने की खबर मिली है. ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि UAE ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस था. उधर मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइली वजीर आजम की दौरे मुत्तहदा अरब अमारात की तरदीद कर दी. पाकिस्तानी दफ्तर खारजे के तर्जुमान ने कहा है कि भारत में अब मुजाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें एक मुस्बत पेशरफ्त हैं. इससे पहले RSS के रहनुमा दत्तात्रेय होसबाले ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए. जमीयत उलमा इस्लाम ने महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे और इस सिलसिले में 22 मई को मुल्क भर में मुजाहरे होंगे. पाकिस्तान वेमन की टीम ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 67 रन से हरा दिया. उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट 16 मई को सिलहट में खेला जाएगा. और आज रात से गैस की कीमत में 3 सेंट फी लीटर कमी हो जाने का इम्कान. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जो बैरदीन साहब के लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003. गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 202 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं. पाकिस्तान के किसी भी बैंक में आप यहां से मनी ट्रांसफर कर सकते हैं. अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 202 रुपये. कॉल कर लीजिए 9053060000 9053060000. थर्सडे हैं आज. मिदा फर्नीचर से भवन मिडा साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. आलम लॉ ऑफिस से आफ्ताब आलम साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे. ब्रामटन टीम अप्लायंसेस से सुल्ताना साहब हमारे साथ होंगे. और चायखाना चाइनीज कुजीन से इकबाल साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे. कनेडियन इंग्लिश एयरलाइन 7:30 तफसीली खबरें 8 बजे. लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 की करार. और भी कुछ मौजूदात रहेंगी हमारी और आपकी बातें होंगी, लेकिन इस सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है. अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे छोटे प्यारे सामने, आदमी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में अपना वक्त बर्बाद करता है वो अफसोस है. बेशतर लोग माजी की तलख यादों में घिरे रहते हैं और ये सोच कर कुटते रहते हैं कि अगर मैंने ऐसे किया होता तो ऐसे हो जाता, वो काम ना बिगड़ता, ये तब्दील की होती तो उस नुकसान से बच सकता था. इस किस्म के एहसास में जीना दरअसल अपने वक्त और कुवतों को ज़ाया करना है. गुजरा हुआ मौका दोबारा वापस नहीं आता, फिर उसका अफसोस क्यों किया जाए. बेहतरीन बात यह है कि हर ऐसे मौके पर आप ये कहें कि अगली बार मैं इस काम को दूसरे तरीके से करूंगा. नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट डिफरेंटली. जब आप ऐसा करेंगे तो आप गुजरे हुए मामले को भूल जाएंगे. आपकी तवज्जो जो इससे पहले माजी की बेफायदा याद में लगी हुई थी, वो मुस्तकबिल के मुतालिक गौर व फिक्र और मनसूबाबंदी में लग जाएगी. इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप अफसोस और गुड़न में अपनी कुवतें ज़ाया करने से बच जाएंगे. जो चीज़ इससे पहले आपके लिए सिर्फ तलख याद बनी हुई थी, आपके लिए कीमती तजर्बे की हैसियत हासिल कर जाएगी. एक ऐसा तजर्बा जिसमें मुस्तकबिल के लिए सबक भी है और आइंदा के लिए नई रोशनी भी है. अफसोस या गम बेशतर हालात में या माजी के लिए होते हैं या मुस्तकबिल के लिए. आदमी या तो गुजरे हुए किसी नुकसान का अफसोस करता है या ऐसे वाक़े का गम जिसके मुतालिक उसे अंदेशा हो कि वह आइंदा मुस्तकबिल में भी पेश आ सकता है. मगर ये दोनों ही गैर ज़रूरी हैं. जो नुकसान हो चुका वो हो चुका, दोबारा वापस नहीं आएगा. और फिर इस गम का क्या फ़ायदा जो अभी तक हुआ ही नहीं. जिस वाक़े का सिर्फ अंदेशा हो वो बहरहाल एक इम्कान की चीज़ है. और बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी जिस खतरे का अंदेशा करे वो ऐन उसके अंदेशे के मुताबिक पेश आ जाए. हाल में रहिए, माजी से सीखिए, मुस्तकबिली कोशिश कीजिए. 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

0: ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861। Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap takeout aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663 Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
1: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: Apne makan ki next month closing hai. Kuch socha hai TV aur appliances kahan se lene hai?
4: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है, TV, fridge, washer, dryer, kitchen range, microwave, सारा कुछ मिल जाएगा, बहुत ही reasonable price पे।
3: Sale तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए next month।
4: आज के rate हम lock भी करवा सकते हैं।
3: That's wonderful।
4: वहाँ से cell phone और India भेजने के लिए 220 volt का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: Brampton में ये कहाँ पे है?
4: On Bowie Head, just west of McLaughlin. Telephone 905-450-2828 और visit BramptonAppliances.ca.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
5: करम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
0: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्प चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088। It's 905-268-0088, 10 और डंडास के इंटरसेक्शन में से सागा।
6: अपने

0: चलेंगे मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की 4 लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट। दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। 4 लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 4169012810। इट्स 4169012810। योर लॉगिन हो metafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मेटा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
4: जी हाँ, मेटा फर्नीचर्स की 4 लोकेशन हैं। पांचवी लोकेशन बहुत जल्द लंदन ओंटारियो में ओपन होने जा रही है। 4169012810 तमाम लोकेशंस के लिए एक ही नंबर है। metafurniture.com इनकी वेबसाइट है। मिड टू हाई फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी आपको यहाँ मिलती है। मिसागा लोकेशन 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारब्रो, 30 पाइन बुश रोड कैम्ब्रिज। चाहे आपको ब्रांडेड फर्नीचर चाहिए हो, ट्रेडिशनल फर्नीचर चाहिए हो, कस्टम मेड आपको बनवाना है, एक बार आप जरूर तशरीफ ले जाइए। और इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि इस वक्त तक जो प्राइसेस हैं, वो जिस तरह की आजकल की सूरत हाल है और जंग की सूरत हाल है, बाज़ अवकात ऑयल की प्राइसेस की वजह से चीज़ें कंटेनर्स के प्राय बहुत से जो है रेंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो अगर आप लॉक कर लेते हैं अभी आप जाके, वो प्राइसेस जो हैं वो वैसे भी 10-30% तो फॉर श्योर डिस्काउंट मिलता ही आपको, बाकी किसी भी आप शॉप के साथ अगर कंपेयर कर सकते, जेन्युइन डिस्काउंट है, ऐसे नहीं है, जेन्युइन डिस्काउंट है। तो आप अगर अच्छे फर्नीचर की तलाश में हैं, पायदार फर्नीचर की तलाश में हैं, क्वालिटी बेस, तो आप तशरीफ ले जाइए मेटा फर्नीचर किसी भी लोकेशन पे। फोन मेरा साहब हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, खुश आमदीद कहेंगे। मेरा साहब वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
5: थैंक यू जी, और रेडियो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को भी मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिडा फर्नीचर आपकी दुआओं से 4 लोकेशन तो हैं और पांचवी बहुत जल्दी लंदन में, और लंदन में हमने खोल रहे हैं लंदन ओंटेरियो के अंदर, और अगले वीक जो है अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो जिस हिसाब से काम चल रहा है तो उसकी सॉफ्ट ओपनिंग जो कहते हैं वर्ल्ड जो है कि वीआईपी कस्टमर जो पहले आ सकते हैं, हमारे लिए तो सारे ही आप वीआईपी हैं, लेकिन चलो पूरी जो ग्रैंड ओपनिंग धमाके वाली वो तो फिर हमने अभी डेट डिसाइड करी है कि 29 को करेंगे,
4: ठीक है,
5: और 22 को उसकी ग्रैंड सॉफ्ट ओपनिंग भी कर देंगे। और रही बात मिड्डा फर्नीचर की, तो ये मिड्डा फर्नीचर कुछ भी नहीं था आपके प्यार के बिना, आपने साथ दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और बिजनेस दिया। सबसे बड़ी बात तो जो आप, हम जो चीज लाते हैं उसको आप सराहते भी हैं और वैल्यूएबल बिजनेस भी देते हैं, ताकत मिलती रहती है। ये आई थिंक ये आप 3 वीक से मेरी सुन रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ नया ही ऐड कर रहे हैं।
4: जी बिल्कुल,
5: मैंने 2 वीक पहले यूएसए में था, आपके लिए मैट्रेस लाए, वो हाई एंड मैट्रेस है नेक्टर कंपनी की, और जिसमें 365 डेज की गारंटी थी। फिर मेरे जो कनाडा के जो सप्लायर थे उनसे मैंने बात करी कि जब बहुत, मतलब एक कस्टमर है कि खर्च कर सकता है 1500, 1700, 1200, मतलब वो वाली मैट्रेस है, एक बहन भाई है नहीं खर्च कर सकता, मतलब वो 300-500 वाली लेता है, तो उसके लिए भी तो स्लीप गारंटी होनी चाहिए भट्टी साहब कि नहीं, मेरे लिए तो सारे बहन भाई बराबर हैं, मेरे कहते हैं मां दे लिए तो पुत्र बराबर होंगे, माँ बाप के लिए कहते, तो मेरे लिए तो वो बहन भाई जो 300 वाली लेता वो भी, उसे भी तो कुछ ना मैं स्लीप गारंटी दूं। तो हमने बड़ा मुझे मान महसूस हो रहा है, एक्साइटेड टू अनाउंस कि कोई भी मैट्रेस जो आप 300-400 वाली भी लेंगे उसमें भी 4 महीने की 120 दिन की स्लीप गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपको 4 महीने सोने के बाद लगता है कि ये मेरे लिए, तो मेरे से गलती क्या भट्टी साहब, मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं कि जैसे मैट्रेस आती हैं उसे हम थोड़ा कहते हैं थोड़ी नरम है, फिर थोड़ी सख्त है, फिर बहुत ज्यादा नरम है, या स्प्रिंगों वाली है या फोम वाली। वैसे तो हम एज ए कस्टमर हमें पता होता है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं से भी कोई गलत डिसीजन हो जाए तो यू आर वरी फ्री है आपको मिड्डा फर्नीचर से कोई भी मैट्रेस लेंगे आप तो, हाँ फोम वाली नहीं, वो जो 50-60-70 डॉलर वाली होती है उनको नहीं, लेकिन जो अच्छी मैट्रेस 3,400 से शुरू होती है तो उसके लिए 120 दिन की स्लीप गारंटी। ये पहली बात आपके रेडियो पे आज अनाउंस कर रहे हैं, तो ये मिड्डा फर्नीचर ने करा है। सेक्शनल आपके लिए एक लेके आए हैं विक्टोरिया डे स्पेशल, हमारे पास हैं टोटल 18 ही, मैंने दिन में भी एक रेडियो पे बोला था। पावर रिक्लाइनर, सुन ले, पावर रिक्लाइनर 3 है उसके अंदर, सेक्शनल होता है कम से कम 3,000 का, आधी प्राइस पे मिल रहा है, हमें भी कोई डील मिली है, 18 ही मिले हैं, 1499 का, ग्रे कलर है उसका, ब्लूश ग्रे कलर है एक्चुअल में, बहुत प्यारा कलर है, और वो उसके फायदा उठा लें आप। विक्टोरिया डे स्पेशल है जो हमने सोचा तो ग्रैंड ओपनिंग के लिए था, लेकिन हमने पहले ही आपके लिए बोल दिया। एक्चुअली कि हमने बेड हमारे पास, कपड़े का अगर लेना चाहेंगे तो नुवेला फैब्रिक का बेड आया हमारे पास, मस्त बेडरूम के लिए भी अच्छा लगेगा, क्वीन में भी अच्छा लगेगा, और बहुत कुछ है। मैं भट्टी साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे आप बहन भाई हैं, आपके घर फर्नीचर सस्ता तो पहुंचे, प्राइस वाइज आपको डिस्काउंट मिले, लेकिन अच्छा पायबंद टिकाऊ और सुंदर दिखने वाला भी पहुंचे। कस्टम मेड बनाना है आपने, कोई कर्व सोफा बनाना है आपने, रिक्लाइनर लेने, जी हाँ, आपको अगले वीक से टॉप ग्रेन लेदर, भट्टी साहब ये मैं 2018-19 वाली बातें याद करा रहे हैं, जब मैं माइकल मीनी बेचा करता था, आप ही के कस्टमर्स को टॉप ग्रेन लेदर, लेदर मैच होता है, आधा लेदर होता है पीछे वाइन, आपको ऑल ओवर लेदर, आगे पीछे लेदर, 5 कलर में 1299 का सोफा दूंगा, 1299 का सोफा दूंगा, तो ताकत मिलती है आपके प्यार से, वो ताकत मिलती है ना, 3 ट्रेलर का सौदा करा है तभी जाके ये डील मिली है। तो आप आए, जो आप लेना चाहते हैं, मिड्डा फर्नीचर पे आपका स्वागत है। 416-901-2810 हमारा नंबर है, middafurniture.com पे जो आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर बहन भाई की एक रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सकता है आपको वो 2000 वाली मैट्रेस चाहिए, पट्टी सब कर एक मैट्रेस लाए हैं, आप 3 इंच मैट्रेस में शिंक होते हैं पहले, जैसे आप लेते आप लगता है कि जैसे धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप प्लेन में नहीं लगता कि प्लेन नीचे उतर रहा है, आपकी बॉडी लग रहा है नीचे नीचे नीचे जा रही है, 3 इंच के बाद आपको लगता है कि जो हम फर्म ढूंढ रहे होते हैं साउथ एशियन बहन भाई, तो हमें उसे कॉपर जेल कहा है, नई मैट्रेस आई कॉपर जेल, जैसे आप सोएंगे आपको कोजी फील भी देगी, कि जैसे हमें लगता है ना कि थोड़ा कोजी फील भी आए, लेकिन कोजी फील जैसे फोम में क्या होता था, आपको फिर कमर दर्द होने लग जाती थी, उसमें कमर दर्द होगी नहीं, वो आपके बॉडी का पोस्चर ले लेगी, जैसे आपका बॉडी का पोस्चर है वो आपको ले लेगी, उसके बाद आपको कमर के हिसाब से सख्त होगी और आपको फीलिंग वो देगी, मतलब कोजी वाली। तो नया कुछ, बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आए हमें अजमाए, हम मिड टू हाई एंड फर्नीचर बेचते हैं, 416-901-2810 हमारा नंबर है, और middafurniture.com पे जाके भी आप हमारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच,
4: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए, 416-901-2810, 416-901-2810 middafurniture.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को कैपिटल बैंकेट हॉल में सागा में होने जा रहा है। एवरी डे गोल्ड का गिफ्ट दिया जाएगा, एवरी डे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, फैशन शो है, सीनियर्स के लिए है, कपल्स के लिए एवरी डे, और इनाम घर के इनाम भी एवरी डे दिए जाएंगे। स्टॉल बुकिंग के लिए स्टिल यू कैन कॉल शम्स रहमान साहब 416-710-6777। अगर आप विंडोज़ और डोर्स अगर आपके लीक हो रहे हैं, पुराने हो गए हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर राइट विंडो फोर्स लेकर आए हैं। आप इंस्टॉलेशन अभी करवा लें विंडोज़ की, और पैसे चाहे 1 साल के बाद दे दें, इंस्टॉलमेंट्स में दे दें, कुछ डाउन पेमेंट करके आप विंडोज़ चेंज करवा सकते हैं। इज़ अ गुड टाइम, आप कॉल कर सम कंडीशंस में अप्लाई, कॉल कर लीजिए 416-206-3200। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM 7:30 हमारे स्टूडेंट्स की घड़ियों का वक्त, लिए चलेंगे आपको कनेडियन इंग्लिश हेडलाइंस की तरफ, जो आपके लिए पेश करते हैं वानी।
6: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
7: Good evening, you're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meewani with local updates. A driver in Mississauga hit and run turns himself into police. Heating on Parkside Drive in the city's west end has increased more than 200% since the province banned the use of speed cameras, according to the data of the City of Toronto. New poll finds Toronto Mayor Olivia Chow with double-digit lead over nearest challengers. Four people, including a Service Ontario employee, are facing charges in connection with the resale of stolen Rewind cars. Ontario to expand jail capacity by 2,500 beds over 10 years at a cost of $3 billion. The City of Toronto has unveiled the names of its new electric ferries set to arrive in late 2026 and early 2027. The electric ferries will be called Lady of the Quays and Toronto Islanders. Canadian health officials are contacting 26 people across the country to monitor the symptoms of hantavirus. Prime Minister Mark Carney said his government is open to selling public assets if the proceeds could help fund new infrastructure. Prime Minister Mark Carney unveiled Canada's long-awaited new electricity strategy, placing heavy emphasis on